ये आकाशवाणी है, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरवे चैनल से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 8:57 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस का आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर, और भक्ति संगीत वंदना का समय रहेगा सुबह 9:20 पर। गैर फिल्मी गजलें आप सुनेंगे सुबह 9:40 पर, और गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत का समय रहेगा सुबह 10:00। सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे गाने नए तराने नए फिल्म संगीत। युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:00, और कार्यक्रम ढेणेरी बात आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:05 पर समय रहेगा फिल्म संगीत का, और कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। श्रोताओं, किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी का समय रहेगा शाम 7:00, और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। कार्यक्रम हेलो फरमाइश समय रहेगा रात्रि 8:00। रात्रि 9:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरवी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: रेल मंत्रालय ने रेल टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए IRCTC की वेबसाइट का नया वर्जन जारी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्य में आज मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस आयोजित किया जाएगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन आज ओडिशा के पुरी में। प्रदेश के विभिन्न कृष्ण मंदिरों से भी रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्रालय ने रेल टिकट बुकिंग को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया वर्जन जारी किया है। IRCTC ने इस वर्जन में चार बड़े सुधार किए हैं। पहला, इसमें कठिन कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं है। साथ ही यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। इसमें टिकट बुकिंग करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट पर यात्रियों की जानकारी सेफ हो जाएगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान होगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि ये परियोजना शेखावाटी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक और दूरगामी महत्व की है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने, फील्ड में जाकर कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने और परियोजना को तय समय सीमा में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने समझौते के अनुरूप सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता से पूरा करने और जरूरत के अनुसार पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत और यूके के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता देश की आर्थिक प्रगति का नया अध्याय है। उन्होंने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि इस समझौते से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। श्री शेखावत ने कहा कि भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी साख मजबूत की है और इसी नीति के तहत अनेक देशों के साथ व्यापारिक सहयोग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत कल जयपुर से ब्रिटेन के लिए पहली निर्यात खेप रवाना की गई। ये खेप जयपुर के कनकपुरा स्थित कॉनकॉर्ड डिपो से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। पहली खेप में 4 कंटेनरों के माध्यम से हस्तशिल्प, रत्न आभूषण और औषधि क्षेत्र से जुड़े उत्पाद भेजे गए। जयपुर में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना पर राज्यस्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने योजना की उपयोगिता और एमएसएमई क्षेत्र को मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि ये योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और उनकी आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि योजना से उद्यमों को कारोबार बढ़ाने, रोजगार सृजन और प्रदेश के आर्थिक विकास को मजबूती मिल रही है।
1: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 लॉन्च किया गया है, ताकि अगर कोई एमएसएमई या एविएशन सेक्टर जिसको वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद किसी प्रकार का रीपेमेंट फाइनेंसिंग में, लेबर डिप्लॉयमेंट में या एक्सपोर्ट क्रेडिट्स में कोई दिक्कत आता है, तो ये ECGLS में से आप बोरो कर सकते हैं। तो राजस्थान में अभी तक 19,000 कंपनीज ने इस क्रेडिट लाइन का फैसिलिटी अवेल किया है। बैंकर्स के साथ विचार विमर्श हुआ, जो इस क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में अक्रॉस राजस्थान डिसमिनेट करेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। राज्य में आज से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दौरान गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 15 जुलाई से शुरू हुए गर्भवती महिलाओं की सघन स्क्रीनिंग के 5 दिवसीय विशेष अभियान की भी निगरानी की जाएगी। इसके लिए निदेशालय से 15 चिकित्सकों के दल फील्ड में भेजे गए हैं। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और उच्च जोखिम वाली गर्भवतियों की पहचान कर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जयपुर में आज विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से पहली बार जयपुर में हो रही ये कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगी। इसमें सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देने, फर्जी एजेंटों से बचाव और प्रवासियों के कल्याण, निवेश और पर्यटन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। अजमेर में पुलिस ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन ने बताया कि महिला ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की बात स्वीकार की है।
2: पूछताछ में बात सामने आई कि अवैध रूप से उसने बांग्लादेश से भारत में पिछले महीने जून में एंट्री की और काम के तलाश में घूमते घूमते जयपुर और फिर ब्यावर और फिर अजमेर में कल अजमेर आना उसने स्वीकार किया और उसे डिटेन किया गया। डिटेन करके सारी चीजें पता की गई, उसको डिटेंशन सेंटर पे भेजा गया है। इसमें विशेष रूप से जो योगदान रहा वो सीआईडी सीबी की जो टीम है उनका और किशनगंज थाना की टीम का रहा और अभी उससे पूछताछ जारी है। अभी तक जो बात सामने है स्वयं ही जो बॉर्डर है, जो लैंड बॉर्डर है उसी से क्रॉस करके और फिर आगे।
0: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देश और विदेश के लोगों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कामना की है कि ये यात्रा सभी के जीवन में श्रद्धा, सेवा, सद्भाव और लोक कल्याण की भावना को और अधिक मजबूत करे। इस अवसर पर प्रदेश के रथ यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर में जगदीश मंदिर से राजसी वैभव के साथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा में 21 घोड़े, शाही लवाजमा, विभिन्न समाजों की आकर्षक झांकियां, भजन मंडलियां और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे। पाली और बारा में भी रथ यात्रा को लेकर लोगों में उल्लास का माहौल है। नई दिल्ली में आयोजित भारत टैक्स 2026 में राजस्थान का पवेलियन देश विदेश से आए खरीदारों और आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जयपुर के गुलाबी नगर की थीम पर तैयार इस पवेलियन का प्रवेश द्वार ऐतिहासिक अजमेरी गेट की तर्ज पर बनाया गया है। पवेलियन में बगरू और सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट, कोटाडोरिया, बंधेज, लहरिया, हस्तशिल्प, होम फर्निशिंग और रेडीमेड परिधानों सहित राजस्थान के वस्त्र उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। यहां बगरू ब्लॉक प्रिंट और टाई एंड डाई कला का लाइव प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार ये पवेलियन प्रदेश के वस्त्र उद्योग और शिल्पकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का प्रभावी मंच बन रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्रालय ने रेल टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए IRCTC की वेबसाइट का नया वर्जन जारी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्य में आज मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस आयोजित किया जाएगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन आज ओडिशा के पुरी में। प्रदेश भर के विभिन्न मंदिरों से भी रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

श्री राम के वनगमन पर अयोध्या वासियों का आर्तनाद सुना नहीं जाता। जब राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने मंत्री सुमंत्र को बुलाकर कहा, श्री राम वन जा रहे हैं किंतु अब भी मेरे प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे। ना जाने किस सुख की आशा में ये अब भी इस शरीर में टिके हुए हैं। फिर कठिनाई के साथ मन में धीरज धारण कर उन्होंने सुमंत्र से अनुरोध किया कि वे दोनों सुकुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में बिठा वन दिखाकर 4 दिनों में वापस लौट आवे। यदि दृढ़ प्रतिज्ञ दोनों कुमार ना भी लौटे तो उनसे आग्रह करना कि वे सुकुमारी सीता को लौटा दें। यदि सीता वन देखकर डरें तो उनसे कहना कि सास ससुर का ऐसा संदेश है कि पुत्री तुम लौट आओ। यदि वो लौट आई तो मेरे प्राणों को थोड़ा सहारा मिल जाएगा। इतना कहकर राजा एक बार फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राजा की आज्ञा के अनुसार सुमंत्र रथ लेकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण के पास पहुंचे। हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर सिया समेत दोनों भाई रथ पर चढ़कर वन की ओर चले। व्याकुल अयोध्यावासी उनके रथ के पीछे दौड़ते चले। श्री राम उन्हें वापस चले जाने को कहते हैं तो वो लौटने लगते हैं, किंतु प्रेमवश फिर रथ के पीछे दौड़ने लगते हैं। राम के विरह में शोकाकुल अयोध्यावासी चित्रलिखित से हो चले हैं।

हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ की।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत वंदना FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गजलें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गजलें। कलाकार थे हरिहरन और साथी। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ, आवाज मोहम्मद रफी की, संगीत OP नैयर का और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में, बोल वर्मा मलिक के, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म नागिन।
3: अकल पे गधा है। मैंने अपनी आंखों में दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं।

0: गोली किसे चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले।
3: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मेरा साया से, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत मदन मोहन का, गीतकार राजा मेहंदी अली खान।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, गीतकार आनंद बख्शी, फिल्म मेरे हम सफर।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत भी लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, फिल्म पत्थर के सनम।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज में, संगीत शंकर जयकिशन का, गीतकार इंदिवर, फिल्म पहचान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चरण से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गाने नए, तराने नए, फिल्म संगीत।

din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din. आवाजें अलीशा चिनॉय, शंकर महादेवन और जावेद अली की फिल्म बंटी और बबली।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत मोहन खन्ना की आवाज में फिल्म जंगली, गीतकार कुमार और संगीत है समीर उड़ीन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से, आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, संगीतकार विकी प्रसाद।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने नए तराने नए, फिल्म संगीत FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
1: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

रफी और साथियों को आप सुन रहे थे अमर अकबर एंथनी असल में आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बेगम अख्तर को अभी आपने सुना।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग।

0: आप सुन रहे थे बेदर्दी से प्यार का इस एल्बम का गीत, जुबिन नौटियाल की आवाज में। मनोज मुंतशिर के बोल थे, मीत ब्रदर्स का संगीत था।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बद्दूर।
5: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
6: और आ गया।
7: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
8: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

फिल्म बवंडर का ये गीत आपने सुना ऋचा शर्मा की आवाज में, हरिराम आचार्य की रचना थी, विश्व मोहन भट्ट का संगीत था।

0: भूपेंद्र की आवाज में फिल्म बाजार की यह गजल आप सुन रहे थे। बशर नवाज की लिखी यह गजल थी, खयाम की तर्ज थी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये एल्बम थी याद पिया की आने लगी। फाल्गुनी पाठक की आवाज में समीर की रचना आपने सुनी, ललित का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

तर्ज़र आवाज थी भूपेन हजारिका की गुलजार की रचना, आप सुन रहे थे फिल्म रुदाली से। तेरी कसम फिल्म का ये गीत है अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज़।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में फिल्म पुष्पांजलि से ये गीत आप सुन रहे थे। रंग तरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से ये बात कही।

0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने एक दूसरे के साथ इस विश्वास को विकसित किया है और अब इसे व्यापार तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ एसोचैम और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। इस समझौते से भारतीय व्यवसायों, लघु और मध्यम उद्यम तथा आम जनता को होने वाले फायदों पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के सत्र में 0.4% की बढ़त आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 286 अंक बढ़कर 77,471 पर और निफ्टी 75 अंक बढ़कर 24,154 पर पहुंच गया। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा। यादों की महफिल, इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आनंद बख्शी की रचना लता मंगेशकर इला अरुण की आवाजें फिल्म लम्हे का ये गीत आपने सुना। बेताब फिल्म का ये गीत आपको सुनाते हैं आवाजें लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज।

फिल्म बेताब में लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजें आपने सुनी। इसके पहले श्रोताओं, हमने आपको लम्हे फिल्म का गीत सुनवाया था। उस गीत में तर्ज थी शिवहरि की। फिल्म मोहरा उदित नारायण अलका याग्निक की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत पीयूष शाह का।

0: लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
2: जी।
1: जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

0: पिलाई दी की तर्ज अनजान के बोल किशोर कुमार आशा भोसले के युगल सुरों में नमक हलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और
2: आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

लता मंगेशकर की आवाज में वर्मा मलिक का लिखा गीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म महान। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें हैं अनजान की रचना, आरडी बर्मन की तर्ज।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और सखियों को आप सुन रहे थे फिल्म चिराग में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। यादों की महफिल ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी भी स्ट्रेस के कारण।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में बदलती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होती है, जिससे संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। भारत में ही डिजाइन, इंजीनियरिंग और एकीकृत की गई ये रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है, जो उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री जालंधर भी जाएंगे, जहां वे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें राजस्थान के भी कुछ स्टेशन शामिल हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ प्रभावी कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल शासन सचिवालय में गृह विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने जिला स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने और संगठित अपराध के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई, वरिष्ठ अधिकारियों के नियमित फील्ड दौरे और अपराधों की निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया। मुख्य सचिव ने जिलेवार होने वाले अपराधों में होने वाली बढ़ोतरी और कमी की रिपोर्ट 15 दिनों में प्रस्तुत करने को कहा। राज्य में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत पिछले 9 महीनों में 7,000 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2025 में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के गठन के बाद नशे के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। इस दौरान करीब 692 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए और 30 अवैध MD ड्रग फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध खेती के विरुद्ध 17 विशेष अभियान चलाए गए। सरकार का कहना है कि AI, मजबूत सूचना तंत्र और विशेष टीमों की मदद से नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई की जा रही है। नशे की लत से जूझ रहे लोगों की सहायता और तस्करी से जुड़ी गोपनीय सूचना के लिए मानस हेल्पलाइन 1933 भी संचालित की जा रही है। सवाई माधोपुर के रणथंबोर बाघ परियोजना क्षेत्र में इन दिनों बाघों और अन्य वन्य जीवों की गणना की जा रही है। ये काम फोटो ट्रैप कैमरा पद्धति से किया जा रहा है। वन विभाग के अनुसार गणना के लिए बाघ परियोजना क्षेत्र में 300 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां 600 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से बाघों और अन्य वन्य जीवों की गतिविधियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। गणना का उद्देश्य बाघों की संख्या का आकलन करने के साथ साथ उनके आवास और वन्य जीव संरक्षण की स्थिति का मूल्यांकन करना भी है। जयपुर में कल रोजगार सहायता शिविर लगाया जाएगा। कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की ओर से लगाए जाने वाले इस शिविर में विभिन्न क्षेत्रों के करीब 55 निजी कंपनियां भाग लेंगी और 3,000 से अधिक रिक्त पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का प्राथमिक चयन करेंगी। शिविर में निर्माण, होटल, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, ई कॉमर्स, रिटेल और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ये शिविर सुबह 10 बजे चित्रकूट स्थित श्री प्रताप स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। शिविर में 10वीं 12वीं स्नातक, ITI डिप्लोमा, नर्सिंग और अन्य योग्यताओं वाले अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ भाग ले सकेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। सबसे अधिक 33 मिलीमीटर बारिश श्रीगंगानगर में दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 40.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर ही प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। जैसलमेर में 39 डिग्री और बीकानेर में 38.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। विभाग ने कल जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के 13 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है। इसके साथ ही हमारा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।

0: खूबसूरत अभिनेत्री साधना और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था, मोहम्मद रफी की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। आपको फिल्म बतानी है।
1: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
0: स्मृतियों के वातायन में वातायन जब खुलते हैं तो जीवन का प्रथम पहर एक सुरम में चित्रपटी की भांति उभर आता है। बचपन जीवन की वो भोर है जहां धूप भी मखमली लगती है। वह एक ऐसा कालखंड है जब समय तितलियों के पंखों पर बैठकर उड़ता है, जैसे कि कदम यौवन की दहलीज पर पड़ता है तो जीवन का आसान चटक रंगों से भर जाता है। आकांक्षाओं का उतुंग शिखर एक चेतना का एक नया विस्तार छूने की बात होती है। बचपन हमें सहजता सिखाता है तो यौवन हमें संघर्षों से टकराने का साहस देता है। आज जब जीवन की ढलती शाम में हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि वो बचपन की नादानी और यौवन की रवानी ही थी जिसने हमारे भीतर के मनुष्य को जीवित रखा है। एक और श्रोता ने लिखा है, इन पुरानी सीढ़ियों पर आज भी कदमों के वो

पर बैठकर ही तो गुजारी है। जब भी इन घुमावदार दंडों पर चढ़ती हूँ तो लगता है जैसे वक्त का पहिया उल्टा घूम गया हो। चौखट से झांकती वो माँ की ममता और आंगन में गूंजती वो बचपन की किलकारियाँ आज भी इन दीवारों में गूंजती हैं। इन सीढ़ियों की हर एक दरार में जैसे मेरा बीता हुआ कल महफूज है, जहाँ उतरने का तो कभी ख्याल ही नहीं आया। और बस इन्हीं यादों के सहारे ऊपर आसमान छूने को चाहत रही। आप ये बताएं श्रोताओं कि जब बीते दिनों की बातें हम करते हैं, जब सीढ़ियों की बातें करते हैं, जब उन घरों की बातें करते हैं जिनकी यादें जो हैं वो धुंधलके की तरह हो चुकी हैं, तो ऐसे घरों में वो कौन था जो आपको सबसे प्यारा लगता था और किसकी यादें सीढ़ी से वाबस्ता हैं आपको बतानी है।

ये कौन से अभिनेता हैं श्रोताओं जो पियानो पर नजर आते हैं? मुकेश की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे देवर फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल थे रोशन की तरह से, और हमारे श्रोताओं ने जो पहले वाला गीत है उसे पहचाना है, मेरे महबूब फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर इबारत लिखी है आपने और हम अपने बचपन को याद कर रहे हैं जिसे हम बहुत दूर छोड़ आए हैं। अब तो बस यादें ही हैं। गाँव में जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हम पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक खेलते, और जब मन करता तो गांव तालाब में डुबकी लगाते, बस यही काम रहता था उन दिनों। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज बचपन नादानियां और शरारतों पर आधारित गीत सुनवाए जाएंगे। एक और श्रोता ने लिखा है, चंदन सी चढ़ती उतरती धूप जीवन के उतार चढ़ाव सुख दुख धूप छांव की को परिभाषित करती है। चंदन शीतलता और महक का प्रतीक है जो हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में चाहे सुख हो या

दुख, चाहो हो या धूप, यदि आपने मन को शांत और सुगंधित अपने मन को शांत और सुगंधित रखा जाए तो हर परिस्थिति में आनंद प्राप्त किया जा सकता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज का पैराग्राफ समय की भागदौड़ में व्यस्त युवा लड़कियों की जिंदगी को बयान करता है। जिंदगी की आपाधापी में कब बचपन और उसके बाद किशोरावस्था निकल जाती है पता ही नहीं चला। आज फ्लैशबैक में वो गुजरा हुआ समय याद आ रहा है। एक और श्रोता लिखते हैं, वक्त पीछे रह गया और हम आगे। ये वाक्यांश जीवन से जुड़े हैं, गहरे दार्शनिक पहलू को बयां कर रहा है। बीतते हुए वक्त के साथ बचपन जैसे जैसे पीछे छूटता है, इस पल में हम जो भी कर गुजरते हैं उसकी यादें पल भर पल पल हमारे साथ जुड़ती जाती हैं। बचपन के खेल, संग साथी और बेखुशगवार क्षण या कोई दुख वाले लम्हे सभी हमारी यादों के गलियारे में दर्ज हुआ करते हैं। और ऐसे समय में अगर हम पीछे का समय थोड़ा सोचें तो सबसे अच्छा दोस्त कौन था? श्रोताओ, अगर आपको कोई दोस्त याद आता है जो आपके लिए, या घर का कोई भी व्यक्ति जो आपके लिए एक सीढ़ी की तरह था, जिसकी बातें सुनकर या जिसकी बातें मानकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचे, तो ऐसी बातें भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। और क्या आपने सांप सीढ़ी का खेल खेला है? अभिनेता किन अभिनेत्री के बारे में सोच रहे हैं श्रोताओं, आपको बताना है।

रहे हैं अभिनेत्री साधना के बारे में। जी हाँ, मेरा साया फिल्म से ये गीत था, राजा मेहदेली खां का लिखा, मदन मोहन का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज। हमारे श्रोता ने लिखा है, मेरी नानी के वहां पत्थर से बनी काफी चौड़ी सीढ़ियां थी, एक सीढ़ी घर के अंदर थी जो रसोई घर में खुलती थी। एक और श्रोता लिखते हैं, बचपन में सीढ़ियों की रेलिंग पर बैठकर बहुत फिसलते थे। जी हाँ, लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक भी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो हमने ये भी देखा था कि झूला भी डाल देते थे। ये उसी तरह है, बिल्कुल खतरनाक होता है, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो बिल्कुल ना करें। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं कि सीधे ये जुल्फ अगर खुलकर बिखर जाए तो अच्छा, इन गीतों को याद किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि सीढ़ियां सिर्फ चढ़ने उतरने के लिए नहीं होती, न जाने कितने रूप हैं सीढ़ियों के। जब हम यादों की सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो बचपन से लेकर न जाने कितने यादों के झरोके खुल जाते हैं। चांद की सीढ़ी पर चढ़कर कभी आसमान को निहारो तो प्रकृति के नजारे में खो जाने को जी करता है। पक्षियों के कलरव और वृक्षों की हरियाली में मन रमने लगता है। ये सत्ता आनंदमयी और करुणामयी है। प्रकृति की सीढ़ी दिव्यता की सीढ़ी है जो हमारी चेतना में अंदर तक बसी है। बस जरूरत है इसे जानने की, समझने की, और जो धूल मन पर जमी है उसे हटाने की। एक और श्रोता ने लिखा है कि खूबसूरत इबारत स्मृतियों के उन अनमोल आंगन में ले जाती है जहां समय ठहर सा जाता है और जीवन अपनी सबसे निर्मल छवि में दिखाई देता है। सीढ़ियां यहां केवल ऊंचाई तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि बचपन, अपनत्व, सपनों और आत्मीय रिश्तों की जीवंत पगडंडियां हैं। वर्तमान की भागदौड़ के बीच जब मन अपने पुराने घर की दहलीज पर लौटता है तो हर कोना, हर आहट और हर स्मृति फिर से रंगों से भर उठती है। जीवन की सबसे बड़ी संपदा वो क्षण है जो स्मृतियों में सदैव चंदन की सुगंध की तरह महकते रहते हैं। आपको ये सीढ़ी पहचाननी है कि ये जगह कौन सी है।

अगला गीत जो आप सुनेंगे श्रोता, उस फिल्म का नाम और संगीतकार आपको बताने हैं। अगर आपने फिल्म देखी है, जाना है, तो आप अदाकार और अदाकारा भी बता सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सांप सीढ़ी का खेल बचपन में बहुत खेला है, आज विश्व सर्प दिवस भी है। जी हाँ। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गीत तेरा घर ये मेरा घर, फूलों के रंग से, दिल की कलम से, वो चांद खिला वो तारे हंसे, तमाम गीत इन्होंने हमें सुझाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि कुतुब मीनार पर फिल्माया गया बेहतरीन गीत संगीत सचिन देव बर्मन जी का है, और भी कुछ आपको बताना है इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि कुतुब मीनार की सीढ़ियां हैं। जी हाँ। और सीढ़ियों पर जो गीत फिल्माए गए हैं श्रोताओं, वो बड़े ही यूनिक हैं या बड़े खूबसूरत और बड़े अलग से नजर आते हैं। ऐसे कौन कौन से गीत हैं जो आपको याद आते हैं तो आप बता सकते हैं। एक और श्रोता लिखती है कि सांप सीढ़ी बहुत खेली है बचपन में, और जब सांप काट कर हमें नीचे पहुंचा देता तब सीढ़ियां ही हमें ऊपर ले जाती। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी चार गीत की लिखी हुई इबारत में से दूसरा नंबर पर लिखा हुआ गीत भी शामिल, दिल का भंवर करे पुकार का राग सुनो, तो बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुतुब मीनार की सीढ़ियां जो आजकल बंद कर दी गई हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी गणित की अध्यापिका बहुत प्रेरणादायक बातें बताती थी। संगीता जी, गणित के अध्यापकों की तरह बिल्कुल सरल, मतलब जैसे होते हैं गणित के अध्यापक, उन्होंने कुछ अजीब सा शब्द लिखा है, तो बहुत सरल थी वो और हास्य भाव में पढ़ाती और समझाती थी। बहुत याद आती हैं आज भी। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो स्कूल या कॉलेज में जब हम सीढ़ियों पर बैठा करते थे, और याद तो फिर आपको ये भी जरूर याद होगा कि किसी के आम को लेना है खेतों से, बाग से, तो एक की पीठ पर एक बैठकर भी सीढ़ी नुमा कुछ बना लिया करते थे और ऊपर पहुंच जाते थे, जिससे बड़े आराम से फल लिया जा सकता था। एक और श्रोता ने लिखा है, घर के भीतर खेले जाने वाला लोकप्रिय खेल सांप सीढ़ी बहुत खेले थे, अक्सर 90 वाला सांप, लंबा सांप, मेरी गोटी निकल जाता था। और एक और श्रोता लिखते हैं कि जब गांव में मिट्टी का कोठा वाला घर हुआ करता था, तो उसमें बंसर की बनी सीढ़ियां होती थी, पर उस पर चढ़ने में बहुत डर लगता था कि कोई एक आदमी पकड़ता था तब हम ऊपर चढ़ते थे। जी हाँ, वैसे अगर आप देखेंगे तो कश्मीर में भी लकड़ी की सीढ़ियां होती हैं, और कश्मीर की ही वादियों में फिल्माया गया एक गीत है जिसमें जॉय मुखर्जी ढोलक बजाते हुए धीरे धीरे से सीढ़ी पर चढ़ते हैं, सीढ़ी के पास रहते हैं और साधना भी नजर आती है। ये गीत क्या आपको याद आता है तो आप हमें जरूर बताएं। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत खेला है सांप सीढ़ी और लूडो भी, आजकल तो मोबाइल पर उपलब्ध है, लेकिन वो पुट्ठे का गेम और गोटियां, उनकी तो बात अलग ही थी। तो कुछ एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारी दादी जो घर में सबसे बूढ़ी थी, हमें तब नहीं पता था कि उनके लिए सीढ़ियां चढ़ना असंभव है।

हम जब भी उनसे छत पर चलने की जिद करते तो वो पहले तो समझाती थी, फिर टाल जाती थी। घर में बाकी सब उनकी हाँ में हाँ मिलाते, तब हम उनसे गुस्सा हो जाते। वैसे सीढ़ियां चढ़कर जाना, छत पे चांद देखना, और एक विशेष त्योहार भी है इससे जुड़ा हुआ, क्या आपको याद आता है तो आप जरूर लिखें।

अर्जुन की तर्ज थी, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। पुनर्मिलन फिल्म का ये गीत था। अमिता और जगदीप पर फिल्माया गया ये गीत था, मोहम्मद रफी की आवाज में, इंदिवर की रचना थी। और अगले गीत की डिटेल आपको बतानी है श्रोताओं, फिल्म का नाम बताना है और गायक कलाकार के नाम आपको बतानी है। एक श्रोता ने लिखा है कि सीढ़ी से मुझे अपने मामा के यहाँ का घर याद आ गया, जहाँ हम बच्चे छुट्टियों में जाते थे और सुबह उठकर सब लोग सीढ़ियों पर लाइन से बैठ जाते थे, फिर वहीं बैठकर नाश्ता करते थे। जी हाँ, और इसी वजह से कि बच्चे तो सीढ़ियों पर ही खेलेंगे, उसकी साफ सफाई भी बहुत ही तरीके से की जाती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि पहले मकान बनाते समय पुराने लोग सीढ़ियां बनाने में पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जिससे फिसलन नहीं होती थी, पर आजकल सीढ़ियां बनाते समय मार्बल पत्थर और टाइल्सों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फिसलने का खतरा ज्यादा होता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही खास बात है श्रोताओं। तो सीढ़ियों पर जब चलना होता है तो बड़ा संभल कर चलना होता है, और इसी वजह से जो पुराने घरों में सीढ़ियां

बनाई जाती थी वो जरा रफ होती थी। उनकी सुंदरता चाहे उतनी ना होती हो लेकिन उनमें गिरने का खतरा मतलब सेहत से जुड़ा खतरा कम हुआ करता था। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज भी जब फुर्सत के पल मिलते हैं, कुछ पल मिलते हैं, मैं चाय का प्याला लिए सीढ़ियों पर बैठ जाती हूँ। बस यूं ही बाहर के खूबसूरत नजारे, चारों ओर फैली हरियाली और बरसते बादलों को देखते हुए सुकून समेटने। एक और श्रोता ने लिखा है कि मेरी नानी के घर में आंगन की दीवार से लगी सीढ़ी थी और दीवार के पार नीम का वृक्ष था जिस पर बहुत से पक्षी रहते थे। हम बस उसी सीढ़ी पर बैठकर उनको देखा करते थे। उनका कलरव सुनकर बहुत अच्छा लगता था। आपने क्या कुछ चुरा कर सीढ़ियों में चुपके चुपके खाया है, आप बता सकते हैं।

राज कपूर और रोतन पर फिल्म आएगा, ये किताब सुन रहे थे दिल ही तो है फिल्म से। और आपने बिल्कुल ठीक लिखा है मुकेश और सुमन, कल्याणपुर की आवाजें थी, रोशन का संगीत था, साहिल ध्यानवी के बोल थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत एक छोटी सी कहानी के रूप में एक बेहद खूबसूरत और भावुक दृश्य काफे है। ये रचना बचपन, मासूमियत और वक्त के गुजरने के एहसास का एक मुकम्मल दस्तावेज है। यहाँ सीढ़ी को महज एक ढांचा नहीं बल्कि जीवन के सफर का एक जीवंत प्रतीक बना दिया है। ये रचना एक ऐसी जादुई छड़ी है जो वक्त के पहिए को पीछे घुमा देती है। इसमें जहां एक तरफ बड़े होने का अकेलापन है, वहीं दूसरी तरफ बचपन की यादों की वो गर्माहट जो इंसान को फिर से जीने की ताकत देती है। जी हाँ, क्योंकि आजकल जब हम लौटते हैं अपने घरों की तरफ तो ये देखते हैं कि वो सीढ़ियां जिन पर कितना मतलब एक एक कह सकते हैं कि शोर सा रहता था, वो सीढ़ियां कैसी शांत पड़ी हुई हैं। और कई कई जगह तो ऐसा भी है कि ये सीढ़ियां टूट चुकी हैं। एक हमने आपसे सवाल पूछा था श्रोताओ, जॉय मुखर्जी के हाथ में ढोलक

है और वो लकड़ी की सीढ़ी के तरफ होते हैं। तो ये गीत अगर आपको याद आ रहा है तो आप जरूर बताएं। और सीढ़ियों पर फिल्माया गया कौन सा गीत आपको बहुत सुंदर लगता है? और एग्जाम की पढ़ाई जब आप करते थे तो क्या आपने सीढ़ियों पर पढ़ाई की है या फिर कॉलेज की जो यादें हैं वो आप साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि कल्पनाओं की एक परी उतरेगी और फिर वो बचपन से जवानी तक ले जाएगी, इन दिनों उसकी मस्ती में हम कैसे कैसे पड़ाव पार करते आगे बढ़ते रहे, जीवन के विभिन्न आयाम में गुजरती ये शामें ये रातें कैसे कैसे लोगों से मिलाते रहे, ऐसी कुछ बातें होंगी दोपहर के सुरीले सफर में सुनते हैं। तो जी हाँ, ऐसी ये बातें हैं और आप अपनी बातें साझा भी कर सकते हैं। अगले गीत में आपको बताना है कि ये जो सीढ़ी पर अभिनेत्री नजर आ रही हैं ये कौन है।

अनोखी रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। परीक्षित, साहनी पर फिल्माया गया और सीढ़ी पर जाहिदा नजर आती हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि यादों की सीढ़ियां कभी पुरानी नहीं होती। आज की इबारत बचपन अपने घर, मासूम शरारतों और बीते सुनहरे लम्हों की ऐसी सैर कराती है जहां वक्त ठहर सा जाता है और मन फिर से उन्हीं रंगों में खो जाता है जिनसे जिंदगी की खूबसूरत तस्वीर बनती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत देखकर पढ़कर हम अपने बचपन के दिन हमें याद आए हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे ख्याल से जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम और भंवरा बड़ा नादान रे, ये सब गीत इन्होंने सुझाए हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पूरी इबादत में बचपन और शरारतें, घर आंगन सीढ़ियां हवेली छत झूला आम चुराना पंचगट्टे का खेल। जी हाँ, पंचगट्टे का खेल, ये खेल क्या आप समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं तो हमें जरूर लिखें। वैसे आपकी सहूलियत के लिए बता देते हैं कि जो सीमेंट की बनी गिट्टियां होती हैं श्रोताओं, उनसे ये खेल खेला जाता है। तो क्या आपने खेला है हमें आप बता सकते हैं। चांदनी रातें लिखती हैं आगे, चांदनी रातें और समय के पीछे छूट जाने का एहसास बहुत खूबसूरती से उभर कर आता है। ऐसा लगता है मानो कोई व्यक्ति अपने बचपन के घर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते यादों की दुनिया में लौट गया हो। तो इस गीत को पहचानिए आप और बताइए कि इस बार सीढ़ी पर कौन है।

मुकेश की आवाज में सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आपने सुना। मनीष और नूतन पर फिल्माया गया। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में घर में बिना बताए हम और हमारे चचेरे भाई बहनों की टोली के सारे भाई मिलकर आम के पेड़ पर चढ़कर निचली डाल को जोर से हिलाते थे और हम सारी बहनें नीचे चादर बिछाकर कच्ची अमिया उसमें भर लेते थे। दांतों का बुरा हाल हो जाता था, कई दिनों तक दांत चमक जाते थे, फिर अपनी चोरी पकड़ ली जाती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर के पास सीढ़ियां हैं और बचपन में हम इन सीढ़ियों से उतर पानी लाते थे और मैं सबसे पहले पानी लेकर पहुंचती थी और हमेशा प्रथम आती थी। होड़ में अभी वो सीढ़ियां वही हैं, लेकिन जब मायके जाना होता है तो बचपन याद आता है। एक हमारी श्रोता हैं जिन्होंने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के गीत को पहचाना है, लेकिन लिखती हैं कि गीत तो याद नहीं आ रहा है। जी हाँ, ये गीत था। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक और श्रोता लिखते हैं कि पूरी जगन्नाथ मंदिर में 22 सीढ़ियां हैं, इन्हें पार करके ही प्रभु का दर्शन करते हैं। सभी की मनोकामना होती है, यही प्रभु 22 सीढ़ी पार करा देना। आज रथ यात्रा में भी भगवान 22 सीढ़ी उत्तर लोगों को दर्शन देने बाहर आए हैं। जय जगन्नाथ स्वामी।

शुदा कॉलेज की सीढ़ियों का जिक्र आप कर सकते हैं। तालाब और नदियों के किनारे क्या आप घूमने गए हैं जहां खूब सारी सीढ़ियां होती हैं, उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं।

भी जहाँ किधर से भी चलो तो मिल जाएंगी सीढ़ियाँ, पर सच में भूल भुलैया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि चोरी चोरी खाने का मजा ही अलग है, अमरूद खाना नहीं भूलता हूँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि सबसे अधिक सीढ़ियों के बारे में कहीं स्विट्जरलैंड के बारे में इन्होंने लिखा है, नसेन पहाड़ पर हैं ये सीढ़ियाँ। और एक और श्रोता ने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का जो गीत था उसे पहचाना है। और एक और श्रोता लिखती है कि स्कूल पढ़ने के दौरान स्कूल कैंपस के पास ही बनी दुकान की सीढ़ियों में बैठकर खाना खाते थे। कॉलेज पढ़ने के दौरान कॉलेज की कैंटीन के पास ही एक मंदिर था जिसकी सीढ़ियों पर बैठकर कोफ्ते समोसे और कचौरी खाए हैं खूब। जी हाँ, कई सारी दुकानें भी तो होती हैं वहाँ। आप अभिनेता और अभिनेत्री पहचाने?

शहनाई फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था, राजश्री और विश्वजीत पर फिल्माया गया ये गीत था। इस गीत की डिटेल भी हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। आपके सभी कमेंट्स, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

मित्रों, जीवन में सच बोलना या सत्य के मार्ग पर चलना जितना कठिन है, झूठ उतना ही आसान। झूठ बोलना, थोड़ी थोड़ी बात पर झूठ का सहारा लेना और झूठ के सहारे एक और झूठ, फिर एक और झूठ, यानी झूठी बातें बनाना हम आसानी से सीख लेते हैं। लेकिन सच कहना, सत्य बोलना और इस मार्ग पर चलना कुछ दरिया के बहाव को विपरीत दिशा देने जैसा ही है। सच की राह पर चलना मुश्किल तो जरूर है, लेकिन कोशिश करने से, जहन में ये बात रखने से कि हमें सत्य बोलना है, ये राह आसान हो जाती है। हाँ, इस आदत को बनाने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। सदा

हमेशा कटु लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन सत्य वचन हमारे जीवन की गति में सहायक होते हैं। जहां हम न चाहते हुए भी झूठ का सहारा लेते हैं और अपनी मर्जी से नहीं बल्कि समय का हवाला देते हुए झूठ बोलते हैं, तो कई बार इसके गंभीर परिणामों से भी हम अनभिज्ञ होते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी आदतों से हम छुटकारा पा नहीं सकते, बस कोशिश करने की जरूरत है। सच बोलने की आदत न सिर्फ आपकी निष्ठा को अधिक बनाए रखती है बल्कि आपके व्यक्तित्व को एक प्रभावशाली दिशा भी दे सकती है।

सच्चाई और अच्छाई का अनुसरण करना हमारे जीवन को आसान बनाता है। कभी कभी परिणाम के डर से भी हम सत्य बोलने से कतराते हैं, जो आगे चलकर झूठ बोलने की आदत में बदल जाता है। सत्य वचन हमारे जीवन की ढाल की तरह होते हैं, पीछे छूट जाते हैं सभी अवसाद। सत्य का प्रकाश हमारे जीवन में उजली किरण की तरह बिखर जाता है और जीवन में एक नया रंग भर देता है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा

0: सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवी नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यो को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
1: There is an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
1: 22% of the world population.
0: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
3: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण हैं।
3: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और

0: संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
1: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार।

0: अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन HF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रूपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रूपये प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना

0: रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

फिल्म नवरंग का दो गाना आपने सुना महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। भरत व्यास के बोल थे, सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती का ये कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: वो भी नहीं कि बनाई तर्ज पर इसे गया मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी, फिल्म थी फिर वही दिल लाया हूँ।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: गंगा की लहरें सुनकर दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल सरों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई गांवों में खिली,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जहां आरा फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले के युगल सुरों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं मदन मोहन की तर्ज है। श्रोताओ, यही है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, आप सुनिए ये गीत, रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम बहुत दिन बाद मिले हैं इस मंच पर और आज ढेर सारी बातें होंगी, आपस में भी होंगी और हमारे सुनने वालों से भी होंगी।
2: बिल्कुल, उनकी बातों को हम अच्छे, जिन्होंने हमें मैसेज भेजे हैं उनको हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से, उनसे बातें करेंगे और हमें प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत सुनाएंगे।
1: तो भाई वो हमें कमेंट्स लिख रहे हैं सिर्फ वो श्रोता जिन्हें पता है कि आज के विषय क्या है। तो हम किस विषय पर बात करेंगे ये बताना भी बहुत जरूरी है,
2: बताना जरूरी है। तो आज हम सब बात करेंगे मनोरंजन के बदलते स्वरूप।
1: तो मनोरंजन की बात हो रही, भाई रेडियो की बात ना हो, मनोरंजन का बहुत पुराना और सबसे पसंदीदा जरिया है रेडियो और हमारे जो श्रोता है वो तो जुड़े हुए हैं इस माध्यम से, लेकिन इसके अलावा जो अन्य मनोरंजन के माध्यम हैं उन्होंने अब तक क्या बदलते हुए देखा और उन्हें क्या लगता है कि ये स्वरूप अच्छे हैं या बुरे हैं, अपना अपना हर किसी का देखने का नजरिया होता है।
2: जरूरी नहीं सिर्फ रेडियो हो, हम आपस में कितने खेल खेल के,
1: हाँ वो तो कहा ना,
2: आपस में बातें करके हम अलग अलग तरीकों से मनोरंजन करते थे, सब मिलके सखियों से बात करके। तो ये सब चीजें जो है पहले के जो साधन थे वो ज्यादा अच्छे थे या अभी के जो है वो ज्यादा आपको पसंद आते हैं, सब अपने आप नजरिया बताइए कौन सा आपको ज्यादा सही।
1: बिल्कुल, आज डिजिटल युग है तो डिजिटाइज चीजें जो हो रही है ना वो भी किसी को पसंद है किसी नहीं है। जो पुराने दौर के व्यक्ति हैं ना उन्हें लगता है कि नहीं ये मोबाइल या जो गैजेट्स हैं उनसे तो अच्छा है अपने दोस्तों में बैठ के बातें करो।
2: बिल्कुल,
1: चार दोस्त मिल गए जो अगर सखियां हैं तो वो कुछ पकवान बनाएंगी, किटी पार्टी जैसा करेंगी, उनका मनोरंजन हो जाता है। बच्चों के लिए खेल कूद मनोरंजन है। तो आपके लिए मनोरंजन क्या है और आपने क्या स्वरूप बदलते हुए देखे, अपने विचार हमें लिखकर भेजिए।
2: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंतर्गत यानुंग जामोह लेगो जो की जड़ी बूटी विशेषज्ञ है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जानते हैं अधिकतर लोग उनके बारे में।
1: मतलब ये ऐसे उपचार हैं कह सकते हैं कि इनके साइड इफेक्ट यानी कि आपको कुछ भी गलत उपचार मिलने की संभावना कम होती है, यानी कि जो चीज अगर आपने ली तो उसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा, हो सकता है वो आपको फायदा ना दे लेकिन किसी तरह का नुकसान होने की संभावना ना के बराबर।
2: प्राकृतिक उपचार होता है, तो प्रकृति तो वैसे ही इतनी ज्यादा अपने अंदर समेटे हुए पूरा खजाना, तो उसको हम जान लें तो हम हमारे सारे चीजों का इलाज वैसे हो जाएगा।
1: आरती आपने देखा है कितने लोग सिर्फ प्राकृतिक वाटर बॉटल्स में मंगाकर पीते हैं, पसंद करते हैं।
2: महंगी आती है वो जो पानी मिलता है उन बॉटल्स में, वो बहुत महंगा पानी आता है। तो आजकल शुद्ध पानी ही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो शुद्धता होती है जो प्रकृतिक चीजें जड़ी बूटियां होती हैं,
1: बिल्कुल
2: कुछ अलग ही।
1: तो शुद्ध हवा पानी अपने आप में बहुत कहते हैं कि एक दवा का काम करता है। इसके अलावा कुदरत ने हमें इतनी सारी जड़ी बूटियां दी हैं, उनको पहचानना भी अपने आप में बड़ा काम है। तो जिन सखी की आज हम बात करने वाले हैं ये उनको पहचान कर उनसे उपचार करती हैं और बहुत सारे लोगों को ये अपने उपचार से स्वस्थ कर चुकी हैं।
2: बिल्कुल, तो इनके बारे में हम बात करेंगे आज
1: जी।
2: और साथ ही हम बात करेंगे कि चंचल कुछ बताने जा रही हूँ,
1: दिमागी कसरत
2: भूल गए थोड़ा सा हमें दिमागी कसरत की जरूरत पड़ती है जब हम कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो एकदम टंग ट्विस्टर होते हैं, एकदम हमारे जीभ को घुमा देते हैं पूरी। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो किस तरीके से पहेलियां होती हैं, पहेलियां बुझाते हैं। पहले हम लोग का बहुत ज्यादा ये मनपसंद खेल हुआ करता था कि हम कुछ ऐसी बातें कहें और बताएं बूझो तो जाने। अब ऐसी बात, हमने कुछ लाइंस बोल दी, अब बूझो तो जाने इसका क्या मतलब, इसका क्या, कौन सी चीज छिपी हुई इन शब्दों में। तो ये पहेलियां जो है ना इससे हमारा जो मस्तिष्क है ना उसकी सारी बिल्कुल काम में लग जाता है, बिल्कुल कि ढूंढने की आखिर है क्या चीज।
1: और पहले बच्चों को ऐसे टास्क जब दिए जाते थे ना तो उनका दिमाग कहते हैं कि खुलता था इन चीजों से। तो आप करते हैं अपने बच्चों के साथ या नहीं करते हैं, बच्चों के दिमागी कसरत के लिए पहेलियों के अलावा आपने क्या किया है हमारे साथ जरूर साझा करें।
2: बच्चों के ही नहीं, ये बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है कि इस तरीके की जब चीजें हम करते रहते हैं ना, चाहे वो अखबार में निकलने वाले उनको पहेलियों को सुलझाना हो या किस तरीके की चीजों को करना हो, तो इससे हमारा दिमाग जो है ना एकदम काम में लगा रहता है, एक्टिव रहता है। इससे ये होता है कि हम जैसे कभी कभी ऐसा होना था कि बढ़ती उम्र के साथ में थोड़ा सा याददाश्त में कमी होने लगती है, तो वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं।
1: और बारिश का मौसम है ये हम सभी जानते हैं, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन बारिश के बाद जो उमस होती है ये भी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने खान पान का, अपने पहनावे का, जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं उन सब चीजों
2: का। वैसे भी कहा जाता है ना कि अब हम प्रकृति की बात करें तो कहा जाता है कि प्रकृति के हिसाब से हमें खान पान भी रखना चाहिए। कौन से मौसम में, हर मौसम का खान पान अलग होता है, तो उसी हिसाब से हम अपना खान पान रखेंगे, संतुलित आहार रखेंगे, शुद्ध पानी पियेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बारिश के दिनों में अपना ध्यान रखें।
1: और इसके अलावा भाई नींद बहुत जरूरी चीज होती है, लेकिन इस समय हम श्रोताओं की नींद उड़ाने वाले हैं ताकि वो प्रोग्राम सुनने के लिए तैयार रहें।

0: हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनकी नींद जरूर उड़ गई होगी और अब वो हमें कमेंट भेजेंगे,
1: पूरे ध्यान से प्रोग्राम को सुनेंगे
0: जी, और जो हमारे

0: विषय है, उन पर संदेश भी लिखकर भेजेंगे, अपने विचार भी हमारे साथ साझा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मनोरंजन के जो बदलते स्वरूप हैं उन्हें लेकर, और बात जब मनोरंजन की होती है आरती, तो ये केवल समय बिताने का कोई साधन नहीं है बल्कि मानसिक तनाव को दूर करके ताजगी भरने वाला भी होता है और रचनात्मक और जीवन को संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। बदलते समय के साथ मनोरंजन के साधन भी बदले हैं और इस बात से हमारे श्रोता भी वाकिफ होंगे।
1: बिल्कुल।
0: और अतीत की तुलना वर्तमान से करें तो मनोरंजन की दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और पुराने समय का जो मनोरंजन था वो सामूहिकता, अपनापन और संस्कृति से अपनी जुड़ा हुआ था।
0: हाँ।
1: गांव की चौपालों पर किस्से कहानियां सुनाई जाती थी, लोकगीत और लोक नृत्य लोगों को एक सूत्र में बांध लेते थे, रामलीला, नौटंकी, कठपुतली का खेल, मेले, पारिवारिक खेल जो यानी सब परिवार पूरा मिलकर खेलते हैं हम लोग सब, और दादी नानी की कहानियां और रेडियो के कार्यक्रम जो थे वो उस समय के मनोरंजन के मुख्य माने जाते थे साधन।
0: और पहले के जमाने की अगर बात हो रही है तो जैसे आजकल बहुत सारे बोर्ड के गेम भी मिलते हैं।
1: हाँ।
0: या पासे होते हैं उसमें, तो वो हम खुद ही किसी कोयले से या चौक से जमीन पर उसको काढ़ लिया करते थे और कुछ पत्थर वत्थर रखे बस पासे बनाकर उनसे खेला करते थे। तो इन चीजों में भी युग के साथ में बदलाव हुआ, फिर ये बोर्ड पर आने लगे बाजार में, और अब ये चीजें कई बार हमें डिजिटल यानी कि हमारे मोबाइल या लैपटॉप पर टैब पर भी हम खेलते हैं।
1: अभी भी गाँव में देखिए तो छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो गुटके खेलती हुई दिखाई देंगी, वो बहुत अच्छे लगता है वो, और जो जमीन पर बनाते हैं पहले उससे चौक से,
0: हाँ,
1: और एक दो तीन चार करके,
0: हाँ, और वो लंगड़ी से चलते हुए,
1: हाँ,
0: खेलते हैं, कहीं
1: हाँ,
0: दो पैर टिकाने हैं कहीं एक पैर टिकाना होता
1: इस
0: है।
1: तरह के खेल तो अभी भी बच्चे खेलते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं, लेकिन हाँ ये जो खेल थे ये पूरी तरह से हमें पूरे शरीर को भी एक्टिव रखते थे और दिमाग को भी एक्टिव रखते
0: और
1: थे।
0: बिल्कुल इन माध्यमों में सिर्फ आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, बल्कि संस्कार है, लोक ज्ञान है, सामाजिक मेल मिलाप, ये सभी चीजें आरती में समाहित होता था और मनोरंजन लोगों का एक दूसरे को और पास ले आता था। वहीं वर्तमान समय में मनोरंजन ने तकनीक का हाथ थाम लिया, जैसा हम बात कर ही रहे हैं।
1: जी।
0: डिजिटल युग में मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, वीडियो गेम, पॉडकास्ट, ओटीटी, ये इतनी सारी चीजें हैं, इन्होंने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया है।
1: बिल्कुल। और आज का मनोरंजन हमारी उंगलियों की पहुंच में है, सबसे बड़ी बात।
0: हाँ,
1: एक क्लिक पर दुनिया भर की फिल्में, संगीत, पुस्तकें और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम उपलब्ध हैं।
0: हाँ,
1: और इस बदलाव ने मनोरंजन को और अधिक सुलभ बना दिया है, विविध और व्यक्तिगत भी बना दिया है। अब हर आयु वर्ग अपनी रुचि के अनुसार सामग्री को चुन सकता है। यही कारण है कि मनोरंजन आज केवल आनंद का माध्यम नहीं है बल्कि शिक्षा, जागरूकता और व्यक्तित्व विकास का भी सशक्त साधन बन गया है।
0: हम बातें और करेंगे और हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं इस बारे में वो भी पढ़ेंगे, पर गीत सुनते चलें।
1: बिल्कुल।

0: आरती, ये जो इस तरह के गीत हैं ना, ये भी दिल चुरा लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और हम बात कर रहे हैं कि बदलता जो स्वरूप है मनोरंजन का, तो देखो ना, हमने गीत सुना है कितने गुजरे जमाने का था, लेकिन ये
1: बिल्कुल,
0: आज भी मीठा लगता है। और संगीत का स्वरूप भी कितना बदला है।
1: बहुत ज्यादा बदल गया है। और बदलाव हर समझ लीजिए परिवर्तन जो होता है वो तो प्रकृति का नियम ही होता है, लेकिन वो परिवर्तन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, जो सबको पसंद आए,
0: जी,
1: है ना।
0: और परिवर्तन के साथ हम अगर जुड़ेंगे नहीं, खुद को अलग थलग
1: बिल्कुल
0: रखेंगे, तो वो खुद ही खामखा तकलीफ में रहेंगे। तो
1: बिल्कुल
0: बदलाव को स्वीकार करना भी जरूरी होता है,
1: जी
0: लेकिन बदलाव के साथ बिल्कुल इतने ना बह जाएं कि अपने जो संस्कार हैं, संस्कृति है, उसे हम भूल जाएं।
1: बस अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए और
0: जी,
1: बदलाव को अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको स्वीकार कीजिए।
0: और अपने बच्चों को भी जो अपनी संस्कृति है उससे अलग ना होने दीजिए।
1: बिल्कुल
0: अब वो नई चीजों को, जो भी आधुनिकता है उसे अपनाएं, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं उससे जुड़ाव बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: तो अब देखिए, हमारे श्रोता का कहना है कि विगत काल में मनोरंजन के साधन प्रकृति और सामुदायिक गतिविधियों तक सीमित थे। मेले, सर्कस, कठपुतली शो, त्योहारों में पूरा समाज एक साथ जुड़ जाया करता था। रेडियो और दूरदर्शन के आने से मनोरंजन घर की चार दीवारी तक सीमित हुआ, लेकिन इसे भी पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर कार्यक्रम देखने का अवसर दिया। और तकनीकी क्रांति की बात कर रहे हैं, जहां इंटरनेट ने बहुत सारी चीजों को लेकर आया है, वेब सीरीज आई हैं, आगे इन्होंने इसके बारे में बात की है। फिर ये बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल एजेंसी AI, एल्गोरिदम आधारित जो सिफारिशें हैं, इसने भी व्यक्तिगत बना दिया है मनोरंजन को, और बहुत विविधतापूर्ण मनोरंजन अभी है। और बहुत विस्तार से इन्होंने बातें लिखी हैं इस बारे में, तो आगे और भी संदेश पढ़ने हैं हमें।
1: बिल्कुल। और हमारे एक क्वेश्चन होता है, उनका संदेश है कि मनोरंजन के साधन तो पहले भी हुआ करते थे और आज भी हैं, पर कुछ तौर तरीके बदल गए हैं।
0: हाँ
1: पहले रेडियो पर मनोरंजन हुआ करता था, पर आजकल तो मोबाइल फोन पर बहुत सारे बच्चे अपना मनोरंजन करते हैं, पर मनोरंजन का स्वरूप बदल गया है। पर मेरा मनोरंजन का स्वरूप पहले जैसा ही है, लगता है कुछ भी नहीं बदला है। मुझे वो पुराने रेडियो का दौर अच्छा लगता है, इस कारण जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो मैं सिंपल पुराने रेडियो पर ही सुना करता हूँ, और मेरे लिए यही अच्छा है।
0: हमारे सुनने वाले श्रोता है ना, जो इतने पुराने गीत जो आज हम सुन रहे थे ना, ये अक्सर सुबह भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में उन्हें सुनाई पड़ते होंगे। तो आज एक बदलाव ये भी है उनके लिए कि इतने पुराने गीत आज सखी सहेली में उन्हें सुनाई पड़ रहे हैं। और क्या संदेश है?
1: एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मनोरंजन अधिक जो विविध है, त्वरित और सस्ता हो गया है। घर बैठे ज्ञान और मनोरंजन दोनों साथ में मिल रहे हैं। नकारात्मक प्रभाव इसका यह है कि मनोरंजन जो है वो अब सामाजिक से अधिक व्यक्तिगत हो गया है, क्योंकि पहले सारे लोग मिलके हम साथ होते थे। अब अत्यधिक स्क्रीन टाइम से शारीरिक गतिविधियां भी कम हुई हैं और आंखों पर बुरा असर भी पड़ रहा है।
0: हमारे एक श्रोता लिखते हैं, ये जो बात इन्होंने लिखी है ना, ये बहुत सही बात है कि बच्चों की आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है, बड़ों की, और ना सिर्फ आंखों पर, आपकी और भी इंद्रियों को ये प्रभावित करते हैं। तो हमारे श्रोता खुद सजग हैं, इन बातों को जानते हैं, तो अपने घर में वो क्या इन चीजों को लेकर बदलाव करते हैं। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम के लिए क्या उन्होंने एक समय निर्धारित किया है, या बच्चे उनके बहुत कितनी बार तो हम खुद ही आदत बिगाड़ते हैं बच्चों की, कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो TV लगा दिया, या तो फिर हमने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, कि उसका ध्यान थोड़ा सा वहां से, क्योंकि डाइवर्ट हो जाता है वो टीवी और मोबाइल की तरफ, और हम उसके ध्यान को थोड़ा सा भटकाकर उसके मुंह में निवाले देते रहते हैं, और फिर वो चीजें आदत में बदल जाती हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, मनोरंजन देना है, लेकिन स्वस्थ मनोरंजन हमें अपने आगामी पीढ़ी को देना है।
1: और बच्चों को हमें समझाना भी है कि जब हम अपने हाथों से खाना खाते हैं तो, और खाने पर पूरा ध्यान रखते हैं, तो पुराने समय में क्यों ऐसा होता था, क्योंकि जब हम हाथों से अपने खाना खाते हैं ना, तो एक जुड़ाव होता है खाने के साथ, उसकी सुगंध को महसूस करते हैं, उसके उसके स्वाद को महसूस करते हैं, तो वो खाना में और फायदा पहुंचाता है। इसलिए जरूरी होता है कि जब कुछ ना चल रहा हो, उस समय टीवी मत चलाइए, उसमें कुछ नहीं करिए, कहते हैं बात भी बोलना भी नहीं चाहिए, तो खाते समय थोड़ा अगर इस तरीके से हम करें तो देखिए कितना स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।
0: बहुत सही बात कही आरती आपने, कि हम एक एक स्वाद को महसूस कर पाते हैं, लेकिन अगर हमारा ध्यान किसी और भी है, किसी तीसरी तरफ भी है, कि एक तरफ हमारी नजरें हैं इस तरफ की भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, एक तरफ हम टीवी भी देख रहे हैं, हमारा ध्यान मोबाइल पर भी है, तो खाने का लुत्फ हम ले ही नहीं पाएंगे, और जितना असर हमें हर चीज को लेकर वो भोजन देगा शायद नहीं दे पाएंगे।
1: बिल्कुल। तो और हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिख रहे हैं।

0: कि प्राचीन काल के सामूहिक उत्सवों से लेकर आज के व्यक्तिगत डिजिटल स्क्रीन तक मनोरंजन का स्वरूप काफी बदल गया है। हालांकि इसका मूल उद्देश्य दिन भर की थकान मिटाना और मानसिक शांति पाना आज भी बिल्कुल वैसा ही है, बस चीजें चेंज हो गई थोड़ी सी।
1: बिल्कुल, तो हम फिर से एक पुराने गाने की तरफ बढ़ते हैं
0: बिल्कुल बदलाव
1: और बदलाव हम लेकर आ रहे हैं, तो एक गीत सुनते हैं।

0: होते थे, अब आज वो डिजिटल माध्यमों से होते हैं। कभी पूरा परिवार साथ बैठकर रेडियो सुनता था या दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखता था, जबकि आज अक्सर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्क्रीन में, फोन में बिजी दिखाई देता है।
1: और देखिए ना हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं, मनोरंजन के स्वरूप भले बदले हों, रेडियो ने हमें आज भी जकड़ रखा है। यानी कि रेडियो जो है ना वो हमारे बहुत सारे श्रोताओं का मनोरंजन का बहुत पसंदीदा माध्यम है। आगे लिखते हैं कि रेडियो से पहले हमारे घर में ग्रामोफोन प्लेयर हुआ करता था,
0: अरे वाह,
1: जिस पर पुराने दौर की उन फिल्मी गीतों के रिकॉर्ड बजाकर हम लुत्फ उठाया करते थे। उसके बाद हमारे यहाँ साल 1960 में रेडियो का आगमन हुआ। उस समय से लेकर आज तक ये हमारे मनोरंजन का साथी बना हुआ है। इसके अलावा सिनेमाघर और दूरदर्शन का जमाना आया, जिसमें हर रविवार के दिन आ रही रामायण जैसे सीरियल और शाम को आने वाली फिल्में हमें काफी प्रभावित किया करती थी। आज इंटरनेट और स्मार्टफोन ने मनोरंजन को व्यक्तिगत और ऑन डिमांड बना दिया है। और आगे लिख रहे हैं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
0: देखिए परिवर्तन तो होता ही है
1: जी,
0: अब हम उसे स्वीकारें या ना स्वीकारें। और हमारे एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि बचपन में सबसे मजेदार एक और मनोरंजन का साधन था कथा कहानी सुनाने का। सच में घर परिवार रिश्तेदार में कुछ ऐसे सदस्य होते थे जो कथा कहानी बहुत अच्छा सुनाते थे और आपको उसमें बीच में हुंकारी भरना जरूरी होता था। और कथा एक दिन में खत्म नहीं होती थी, दो दो दिन तक चलती थी। सुनने वाले की बातें इतनी लच्छेदार होती थी कि हम तन्मय होकर उस कथा को या कहानी को सुनते रह जाते थे।
1: और इसी तरह से हम बात करें कि बदलते स्वरूप की, तो पहले चिट्ठियां हमारे श्रोता लिखा करते थे, अब हमारे श्रोता हमें कमेंट लिखकर भेजते हैं। कुछ श्रोता सिर्फ अपने विचार, इस जिस जो भी बात हो रही है उस बारे में अपने विचार लिखते हैं, लेकिन कुछ श्रोता ऐसे भी हैं कि भाई उन्हें बिल्कुल तैयार माध्यम मिल जाता है, वो गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं उस बारे में और बिल्कुल उसको वहां से कॉपी करके एज इट इज वैसा कि वैसा उसे पेस्ट कर देते हैं। उसमें आप अपने विचार भी जोड़िए और आपकी क्या बात है वो राय भी हमने लिख कर
0: पहुंचाएं, आपके विचार जानने का मौका मिलेगा कि आप क्या सोचते हैं इस विषय पे, तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: तो ये तो हमें भी पता है, बिल्कुल गूगल पर सब तरह की जानकारी है, लेकिन आपको अपने विचार लिखकर भेजने, इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना श्रोताओं से कि आप अपने विचार इस बारे में लिखकर भेजिए कि आपने क्या बदलते देखा है इस दौर में।
0: जो आपके अनुभव है ना वो जब हम साझा करेंगे ना तो और लोगों तक भी वो जो अनुभव है वो पहुंचेंगे
1: जी।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि एक समय था जब लोग मेले, कठपुतली के शो, नाटकों और रेडियो पर निर्भर थे। इसके बाद सिनेमा घरों और टीवी का दौर आया, लेकिन अब जो है वो जो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं मनोरंजन के, जिन पे पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़ दिया गया है। तो पहले तो ऐसा होता था कि जैसे हम शाम को जब हमारा कोई सीरियल आने वाला है तो उसके लिए बहुत ही इंतजार कर रहे होते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि ऐसी ऐसी अब सीरीज हो गई है कि उनके एपिसोड ही चलते रहते हैं। तो ये बदलाव बता रहे हैं इस तरीके का हुआ है
1: बिल्कुल। और मनोरंजन का वास्तविक उद्देश्य मन को प्रसन्न करना होता है, तनाव को कम करना होता है, जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना होता है। आरती, अगर मनोरंजन हमें संवेदनशील, रचनात्मक और सकारात्मक बना रहा है तभी उसकी वास्तविकता हम कह सकते हैं कि वो सिद्ध होती है। इसीलिए हमें ऐसे मनोरंजन को अपनाना चाहिए जो ज्ञान भी दे, हमारी संस्कृति और मानवीय मूल्यों को भी समृद्ध करता रहे।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि हम मनोरंजन के साधन को उस हिसाब से लें कि भाई हमें जो ज्ञान भी थोड़ा सा हमारा बढ़ाए।
1: बिल्कुल, समय तो बदलता रहेगा, मनोरंजन के स्वरूप भी बदलते रहेंगे, लेकिन उसका मूल उद्देश्य हमेशा एक ही रहेगा कि हमारे जीवन को आनंदमय और संतुलित, सार्थक बनाते रहना। आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित करके ही हम मनोरंजन का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो मनोरंजन के साधन को आप बदलते स्वरूप को अपने तरीके से चीजों को आप लीजिए। थोड़ा सा परिवर्तन भी जरूरी होता है, लेकिन आप ज्ञानवर्धक चीजों को देखिए, ऐसी चीजों को देखिए जिससे कि आपका पूरा विकास हो, आपके दिमाग का अच्छा, आपको खुद तनाव से मुक्ति मिले और आपको अच्छा महसूस हो, और साथ ही थोड़ा शारीरिक गतिविधि भी रहे। इस तरीके के मनोरंजन के साधन भी करिए, जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह भी हैं, जैसे खेल हैं उनमें भी आप जा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा
0: आप, कथा कहानी वाली बात बहुत अच्छी बताई है, आप वो भी चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे पुराने ऐसे खेल हैं जिनको हम खेल सकते हैं, बैठ के घर में आपस में बात कर सकते हैं, अंताक्षरी जैसे खेल होते थे वो खेल सकते हैं,
1: जिनमें तो कोई अलग से कोई खिलौना नहीं लाना है, बिना खिलौने वाले खेल भी हुआ करते थे। लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि अभी समय है एक अंतराल का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं।
3: बिल्कुल, तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी।
2: अभी बातचीत से पहले हम सुनेंगे,
3: वही देखा चंचल जी की तरफ कि उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम पहले
2: अभी गीत सुनेंगे।
3: चलिए पहले
2: भाई मनोरंजन की बात हो और मनोरंजन में गीत ना हो तो कैसे होगा।
3: आपने

0: तो भाई इस गीत के बाद में अब हम बात करेंगे सखी विशेष में, जिन्हें पद्मश्री मिल चुका है, उनकी जो है यानुंग जामोह लेगो, जो कि जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं।
1: बिल्कुल। और यानुंग जामोह लेगो भारत के अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पारंपरिक जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन औषधीय पौधों के संरक्षण, पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को संजोने और लोगों को निस्वार्थ उपचार करने में समर्पित किया है।
0: वो विशेष रूप से कुछ समुदाय हैं उनमें प्रचलित उपचार, पारंपरिक उपचार पद्धतियों की संरक्षक मानी जाती हैं। 1963 में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के सिका टोडे गांव में उनका जन्म हुआ और ये वहाँ के समुदाय हैं उनसे ताल्लुक रखती हैं।
1: बिल्कुल। पारंपरिक चिकित्सा में उनका प्रवेश घर से ही शुरू हुआ था। उन्होंने अपने पिता से जड़ी बूटी चिकित्सा सीखी, जो कि एक सम्मानित लोक चिकित्सक थे। उनके मार्गदर्शन में पौधों के चयन, तैयारी और उपचार और प्रार्थना से संबंधित पारंपरिक रीति रिवाजों का अवलोकन किया और लगभग 15 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने 1995 में अपना स्वतंत्र अभ्यास शुरू किया। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट से बीएससी और एमएससी कृषि की उपाधि प्राप्त की।
0: विश्वविद्यालय की परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1988 में अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में काम करना शुरू किया और वो लंबे समय तक वरिष्ठ पदों पर रहते हुए 2023 में वहां से सेवानिवृत्त हुई और इसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय पारंपरिक प्रथाओं और सामुदायिक प्रशिक्षण को समर्पित कर दिया। इसके बाद 2009 में उन्होंने इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज की स्थापना की, जो औषधीय पौधों और घरेलू स्तर पर जड़ी बूटियों के बागानों की खेती, संरक्षण और शिक्षा देने की पहल है, जिसके माध्यम से पूर्वजों के ज्ञान को व्यवहारिक खेती से जोड़ा गया है।
1: और लेगो के योगदान का एक मुख्य पहलू है पुनर्जीवन और ज्ञान का प्रसार। बुजुर्गों द्वारा ज्ञात जड़ी बूटियों की सूची बनाना, उनकी प्राकृतिक संरक्षण को प्रोत्साहित करना और नर्सरी एवं रसोई के खेतों में दुर्लभ प्रजातियों की खेती करना।
0: स्वदेशी हर्बल हेरिटेज के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में शिक्षित किया। अरुणाचल प्रदेश में स्वदेशी चिकित्सा के पारिस्थितिक
2: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: ब्यूटियों के जो अर्क होते हैं उस पर केंद्रित है, जिन्हें काढ़े, पाउडर, पेस्ट या तेल के रूप में तैयार किया जाता है। उनके प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें 2007 में सृष्टि सम्मान, 2013 में पारंपरिक वैद्य रत्न और 2019 में अरुणाचल स्टेट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और इसके साथ ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है।
0: तो बस लोग उनसे इसी तरह से चिकित्सा लाभ लेते रहे और वो बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य में इजाफा करती रहे, यही शुभकामना है। सुनते हैं गाना।
3: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ।

0: शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज में पतंगा फिल्म का गाना था आरती, और हमने एक गाना सुनवाया था अपलम चपलम, और हमने एक दिमागी कसरत या पहेली पूछ ली थी अपने सुनने वालों से कि उस गाने में दो बहनों की आवाज, वो कौन सी दो बहनें हैं। तो बहुत सारे जो गाने हमने बाद में भी सुनाए ना, उनके लिए भी हमारे श्रोताओं ने फिल्म का नाम कौन सा है, गायक गायिका कौन से है, वो सारी जो पूरी जानकारी है वो लेकर भेजी है। लेकिन फिलहाल वो हम बता दें कि वो आजाद फिल्म का गीत था, आवाज थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की। और बात है दिमागी पहेली की,
1: बिल्कुल,
0: तो पहेली जो है वो दिमागी कसरत करवाती है, और दिमागी कसरत के लिए क्या क्या हो सकता है इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी
1: बहुत
0: हैं।
1: सारी चीजें बताई हैं। तो कौन सा आप पहले पढ़ रही हैं संदेश?
0: एक संदेश में लिखा है कि मुझे और मेरी बहन को बचपन से ही नियमित अखबार में आने वाली जो वर्ग पहेली होती थी ना, उन्हें भरने का बड़ा शौक रहा है, और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक हर आयु वर्ग के लिए पहेलियां लाभदायक होती हैं। कुछ मिनट में पहेलियां सुलझाना दिमाग के लिए उतना ही उपयोगी है जितना शरीर के लिए नियमित व्यायाम। हम किसी पहेली का उत्तर खोजते हैं तो हमारा मस्तिष्क तर्क, कल्पना, स्मरण शक्ति और सूझबूझ का एक साथ में उपयोग करता है। ये मानसिक अभ्यास सोचने समझने की क्षमता को निखारता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। बहुत सही बात लिखी है इन्होंने कि एक साथ कितनी चीजें जुड़ जाती हैं।
1: बिल्कुल। तो और एक हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिखते हैं कि जो शारीरिक कसरतें हैं उनके साथ दिमागी कसरतें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। वैसे हर रोज़ सुबह 5 बजे उठकर बिस्तर पर हल्की कसरत करने के बाद प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, साथ में रेडियो पर विविध भारती भी सुनता रहता हूँ, दिमागी मनोरंजन रूपी कसरत भी हो जाती है। रही बात पहेलियों की, तो न्यूज़पेपर में हर रोज़ आ रहे क्रॉसवर्ड्स पजल सॉल्व करके टाइम पास करने के साथ साथ दिमागी कसरत भी हो जाती है।
0: बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पहेलियां ही नहीं, मैं जो सखी सहेली और सुरीला सफर प्रोग्राम में कमेंट्स लिखता हूँ उसके लिए भी शब्दों और वाक्यों को सोचता हूँ और उससे मेरी दिमागी कसरत होती है। जो लेखन का कार्य करते हैं बिल्कुल उनके लिए हर बार नए शब्द चुनना, और जो काव्य गद्य लिखते हैं क्योंकि एक जैसा ना हो, एक रास्ता ना लगे, हर बार सुनने वालों को पढ़ने वालों को नया लगे, इसके लिए नए शब्दों को सोचना, नई रचनात्मकता लेकर आना अपने लेखन में, ये बहुत बड़ी दिमागी कसरत है।
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पहेलियां सुलझाना एक बेहतरीन मानसिक व्यायाम है, ये ना केवल हमारे दिमाग को सक्रिय और चुस्त रखता है बल्कि सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति और याददाश्त को भी बढ़ाता है। दिमागी कसरत के कुछ मुख्य फायदे भी हैं, जैसे कि एकाग्रता में सुधार होता है, पहेलियों को समझने और उनका जवाब खोजने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, समस्या सुलझाने का कौशल आता है, ये हमें किसी भी स्थिति में लीक से हटकर सोचने में मदद करती हैं, और साथ ही नए शब्दों और तर्कों का उपयोग करके दिमाग की नसें भी मजबूत होती हैं और नई यादें बनती हैं और कुछ नया और मजेदार भी होता है, इसी हमें तनाव से राहत मिलती है।
0: हमारे श्रोता ने तो बहुत सारी पहेलियां लिखकर भेज दी हैं और अंत में उन पहेलियों के जवाब भी लिखकर भेजे हैं।
1: अच्छा
0: और देखिए एक बड़ा सुंदर संदेश है, पहेलियों के विभिन्न पहलुओं और सुरागों यानी उनके क्लूज को याद रखने से शॉर्ट टर्म मेमोरी मजबूत होती है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है। आगे ये कहना चाहते हैं कि समस्या सुलझाने की क्षमता, पेचीदा सवालों को हल करते समय मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय होते हैं जो तार्किक सोच और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। एकाग्रता और धैर्य, एक सही उत्तर तक पहुंचने के लिए गहराई से सोचना पड़ता है जिससे फोकस और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है।
1: बिल्कुल। और सबने इसी तरह से लिखा है कि पहेलियां वास्तव में मस्तिष्क के लिए बेहतरीन दिमागी कसरत है, हमारे श्रोता कहते हैं ये हमारी सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति और रचनात्मकता को चुनौती देती हैं जिससे मानसिक विकास होता है।
0: तो भाई अब थोड़ा सा मनोरंजन कर लिया जाए,
1: एक गीत
0: सुने।

0: आदित्य तुम सच सच बोलो कि बारिश जब होती है तो कई बार ना चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक चीज है।
1: क्योंकि मैं खाती हूँ ऐसा।
0: हाँ तुम बहुत चटोरी हो, ये बात पहले भी श्रोताओं के सामने तुम मान चुकी कि तुम बड़ी चटोरी हो, और बारिश में भी चटपटा हम देख के, जब हम देते ना कि तली भुनी चीजें बन रही हैं, कहीं पकौड़े हैं या कुछ और है, चाट
1: बस
0: बन
1: मन
0: रही
1: नहीं
0: है,
1: मानता है फिर तो एकदम से।
0: लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने तुमसे सवाल किया कि स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए इन चीजों को तुम कितना अनदेखा अनसुना करती है, अपने नाक कान बंद कर लेती हो, बताओ।
1: बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ मैं कि बारिश के मौसम में मैं बहुत ही कम, कभी खा लिया अगर पकौड़े वगैरह, पकौड़े खा लिए तो फिर मैं उस दिन बहुत ही हल्का कभी एक टाइम खाना खाती हूँ, वो भी बहुत ही हल्का सा खिचड़ी ले लिया कुछ इस तरीके का, क्योंकि ना बहुत ज्यादा हैवी जब हो जाता है ना तो वो आपकी परेशानी कर सकता है,
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरीके
0: आपको
1: से करना
0: अपच
1: चाहिए।
0: की समस्या इस मौसम में बहुत जल्दी हो सकती है, और आपकी जब पाचन समस्या अगर जवाब देगी तो वो बहुत सारी समस्याएं एक साथ लेकर आ जाएगी। इसीलिए कोशिश करें कि इन दिनों में साफ उबला हुआ पानी पिए या
1: बिल्कुल।
0: फिर फिल्टर किया हुआ पानी पीजिए, ताजा और गर्म गर्म भोजन करें, खुले में जो भी बिकने वाली खाद्य पदार्थ हैं उन्हें खाने से
1: बिल्कुल
0: बचें।
1: बारिश में तो बिल्कुल भी बाहर का ना खाएं तो अच्छा है, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: अभी हमें पता नहीं होता है कि वो किस तरीके से बन रहा है, या क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत बहुत ज्यादा बारिश पड़ी है उसके बाद हम गए हैं तो फिर बहुत नहीं बिकते हैं वो सामान, तो किस तरह से हम खा रहे हैं, उसी समय का बना हुआ है, ताजा है या बहुत देर का रखा हुआ है, तो वो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल
0: और
1: सकता
0: हम
1: है।
0: सिर्फ खान पान की ही बात क्यों करें, भी बारिश में कई बार आसपास में पानी जमा हो जाता है, कुछ ऐसी चीजें होती है ना गड्ढे जहां पानी सूखता ही नहीं है, कुछ ऐसी अगर चीज रखी है हमारी छत पर, हमारे आंगन में, गलियारे में, वहां पानी भर गया वो सूख नहीं रहा, तो वहां मच्छर बहुत जल्दी पनप सकते हैं, जो बहुत सारी बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इन्हें लेकर आ सकते हैं। तो वहां पानी का भराव ना होने दें, और घर में भी मच्छरदानी या मच्छर भगाने वाले जो अन्य साधन है जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाए उनका उपयोग कर सकते हैं। फल सब्जियां जो भी आप बाजार से लेकर आए उनको धोकर अच्छी तरह सुखा कर फिर उपयोग करें, तो ये सारी सावधानियां रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और साथ ही अगर हम कहीं से बाहर से भीग गए, भीग कर आए तो तुरंत कपड़े बदलें और अच्छे से उसमें हम स्नान करें या कुछ इस तरह की चीजें करें, और जिससे कि ना भीगे ना रहें।
0: और बच्चों और बुजुर्गों की स्वास्थ्य के लिए खास तौर पर ध्यान रहना देना होता है, क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी पावर है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सबसे ज्यादा कमजोर होती है, इसीलिए इसमें इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होने की संभावना होती है। तो मौसम के अनुसार हल्के और पूरे शरीर ढकने वाले कपड़े भी आप बच्चों को पहना सकते हैं और बुजुर्गों के लिए भी इस चीज का ध्यान रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है ये चीजें करनी। और साथ ही हमारे श्रोता भी हैं, वो भी लिख रहे हैं कि वो कहते हैं कि बारिश के मौसम में स्वास्थ्य, सुरक्षा और यात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ताजा और गर्म भोजन करें, बाहर जाते समय रेनकोट या छाता साथ में रखें, सड़क पर जल भराव और खुले हुए तारों से आप दूर रहिए, बहुत जरूरी है क्योंकि बारिश होती है उस समय अगर कोई खुला हुए तार पड़े हुए तो बहुत ये जानलेवा भी हो सकता है, तो और भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहन लीजिए और पैरों को अच्छी तरीके से सुखा लीजिए।
0: हमारे श्रोता ने संदेश में लिखा है कि बारिश के मौसम में हमेशा हाइड्रेटेड रहें, यानी कि पानी की कमी अपने शरीर में ना होने दें। मौसम ठंडा होने के कारण अक्सर कर लोग कम पानी पीते हैं जिससे डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है। भरपूर मात्रा में गुनगुना या फिर साफ पानी पिए, ताजा और सुपाच्य भोजन हो इसका ध्यान रखें, क्योंकि बारिश में पाचन शक्ति थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, तो बाहर का तला भुना खाने की बजाय खिचड़ी, दलिया, सूप और इस तरह का हल्का भोजन करें।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बारिश के मौसम में नमी और बढ़ते प्रदूषण के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, स्वस्थ रहने के लिए हमेशा उबला हुआ फिल्टर किया हुआ पानी पिए, और जो खाने जो बाहर सड़क पर बिक रही है चीजें और जो ढकी हुई नहीं है उनको आप खाने से बचिए, उन्हें मत खाइए, भीगने पर तुरंत सूखे कपड़े पहने और मच्छरों से बचने के लिए किसी चीज का आप उपयोग कर सकते हैं।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि बरसात के मौसम में नमी और दूषित पानी के कारण डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार और पेट का संक्रमण, इन सब का खतरा बढ़ जाता है। इनसे बचने के लिए हमेशा उबला हुआ शुद्ध पानी पिएं, स्ट्रीट फूड से बचें, मच्छरों के बचाव के लिए हमेशा घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, और जैसा हमने बताया भी था कि मच्छरदानी भी आप उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि बारिश में भीगने से बचें, और अगर भीग जाए तो घर आते ही सादे या गुनगुने पानी से नहा लें और सूखे कपड़े पहने, हाथों को अपने साफ रखें, बैक्टीरिया से बचने के लिए समय समय पर हाथों को साबुन से धोते रहें, आंखों के संक्रमण से बचने के लिए बरसात में अक्सर ऐसा होता है कि आंखों का आना या जैसी कंजक्टिवाइटिस जो है वो हो जाता है, उसका खतरा बढ़ जाता है, तो अपनी आंखों को बार बार छूइए मत और साफ पानी से उन्हें धोइए।
0: बिल्कुल, हमारे सभी श्रोता जो सुन रहे हैं इन संदेशों को वो बहुत इस बात का ध्यान रखेंगे। अगले संदेश में लिखा गया है कि बरसात का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और हरियाली लेकर आता है। कितनी अच्छी बात लिखी है, लेकिन आगे फिर लिख रहे हैं कि इस मौसम में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बारिश के दिनों में साफ और ताजा भोजन का सेवन करना चाहिए, बाहर के खुले अस्वच्छ पदार्थों से बचना है, उबला स्वच्छ पानी, हाथों की सफाई, इन चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है, और जल्दी से जल्दी सूखे कपड़े पहन लेने चाहिए ताकि सर्दी जुकाम से बचा जा सके। और ये तो बहुत सही बात है कि कपड़े एक बार गीले हो गए और लगातार बारिश है तो उनको सुखाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है। और नमी वाले कपड़े अगर हम पहने रहेंगे तो शरीर पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बरसात का मौसम सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी जैसा होता है, थोड़ी सी भी लापरवाही आपको अस्पताल पहुंचा सकती है, इसलिए स्वच्छता को अपनी प्राथमिकता बनाएं। अगर आपको या परिवार में किसी को भी तेज बुखार, अत्यधिक थकान, उल्टी या दस्त की शिकायत हो तो खुद डॉक्टर बनने के बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से आप परामर्श करिए।
0: और अब मुझे लगता है कि हमें एक गीत सुन लेना चाहिए और ये होगा आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा दीजिए चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए देश भर में फैले हमारे श्रोता जुड़ते हैं विविध भारती से, हमारे इस कार्यक्रम से, और करते हैं अपने पसंदीदा गानों की फरमाइश। ये
1: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
2: कम से कम 15-20 साल से लगातार जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा, सभी कार्यक्रम सुनते हैं?
2: जी जी मैम।
0: अच्छा, आपसे जब हम बात कर रहे हैं तो पीछे से मोरों की आवाज आ रही है।
2: जी जी मोर है, मैं अभी खेतता हूँ खेती बाड़ी पर।
0: अच्छा, मतलब आपने खेत में बैठकर बात कर रहे हैं और वहाँ पर मोर आते हैं?
2: जी जी मोर आ रहे हैं, मोर बहुत पक्षी हैं, मोर हैं, कोयल हैं, सभी तरह की पक्षी नजर आते हैं हमारे गांव में।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगता होगा ना?
2: जी जी मैम, अपने खेती बाड़ी में मक्का बो रहा थी, उसमें यहीं बैठा हूँ मैं, यहीं से बात कर रहा हूँ।
0: तो आपके शहर का या गाँव का मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
2: हमारे गुना MP में मौसम मतलब अभी तो बादल हो रहे हैं, पानी भी बरसा था 2-4 दिन पहले।
0: अच्छा,
2: अभी तो अच्छा मौसम है।
0: चलिए, तो आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा ना?
2: जी नहीं, फसल का नुकसान नहीं है, बारिश की फसल है, मक्का है, कुछ नुकसान नहीं है इसमें।
0: तो ज्यादा मोर आते हैं क्या?
2: हाँ, बहुत मोर है हमारे गांव में।
0: उनको खेतों में आने से कैसे रोकते हैं आप ताकि फसल को नुकसान नहीं हो?
2: बिल्कुल नहीं रोकते हैं, वो नुकसान नहीं करती हैं, अभी थोड़ी बहुत चौकती हैं, चौक के निकल जाती हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके
2: और आपके प्रोग्राम में हेलो फरमाइश रहतनामा सखी सहेली और आपके जो मन चाहे गीत, ये पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और कार्यक्रमों को सुनते हैं विविध भारती के। आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
2: आज मुझे बंजारन का गीत है, ये जीवन इतनी बार मिले, हर बार मुझे साजन का प्यार मिले।
0: बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ, हम रहीम खान पठान बात कर रहे हैं।
0: कहाँ से बोल रहे हैं रहीम जी?
1: परवानी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे है, मजो में है। 1975 से हम विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, हमारे जो श्रोता हैं वो इतने नियमित हैं कि हम कई बार हैरान हो जाते हैं जानकर कि विविध भारती के कार्यक्रमों के अलावा उनके जिंदगी में और कुछ है ही नहीं।
1: विशेष खास तौर से एक बात बताना चाहेंगे हम आपको, नहीं बल्कि हमारे सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, कि देखिए आकाशवाणी एक ऐसी माध्यम है जिसके जरिए से हमारा काम भी चलता है और हम प्रोग्राम भी सुन पाते। रही दूसरी बात, अभी देखिए आज के तारीख में जवान बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मोबाइल की ओर जा रहे हैं और कम उम्र में उनको चश्मा लगने की संभावना हो रही है।
0: जी, आपने एक ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान दिलाया है और वाकई ये समस्या हर घर में है कि बच्चे जो हैं मोबाइल से लगे रहते हैं और उनकी आँखों के अलावा उनके दिमाग में भी जो है, आप देखिए ना कितनी तरह की बातें घर कर गई हैं जो बातें उस उम्र में नहीं होनी चाहिए, और इसलिए इतने क्राइम हम आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में बच्चे क्राइम कर रहे हैं, ये सब मोबाइल की ही देन हो रही है।
1: हम ये चाहते हैं सभी माता पिताओं से, बच्चों को, बच्चे देश के भविष्य होने के कारण ऐसा है कि आपको बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है और सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना है, मोबाइल में नहीं देना है। और हम बच्चों को पढ़ाई करेंगे अच्छे से अच्छे, जैसा आप आलोचर विविध भारती से बात करते हैं, हमारा देश पूरा आपकी आवाज सुनता है और हम तो रात दिन रेडियो के साथ ही रहते हैं। जैसा ही प्रोग्राम चलता है तो हम रेडियो लगा के बैठ जाते हैं, हमारा काम भी चलता है और रेडियो का प्रसारण भी चलता है।
0: बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है कि बच्चे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं।
1: हम यहाँ पे परभणी महाराष्ट्र में हम बिल्डिंग आरसीजी बिल्डिंग वर्कर का काम करते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रहीम साहब, कि आप खुद ये समझ रहे हैं कि आपको शिक्षा नहीं मिल पाई या नहीं ले पाए और आपको इतनी धूप में इतनी मेहनत का काम करना पड़ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने हमें दिया है। अब बताइए आपकी पसंद का कोई गीत
1: हमें। दीदी आज के इस प्रोग्राम में अमर अकबर अंतोनी फिल्म का गीत सुनना है, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे, ये गीत सुनना है।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

सूरज दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: जी राम स्वरूप जयकुमार बोल रहे हैं, ग्राम भगौता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से।
0: राम स्वरूप जी स्वागत है आपका, कैसे हैं राम स्वरूप जी?
1: बढ़िया है आपकी कृपा से, आप कैसी हैं मैडम जी?
0: हम भी अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हमारे यहाँ तो बारिश हो चुकी है मैडम जी, झमाझम बारिश हो गई, अभी 2-3 दिन से पानी बस नहीं गिरा है।
0: अरे वाह,
1: बहुत बादल हो रहे हैं,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है ना
1: जी। गाना सुना दीजिए, फैरी मूवी का है और ओम नमः शिवाय ऐसे गाना है।
0: अच्छा चलिए, अच्छी बात है, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते।
1: मैं आपका शुभ चिंतक बाहुबली फुरसुले छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ, मंदाकिनी जी।
0: जी जी।
1: विविध भारती तो मैं करीबन 30 साल से मैं जुड़ा हूँ। विविध कागज अनेक कार्यक्रम का प्रचलन होता था बहन जी, और जो एक मंथन कार्यक्रम रहता था उसमें तो हमारे विचारों को चालना और आपस में मेलजोल होता था बहन जी।
0: जी जी।
1: मेरी उम्र 84 चालू है, अभी तो मैं घर में ही बैठा हूँ आराम से, और आपसे गुप्तगु करने का इंतजार कर रहा था। सौभाग्य से मेरी बात भी आपसे चालू है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है।
0: जी, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे इतने पुराने श्रोता, या यूं कहें इतने सीनियर श्रोता हमसे बात करते हैं।
1: ये मेरा जो शौक है, ये करीबन 30 साल पूर्व से मैं इस आकाशवाणी से जुड़ा हूँ, और आकाशवाणी ऐसी एक माध्यम है जिसके जरिए मनोरंजन तो होता ही है, मगर अपने जीवन में कुछ नया सीखने का, कुछ नई बातें, स्वास्थ्यवर्धक, विज्ञान, कला, यह सब बातें हमको प्रदान की है, और उससे सभी हमारे श्रोता बंधु पुलकित होकर तृप्त हो गए हैं बहन जी।
0: बहुत अच्छी बात है। तो बताइए बाहुबली जी, आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: फिल्म प्यासा का एक गीत में नगमा निगार ने समाज में फैली हुई दुराचारी, दुष्कर्मी, भरे भी धोखाधड़ी पर अपने अंतस की वेदना, दुख, पीड़ा को बड़े हृदय स्पर्शी शब्दों में बयां किया है। वो गीत के बोल है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। इसमें कवि ने समाज में जो एक अवडंबर और समाज के प्रति जो विद्रोह और उसके प्रति जो शोषण होता है, सच्चाई को उसके ऊपर झूठ का आरोप करके जीतना चाहते हैं, तो इसके ऊपर कवि ने अपने दुख वेदनाओं को बड़ी सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है बहन
0: जी। बिल्कुल, एक कालजयी गीत आप सुनना चाहते हैं फिल्म प्यासा से, जिसे आवाज मोहम्मद रफी साहब ने दी है, और ये गीत जो है हमें झकझोर देता है, और मेरी पसंद का भी ये गीत है। चलिए, आप सबके साथ मिलकर हम भी इस गीत को सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं पप्पू चंदन बोल रहा हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल से पप्पू जी बोल रहे हैं, स्वागत है आपका। कैसे हैं पप्पू जी?
1: बढ़िया हूँ।
0: क्या कर रहे हैं इस समय?
1: ड्यूटी पर आ गया है, बेकरी में है।
0: अच्छा, बेकरी में काम करते हैं।
1: जी जी जी।
0: क्या समय है आपके आने का?
1: हमारा वही मतलब 11 से 11:30 तक ड्यूटी में आ जाते हैं।
0: और रात तक?
1: 9:30 बजे तक।
0: अच्छा, चलिए नौकरी आराम की है ना?
1: जी जी।
0: तो बताइए कैसा लगता है आपको अपने यहाँ काम करने में? बेकरी में क्या क्या आइटम बनते हैं?
1: सभी बनते हैं, मतलब केक है, पेस्ट्री है, अपना बिस्किट है, कुकी, ये सब मतलब ब्रेड है, सभी आइटम मतलब बेकरी आइटम जो है।
0: आप भी कुक का काम करते हैं?
1: जी जी, मैं केक बनाता हूँ।
0: अरे वाह, कौन से केक ज्यादा चलता है आपके यहाँ?
1: नॉर्मली चलता है पाइन एपल ब्लैक फॉरेस्ट जो चलते हैं, मतलब वही ज्यादा। हाँ, लेकिन पाइन एपल जो है वो मतलब हमेशा ये
0: हर व्यक्ति को पसंद आ सकता है पाइन एपल का, है ना? एक दिन में कितने केक बना लेते हो आप?
1: बन जाते हैं मतलब जैसा अपना ऑर्डर हो, मतलब जैसा डिमांड रहता है, मतलब 60-70 के जैसे निकल, मतलब अपने मार्केट के ऊपर ही है जैसा चल रहा है।
0: कितना समय हो गया इस काम में आपको लगे हुए?
1: 20 साल हो गया, 2002 से लगा था।
0: 20 साल का अनुभव बोल रहा है आपका। चलिए बहुत अच्छा लगा। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: विधाता पिक्चर का मैम, हाथों की चंद लकड़ियों का, विधाता पिक्चर का।
0: गाने के बोल बताइए।
1: हाथों की चंद लकड़ियों का, ऐसा कुछ।
0: चलिए आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: मैडम जी राम राम।
0: नमस्कार, राम राम, कैसे हैं?
1: मुझे बहुत बढ़िया है। मजाक नहीं जी बोल रहे हो?
0: हाँ जी हाँ जी, अपना नाम तो बताइए आप।
1: हम बोल रहे हैं मैडम जी श्रवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं श्रवण जी?
1: बहुत बढ़िया।
0: चलिए अच्छी बात है। और कैसा चल रहा है आपके शहर का मौसम?
1: सर नहीं, हमारा तो गाँव है जी फाजिलका के 10 किलोमीटर के साथ ही। गांव के अंदर अच्छा माहौल है, खेत में मकान बनाया, अच्छा ठंडा हवा का मौसम है, थोड़ा बरसात हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और बढ़िया है। अच्छा धान जोन में लग चुका है अभी।
0: क्या धान लगाया?
1: चावल।
0: चावल की खेती हो रही है आपके यहाँ?
1: हाँ जी हाँ जी, वो चावल जैसे पहले समा पोत बीजा था, अब उसको उखाड़ कर दोबारा 20 दिन हो गया लगाए को।
0: अच्छा अच्छा, तो अभी खेती के अनुकूल है मौसम?
1: मैडम जी बरसात चाहिए, कोई परमात्मा से अरदास कर रहे हैं, और वैसे मौसम अच्छा है।
0: मतलब और बारिश की आपको जरूरत है ना?
1: बिल्कुल जी, अब हमारे बरसात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यहाँ चावल के खेती के अंदर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: तकरीबन चावल की गन्ने की खेती है हमारे यहाँ।
0: तो चावल की खेती में क्या ध्यान रखना होता है, ज्यादा से ज्यादा किस बात की सावधानी रखनी पड़ती है?
1: जैसे एक माँ आपके बच्चे का ध्यान रखती है ना, इस तरह हम जमींदार को इसका ख्याल रखना पड़ता है।
0: ये बात तो खैर सही है।
1: दिन में 3 दफा घेरा लगाना, सुबह शाम दोपहर। क्या कोई कीट लग रहा है, कोई रोग लग रहा है, कैसा पानी पूरा हुआ कि नहीं, कहाँ खाद डालना है, कहाँ कम गिरा है, ध्यान रखना पड़ता है बच्चे की तरह।
0: बिल्कुल सही कहा आप। तो 3-4 महीने तक उसको पानी में रखते हैं लगभग, है ना?
1: नहीं जी, 4-5 दिन तक। उसके बाद में फिर एक दिन में पानी पूरा हो गया, दूसरे दिन कम पड़ गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर उसमें पानी घुमा दिया, ऐसे मतलब चलता रहता। 4-5 महीने पानी भरा नहीं रहना चाहिए।
0: अच्छा, भरा नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपको लगभग ध्यान रखना पड़ता है 4-5 महीने तक कि फसल सूखने न पाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कि आप एक ऐसे किसान हैं जहां पर लहलहाती फसलों को आप देखते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपने खेत खलियान का ध्यान रखिए और बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको हम।
1: मैडम जी क्रांति फिल्म से सुना दो, चना जोर गरम।
0: चलिए, तो खेती तो आप चावल की कर रहे हैं और गाना सुनना चाहते हैं चना जोर गरम। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: जय बजरंग सुसोता संग बस स्टैंड बंदा लक्ष्य को चाय वाले को ना चाय पी लो दीदी।
0: चाय पी रहे हैं आप इस वक्त? चलिए आप पीजिए चाय और हमसे बात करिए।
1: चाय की दुकान है दीदी?
0: अरे चाय की दुकान है आपकी?
1: हाँ दीदी।
0: तो पहले नाम बताइए फिर आपसे चाय बनाने के तरीके पूछते हैं, किस तरह की आप स्वादिष्ट चाय बनाते हैं।
1: लक्ष्मण रेखवाल।
0: लक्ष्मण जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बंडा वेली जिला सागर मध्य प्रदेश।
0: स्वागत है आपका। अब बताइए आपकी चाय की दुकान कहाँ है, कैसी है, कितनी बड़ी है और कब से खोली है आपने?
1: कम से कम 30 वर्ष हो गए हैं चाय की दुकान को।
0: अच्छा 30 वर्ष से आप ही संभाल रहे हैं अपनी चाय की दुकान?
1: हाँ हम संभाल रहे हैं और भाइयों को भी करवा जा रहे हैं। 3 दुकानें हो गई हैं अब चाय की। और नाश्ता है, और नाश्ता भी आप खाना हो तो केक मलाई की बर्फी है, और समोसा है, जलेबी है, मंगोड़ी है, रसगुल्ला है, ये सब मिलेंगे हमारे पास।
0: हमारे तो मुंह में पानी आ गया ये सब सुन के, तो लग रहा है काश आपकी दुकान के सामने होते तो खा लेते थोड़ा। तो बताइए आपकी चाय की क्या खासियत है, कैसे बनाते हैं चाय और कैसे पसंद आती है लोगों को? आते हैं लोग चाय पीने बहुत?
1: हाँ बहुत आते हैं, और चाय ऐसी रहती है कि अच्छा दूध होगा तो चाय अच्छी बनेगी।
0: हाँ ऐसे तो नहीं एक ही भगोने में बार बार चाय को उबालते रहते हैं?
1: ऐसा नहीं होता है, साफ होती रहते हैं, और वे हमारी तो चाय रखते ही रहती है, धरी नहीं रहती है।
0: हाँ तो किसमें पिला रहे हैं चाय, कूलर में पिला रहे हैं या प्लास्टिक के गिलास में पिला रहे हैं?
1: गिलास में, कांच की गिलास भी है और कागज के डिस्पोजल भी है।
0: तो क्या डालते हैं चाय में फटाफट बताइए और फिर अपनी पसंद का गीत सुनिए। कैसे बनाते हैं चाय?
1: हम चाय बिल्कुल अच्छी बने तो अच्छी खोला लेते हैं, उसमें शक्कर पत्ती इलायची भी डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। जैसे ठंडों में अदरक डालते हैं
0: और गर्मी में इलायची।
1: हाँ
0: चलिए कौन सा गीत सुनवाएं आपको बताइए?
1: आज मोहरा पिक्चर है, ना कजरे की धार ना मोतियों की हार, तुम कितनी सुंदर हो।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं बताइए अपने बारे में।
1: मैं तो ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं त्रिपुरा में रहती हूँ, मैं थोड़ा सा काम वगैरह घर में करता हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए घर के साथ जो लोग रहते हैं ना तो उसके साथ थोड़ा सा थोड़ा काम मिलजुल के करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो रेडियो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश है गीत, और जो 3 बजे शक्तिशैली कार्यक्रम आती है ना तो उसको बहुत सुनते हूँ, बहुत अच्छा लगती है।
0: अच्छी बात है आप कार्यक्रम सुनते हैं। तो अपने त्रिपुरा के बारे में बताइए, कैसा है आपका शहर, कैसा है ये जगह, प्राकृतिक रबड़ उत्पादक भी है आपके यहाँ तो त्रिपुरा।
1: हाँ, त्रिपुरा तो खेती रबड़ी खेती है तो इसका तो ज्यादा लोग रबड़ी खेती करती है, तो हमारा इधर घूमने के लिए बहुत ही जगह है तो इसके लिए पर्यटक आती है तो घूम के जाती है, बहुत अच्छा लगता है, हरियाली है।
0: कहाँ कहाँ घूमा जाए त्रिपुरा में बताइए।
1: त्रिपुरा में त्रिपुरा माँ सुंदरी टेम्पल है, इसके बाद और बहुत जगह है घूमने के लिए। मैं तो त्रिपुरा माँ का मंदिर में गया था तो बहुत अच्छी है मंदिर, घूमने के लिए बाहर से लोग आते हैं।
0: अरे वाह क्या बात है। और आपके यहाँ पर क्या बांस और बेंत के भी काम होते हैं, उससे बनी वस्तुएं या फर्नीचर बनाए जाते हैं, सजावटी सामान।
1: त्रिपुरा में तो खेती में बहुत अच्छी बांस का जो
0: काफी अच्छा सजावटी सामान बनते हैं ना, और हथकरघे का, हथकरघा का भी काफी काम होता है त्रिपुरा में। चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप।
1: मैं नाम फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, दम मरा दम मिटे जाए हम, हरे कृष्ण हरे राम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: स्वागत है आपका प्रेम जी, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और अभी खेत में ही काम कर रहे हैं हम, खरपतवार निकालने का दौरे चला रहे हैं। और बरसात हो चुकी है तो सोयाबीन की फसल लगाई है हमने।
0: क्या तैयारी करनी पड़ती है?
1: और आपको बताऊँ जी, जैसे पहले तो खेत को गर्मी में कुछ समय के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, उसके बाद में ट्रैक्टर द्वारा अच्छी तरह से हकाई जुताई होती है और फिर बरसात हो जाती है ना, तो उसमें फिर सोयाबीन की फसल लगाई जाती है।
0: अच्छा, और कितने दिन में फसल बनकर तैयार हो जाती है?
1: जी सोयाबीन की फसल हमारी, मतलब आपको बताऊं, 2.5 से 3 महीने में पक के तैयार होके कटाई भी हो जाती है। उसके बाद में जो फिर बताऊं आपको, जैसे भरपूर पानी हो जाता है ना, हर जगह कुएं नदियां तालाब भर जाते हैं, तो फिर सोयाबीन के बाद में गेहूं लहसुन और मटर की फसल लगाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, लगातार?
1: जी हाँ, लगातार होती है 2 फसल, उसके बाद में 3 महीने के लिए खेत को खाली छोड़ना पड़ता है गर्मियों में।
0: अच्छा, फिर उन 3 महीनों में क्या होता है?
1: उस समय खेत को खाली छोड़ दिया जाता है तो जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, जो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं वो गर्मी में खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर से मतलब जमीन की उर्वरता बढ़ जाती है। और जैसे ज्यादातर मटर की फसल पैदावार होती है ना हमारे यहाँ पे, तो हम मंडियों में बेचते हैं।
0: तो आपको मटर की फसल सबसे अंत में करेंगे आप, है ना, जब सोयाबीन की फसल पक जाएगी, उसके बाद गेहूँ लहसुन और मटर की एक साथ करेंगे तीनों फसलें?
1: तीनों फसल एक साथ होती है।
0: अच्छा, फिर कटाई भी एक साथ ही होगी या इनमें अंतराल रहेगा?
1: हाँ, जैसे कि लहसुन और गेहूं की कटाई साथ में होती है और मटर तो 2.5 महीने में पक के तैयार हो जाता है।
0: तो फफूंद से बचाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जब आपने बीज बोए हैं फसल आएगी तो फफूंद भी लग जाती होगी कई बार?
1: जी, जैसे तो बीज

0: तैयार करके ही लगाया जाता है। और उसके बाद में जब फफूंद होती है कभी कभार तो इल्लियां भी होती है सोयाबीन में, मटर में, लहसुन में, तो इसमें स्प्रे करना होता है रासायनिक कीट का। और वो भी मतलब ट्रैक्टर द्वारा होता है सब काम।
1: अच्छा।
0: तो ट्रैक्टर के साथ में मजदूर लगाने पड़ते हैं। मोबाइल ऐप पे आने से हमें आपको बताऊं स्पष्ट प्रसार मिलता है, और मतलब कहीं पर भी जाए ना तो साथ में हमारे विद्यार्थी चलता ही रहता है। उसमें हम सुनते हैं सखी सहेली, हवा महल, सेहतनामा के तहत जो पहले भी चलता था ना कार्यक्रम, वो भी सुनते हैं। और पिटारा के तहत हमने काफी पहले भी पत्रा वाले जो कार्यक्रम आता था ना विद्यार्थी से, जी उसमें काफी लेटर लिखे।
1: बताइए इतनी सारी बातें हो गई हैं आपसे, आप कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: फिल्म मकान में प्यासा सावन और गाने के बोले मेघा रे मेघा मत परदेश जा।
1: बिल्कुल सही गाना है, चलिए अभी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाजनी दीदी नमस्ते, मैं दूसरी बार बात हो रही हूँ आपके साथ मेरी।
0: अरे वाह क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शोर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: हाँ अच्छे हो, कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। अच्छा बताइए क्या करते हैं आप विजय जी, बात तो हुई होगी आपसे।
1: मैं अभी सोशल वर्कर हूँ दीदी।
0: अच्छा,
1: उम्र अभी 63 है।
0: अच्छा तो समाज के लिए क्या काम करते हैं, विशेष कोई?
1: दिव्यांग के लिए काम करता हूँ, जो कुछ सरकारी योजना आते हैं वो उनके तक पहुँचने का काम मैं करता हूँ।
0: उनको

0: आप बताते हैं कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं उनके लिए लागू
1: हाँ
0: हुई
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ हाँ हाँ वो बताने का, वो उनका पेंशन, वो जो कुछ
0: हाँ,
1: करने का,
0: फिर
1: वो मैं
0: उनकी
1: काम
0: उनकी
1: करता हूँ
0: मदद
1: जी।
0: करते हैं। हाँ हाँ ठीक है
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी।
1: मयूर भट्ट के सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया आ रहे हैं दीदी। सभी सच्चे सहेली हलो सहेली हलो फरमाइश गीत माला सभी सदाबहार नगमे में अभी जो शुरू हो गए ना, वो मन चाहे गीत वो भी बढ़िया कार्यक्रम है।
0: उसके लिए आपने लिखा कोई खत हमें?
1: खत मैं लिखने मैं ब्लैंड हूँ दीदी,
0: लेकिन कार्यक्रम सारे सुनते हैं ना?
1: हाँ सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, दिन भर में रेडियो चालू रहता है, मैं कन्नड़ भी सुनता हूँ और इधर मराठी हिंदी, इधर कोल्हापुर हमारे सांगली आकाशवाणी यहाँ पास में है वो भी सुनता हूँ।
0: क्या बात
1: उसके
0: है?
1: बाद में 1 बजे से कोल्हापुर आकाशवाणी रिले करते हैं विविध भारती, शाम 6 बजे तक रहता है जी।
0: वो सभी
1: उसके बाद में मैं एम पर सुनता हूँ विविध भारती का कार्यक्रम जो हमारे राजकोट अहमदाबाद वडोदरा उसके पर सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मतलब हर तरफ से आप विविध भारती को सुनते हैं।
1: ओ बिल्कुल,
0: कहीं ना कहीं बैंड चेंज कर करके सुनते रहते हैं कि कहाँ से इस
1: जी
0: समय आने
1: बिल्कुल,
0: वाला
1: बिल्कुल।
0: है।
1: दो रेडियो मेरे पास है, मैं 1970 से रेडियो का शौक है मुझे दीदी, और
0: लेकिन
1: मैं उन पहले से मेरे जो ट्रांजिस्टर आते थे ना छोटे छोटे
0: हाँ हाँ
1: वो लेके सुनता था।
0: वो अभी भी आपके पास है?
1: अभी भी नहीं, अभी वो नहीं है, अभी बड़े रेडियो, वो अपर्णा के 2 रेडियो है मेरे पास अभी।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: पैसा फेंको तमाशे देखो, ममता जी और राजेश खन्ना का एक फिल्म है दुश्मन।
0: चलिए फिल्म दुश्मन का गीत सुनते हैं और हम भी सुनते हैं आपके साथ।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: तुम बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया। चलो चलो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मंदाकिनी दीदी।
0: नमस्ते नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन जनाब बोल रहे हैं?
1: मैं बडनेरा अमरावती महाराष्ट्र से हिम्मतराव शृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी आपसे।
0: हिम्मत जी स्वागत है आपका।
1: कैसे दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या बात है, अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: मजदूरी का काम करता हूँ दीदी मैं।
0: अच्छा, जैसे
1: बिल्डिंग का काम होता है ना, वहाँ पर काम करता हूँ दीदी मजदूरी।
0: तो क्या टाइमिंग्स रहते हैं? सुबह 7:30 से पहुँच जाते हैं आप वहाँ पर और शाम के 7 बजे तक काम करते हैं?
1: शाम के 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 10 बजे जाता हूँ मैं।
0: अच्छा, बहुत मेहनत होती होगी गर्मी में तो और भी।
1: हाँ दीदी, बारिश नहीं हो रही ना अभी इधर अमरावती में, कुछ कुछ जगह हो रही दीदी बारिश।
0: तो बताइए आप वहाँ काम करते हैं फिर ये प्रोग्राम कब सुनते हैं, जैसे आप अभी हमें कॉल कर रहे हैं?
1: अमरावती स्टेशन पे FM लगा रहता है, वो साइट पर सब मजदूर लोग सुनते हैं दीदी बडनेरा अमरावती में। तो अमरावती स्टेशन है हमारा 101.5 पर आता है, तो वहाँ विविध भारती हमको क्लियर सुनाई देता है।
0: और बीच में कॉल करने की इजाजत है आपको, जैसे अभी आप हमें कॉल कर रहे हैं?
1: हाँ, हम 11 बजे ड्यूटी से छुट्टी निकाल लेते हैं दीदी, आधा घंटा 1 घंटे के लिए।
0: अच्छा बताइए, आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है धर्मा और गाने के बोले राज की बात कह दू तो की बात राज रहने दो।
0: अच्छा,
1: इशारों को इशारों में।
0: हाँ, ये कव्वाली है।
1: हाँ, मोहम्मद रफी साहब
0: और आशा भोसले की आवाज में।
1: आशा भोसले और बिंदु और प्रांत के ऊपर फिल्म आई गई, फिल्म कव्वाली दीदी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार कव्वाली है।
1: और रेखा और नवीन निश्चल इसमें अभिनेता थे, हीरोइन थी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद की है कव्वाली।

0: अगर समझो राज को राज रहने दो।
1: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867028 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: हेलो फरमाइश।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी में आपकी पसंद में।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम युवाणी में। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो दोस्त राजू राम। साथियों, आज गुरुवार है और आज हमारा कार्यक्रम है युवाणी में आपकी पसंद। साथियों, उससे पहले हम बात करते हैं, पर्यटन उद्योग युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर देने और देश की आर्थिक उन्नति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रोताओं, पर्यटन उद्योग आज वैश्विक और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक ऐसा मजबूत स्तंभ बन चुका है जो युवाओं को न केवल रोजगार के असीमित अवसर देता है बल्कि उनकी रचनात्मक ऊर्जा से खुद को पुनर्जीवित भी करता है। ये एक ऐसा बहुआयामी क्षेत्र है जहां होटल प्रबंधन, ट्रेवल एजेंसी, परिवहन, टूर गाइडिंग और सांस्कृतिक कलाओं जैसे पारंपरिक रोजगार तो मिलते ही हैं, साथ ही डिजिटल युग में ट्रेवल ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग और ऑनलाइन टूर प्लानिंग जैसे आधुनिक रास्ते भी खुले हैं। युवा अपनी तकनीकी समझ और नवाचार के बल पर इस उद्योग का चेहरा बदल रहे हैं। वे इको टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स और ग्रामीण होम स्टे जैसे नए विचारों के साथ स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं जो न केवल आर्थिक रूप से लाभदायक है बल्कि पर्यावरण और स्थानीय संस्कृतियों के संरक्षण में भी मददगार साबित हो रहे हैं। श्रोताओं, इस क्षेत्र में मौसमी रोजगार और भाषाई या संवाद कौशल की कमी जैसी कुछ चुनौतियां भी है। इन कमियों को दूर करने के लिए भारत सरकार हुनर से रोजगार तक और पर्यटन मित्र जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दे रही है। चिकित्सा पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन के बढ़ते दौर में विदेशी भाषाओं को सीखने वाले और डिजिटल रूप से कुशल युवाओं की मांग तेजी से बढ़ी है। संक्षेप में कहें तो पर्यटन क्षेत्र युवाओं को एक बेहतरीन करियर विकल्प प्रदान करता है और युवा अपनी ऊर्जा, संवाद कुशलता और अतिथि देवभाव की भावना से देश के पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। साथियों, तो ये हम आज बात कर रहे थे, आज की बात में पर्यटन उद्योग में रोजगार और युवाओं की भूमिका के बारे में। साथियों, आज गुरुवार है, गुरुवार में कार्यक्रम युवाणी में हमारा स्पेशल प्रोग्राम रहता है आपकी पसंद। साथियों, आप सप्ताह में हमें आपके ईमेल के माध्यम से हमें आपका ईमेल प्राप्त होता है, फिर उस ईमेल में आपकी फरमाइश की गीत हम कार्यक्रम आपकी पसंद में शामिल करते हैं। श्रोताओं, आज की बात में हम बात कर रहे हैं पर्यटन में रोजगार और युवाओं की भूमिका। श्रोताओं, आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन होता है आपकी पसंदीदा गीतों के साथ सजा हुआ कार्यक्रम आपकी पसंद। तो साथियों, हम देखते हैं हमारे आज के पहला फरमाइशकर्ता कौन है। हमें पहली फरमाइश प्राप्त हुई है नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती राजेंद्र चड्डा की। इन्होंने फरमाइश की है फिल्म प्यासा सावन से। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये प्यारा सा नगमा।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के

0: ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, परकर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, शुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बैन शाह और राजेंद्र जी शाह, पद्मा टोकीज, नेपा नगर, मध्य प्रदेश से। इन्होंने फरमाइश की है फिल्म हाफ टिकट से। और इसी के साथ ही मेहरनगर, उमरखेड़, महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाणकर, राही श्रीमती सरिता गंवाणकर, प्रिंस एकांश गंवाणकर, बदलापुर मुंबई से परिणीता गंवाणकर, सिद्धांत गंवाणकर, अर्जुन गंवाणकर, टुक टुक आकार हाइट्स बहादुर नगर नागपुर से वैशाली शैलेश गंवाणकर, सुमित गंवाणकर और कुमारी ध्वनि गंवाणकर परी। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का फिल्म हाफ टिकट का ये नगमा।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद में हमें अगली फरमाइश प्राप्त हुई है खींवसर नागौर से किशन सोव की। इन्होंने फरमाइश की है फिल्म मुझसे शादी करोगे का नगमा। इसी के साथ ही गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा। तो आइए सुनते हैं किशन सोव की फरमाइश का फिल्म मुझसे शादी करोगे का ये नगमा।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

करता हूँ कार्यक्रम में हमें अगली फरमाइश प्राप्त हुई है। गांव चोलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया की इन्होंने फरमाइश की है फिल्म नीला आकाश से। इसी के साथ ही मुकेश जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का फिल्म नीला आकाश का ये प्यारा सा नगमा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youtexpreesnagaur@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

साथियों, कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग और तानिया नारंग की। इसी के साथ ही जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो की। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का फिल्म दो रास्ते का ये प्यारा सा नगमा।

साथियों, अब कार्यक्रम आपके पसंद का समय समाप्त होने वाला है। हम उन श्रोताओं के नाम बताना चाहते हैं जिन्होंने फरमाइश भेजी है, लेकिन हम उनको फरमाइश में शामिल नहीं कर पाए। दादा बाबू रोड, गिरिडीह, झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नाज, बेबी चाहत और सदर बाजार कोरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देव वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। साथियों, अब कार्यक्रम का वक्त यहीं समाप्त होता है। दिराइए अपने रेडियो दोस्त राजूराम को इजाज़त। नमस्कार।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युववाणी में आपकी पसंद। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, शाम के 5:30 में। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम धीनेरी बात।

0: कोई बात नहीं, आज मुंडा उतार किया बैठा हो।
1: काई करू था अबू बेटा, भैंस पूरो दूध भी कौन दियो और बिरो जीसोरो भी कौन।
0: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया। काकी सा ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी, पशुपालन से जुड़ी होरी सबड़ी समस्या रो समाधान।
2: इस कार्यक्रम की प्राइवेट है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
3: धीनेरी बातिया धीनेरी बातिया कार्यक्रम सुनन वाला सगला पशुपालक भाई ने हरखू भाई और
4: बंशी भाई रा भी
3: मोकला मोकला
4: राम राम
3: राम राम बंशी भाई राम राम
4: राम राम हरखू भाई राम राम।
3: देखो आज गुरुवार है और सिंजरी देखो कितनी बजगी
4: 5:30 बजगी।
3: जन देखो अब अडीक है सगला पूरे प्रदेश रे जगह भी पशुपालक भाई है।
4: हाँ।
3: बे आज सोचे गई आज चर्चा किन बात पर होसी चौपाल में।
4: भैया देखो सा जिज्ञासा नहीं सगला रे मन रे मायने रे वे।
3: हाँ।
4: और खाली राजस्थानी जी का अपना लोग है भाई है।
3: हाँ।
4: उनारी नहीं।
3: हाँ।
4: राजस्थान सुबारे भी तो लोग इना ने सुने है।
3: हाँ भाई हमें तो देखो मोबाइल रे माध्यम।
4: हाँ।
3: से आखो विश्व सुन सके
4: एकदम।
3: और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। पण एक बात बताओ काल दिन भर डागले पर लग्योड़ा झाड़ू लेवड़ो कहीं कर रिया था।
4: हरकू भाई थे तो पूरी कहने की जानकारी रखो हर आदमी री कौन कहीं करे। खैर हूँ आपने बता दू कि भाई देखो सा हूँ कर रहे हो साफ सफाई।
3: मानसून री तैयारी कर रिया था।
4: हाँ भाई देखो सा मानसून आने वालो है।
3: हाँ।
4: बरसात आने वाली है
3: तो
4: भाई उनसे पहली आप अपने घर री साफ सफाई कर लेवा आस पास से री सफाई कर लेवा।
3: हाँ।
4: तो बीमारियां आप ही तो बचसा।
3: बिल्कुल सा। और जो पानी है नी वो है अनमोल।
4: हाँ
3: वर्षा जल अगर आप डागला साफ उसी छत साफ उसी तो वो साफ सुथरो पानी आप कुंडी तक पूगी और वो आप पूरे बरस पी सका और पीवे लोग
4: पीवे भी है भाई।
3: और
4: आपने देखो गांव रे मायने तो वही तो साधन है पानी बचत रो।
3: हाँ और कई जना देखो पानी ने यही बेवाद है वो अच्छो को नहीं सा जितो आप इन्हें बचा सका। देखो पानी है सोनो अगर मानो तो
4: एकदम साची बात है सोने से भी महंगो है।
3: हाँ।
4: कि भाई बाकी की चीजें हैं जिकने तो आपा बना सका पर पानी ने बना सका की
3: नहीं नहीं सर। हाँ। हमें देखो सरकार जगह प्रयास है नहीं हर घर नल।
4: हाँ, हर घर
3: पानी पूजे पर फिर भी जगी चीज आपने आराम से मिल रही है नी। कोई भी चीज अगर आपने आराम से मिल रही है चाहे पानी हो चाहे बिजली हो बेरो आपने सदुपयोग करना है।
4: हाँ दुरुपयोग तो भाई करना ही नहीं चीज
3: है। कमरे से निकलिया लाइट जगरी तो जगरी है ना ना ना जी निकल रहे हो तो पहलो काम आपने कहीं करना है
4: खटको बंद कर दो।
3: हाँ ओ अगर छोटो सी काम है वो आप ध्यान रखता है तो आप बचत खाली आप ही को नहीं आ देश की बचत है। और जे अपन घर में पानी रे नल है नहीं आप वो भी आप देख लेंगे खुल्लो तो को नहीं है।
4: हाँ।
3: फालतू बह तो नहीं रही है,
4: सही है।
3: इन छोटी छोटी बातें ध्यान रखता नहीं तो आज की बचत है नी आ महा बचत है आने वाली पीढ़ी वास्ते बचत है।
4: आज की बचत है नी वो काल रो आप खुद रो जीवन उसी।
3: हाँ देखो सगड़ा न सिला रहा सामे जी का देखो कितना जना बैठे राम राम बैठो बैठो सा। तो अब आप बताओ आज चर्चा किन विषय पर कर सो।
4: भाई देखो सा यहाँ है कि अपना जगह पशुपालक भाई है बड़ा ही सजग है और अपने कागजिया लिखे है कि भाई इन इन विषय पर जानकारी चाहे तो मिथक हुआ करे अपने समाज रे मायने पशुआ से जुड़ोड़ी तो उन बाबत जानकारी दो। और कई लोग बाग बे के भाई टीकाकरण कई हुए इन बाबत जानकारी दे रहा हो सा। और कई जना लिखे कि भाई टीका लगाने से फायदो हुए नहीं हुए ए जानकारी पूछो।
3: टीकाकरण ने ले पर अभी कई मिथक है सा है नी।
4: बिल्कुल है
3: तो जन विषय कई बनियो के पशुआ माए टीकाकरण मिथक साच और लाभ।
4: विषय बन गयो आज रो।
3: हाँ तो आज मैं चौपाल में जानकारी देव सर आमंत्रित करिया है सहायक आचार्य राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारे डॉक्टर राम कुमार जांगीड। तो डॉक्टर राम कुमार जी आप चौपाल में घणो घणो स्वागत है आपने मैं करा
4: राम राम, राम सा
3: राम राम सा राम राम सा। और अब देखो आज आप बातचीत करिए पशुओं माए टीकाकरण मिथक साच और लाभ इन विषय पर आज डॉक्टर साहब आपसू मैं बातचीत कर सर आपसे उम्मीद करा कि आप मैंने अच्छी अच्छी जानकारी दे सो।
4: और इन सारू ये देखो सा खुबाई थे को तो पहले सवाल हूँ कर लूँ।

0: नहीं डॉक्टर साहब।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: हाँ तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आप आ बताओ कि पशुओं के खातिर टीकाकरण जरूरी क्यों है और किन भात रोगों से सुरक्षा दिया करे इन बाबत महाराज का पशुपालक भाई है उन्होंने सकला ने आप जानकारी दिलाओ सर।
2: जैसा कि सभी पशुपालक भाई अनुभव करते रहते हैं कि पशुओं को समय समय पर अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, इनमें से कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनका उपचार संभव होता है और उससे पशुपालक को अधिक नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ एक संक्रामक बीमारियां इतनी गंभीर होती है कि वह पशु की जान भी ले सकती है और पशुपालक को भारी आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। उदाहरण के लिए गलगोटू हुआ, फड़किया हुआ, ये ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत तेजी से बढ़ती है और पशुपालक के पास उपचार कराने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता और पशु की अचानक मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में वैक्सीनेशन करके इन बीमारियों को रोका जा सकता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। वैक्सीनेशन या टीकाकरण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पशु के शरीर को किसी विशेष रोग से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है और वैक्सीन रोग उत्पन्न नहीं करती बल्कि पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करती है। सामान्यतः टीका लगने के 15 से 30 दिन के बाद शरीर में उस रोग के विरुद्ध एंटीबॉडी या स्मृति कोशिकाएं विकसित होती है और ये एंटीबॉडी और स्मृति कोशिकाएं कुछ महीनों या वर्षों तक बनी रहती है। भविष्य में यदि वही रोगाणु जिसके लिए वैक्सीनेशन हो चुका है शरीर में प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र इन एंटीबॉडी या स्मृति कोशिकाओं की सहायता से उसे तुरंत पहचान कर प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर देता है। परिणाम स्वरूप अधिकांश मामलों में या तो संक्रमण नहीं होगा या होगा भी तो बीमारी बहुत हल्के रूप से रहेगी। तो इस प्रकार से टीकाकरण पशुओं को स्वस्थ रखने का सबसे प्रभावी, सुरक्षित और किफायती निवारक उपाय है। इसका उद्देश्य बीमारी का उपचार करना नहीं बल्कि बीमारी से होने से पहले उसका बचाव करना है।
1: जी जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी कि टीकाकरण क्यों जरूरी है। टीकाकरण एक वैज्ञानिक पद्धति है और एक स्वस्थ राखण सारू और टीकाकरण होया करे रोगासु लड़ने की क्षमता बढ़ाया करे। एक डॉक्टर साहब कहीं महाराज जी पशुपालक भाई कहया करे के जे पशु स्वस्थ है तो फिर टीकाकरण क्यों?
2: स्वस्थ पशु में ही टीकाकरण करवाया जाता है वैसे।
1: अच्छा।
2: क्योंकि जितना ज्यादा पशु स्वस्थ होगा उसकी इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम है उतना ही अच्छा काम करेगा और जब हम वैक्सीनेशन लगाते हैं तो इम्यून सिस्टम क्या करता है उसमें एंटीबॉडी और स्मृति कोशिकाएं विकसित करता है।
1: जी।
2: अगर पशु पहले से बीमार है या बहुत ज्यादा कमजोर है तो उसका प्रतिरक्षा प्रणाली वो अपेक्षित रूप से कार्य नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी और स्मृति कोशिकाएं बन नहीं पाएगी तो उससे ये होगा कि टीकाकरण का प्रभाव भी कम हो जाता है, वो प्रभावशाली नहीं रह पाता। तो इसलिए प्रत्येक पशुपालक को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि टीका हमेशा स्वस्थ पशु में लगाया जाता है ताकि भविष्य में गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रह सके।
1: जी जी, तो थारा कहने का मतलब वो है कि पहला सु चौकीदार मायने खड़ा कर दे, जे चोर है तो वो पहला सु सक्षम है यहां से लड़न वास्ते और जे अस्वस्थ पशु है पछे टीकाकरण करा तो भी तो फायदा तो जल्दी मिले को नहीं।
2: अस्वस्थ पशु में उसकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली होती है वो इतनी सक्रिय नहीं होती।
1: जी,
2: सुरक्षा उसमें मिलेगी, अस्वस्थ पशु उसमें भी सुरक्षा मिल सकती है पर इतनी अच्छी सुरक्षा नहीं मिलेगी जितनी स्वस्थ पशु में मिलेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: जी हाँ डॉक्टर साहब बताओ कि भाई रोगाणु से लड़ने की शक्ति है जिसको टीकाकरण दिया करे, अब फिर भी डॉक्टर साहब लोग बात क्या करे कि टीको लगाने के बाद पशु बीमार पड़ जाया करे, तो इन मिथक में कितनी सच्चाई है इन बाबत भी आप जानकारी दो सर।
1: हाँ,
2: यह एक भ्रांति है। अधिकांश टाइम में क्या होता है वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित रहती है। कुछ पशुओं में क्या होता है वैक्सीन लगने के 24 से 48 घंटे के भीतर हल्का बुखार, सुस्ती, भूख में हल्की कमी, इंजेक्शन वाली साइड पे थोड़ी सी सूजन आ सकती है। यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि यह इस बात का संकेत है कि पशु की प्रतिरक्षा प्रणाली है टीके के प्रति प्रतिक्रिया कर रही है और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। ऐसे लक्षण अधिकांश मामलों में बिना किसी विशेष उपचार के अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ कुछ मामलों में किसान को यह लगता है कि टीकाकरण के बाद पशु में तेज बुखार आ रही है, सांस लेने में कठिनाई आ रही है, अत्यधिक सूजन या कोई अन्य गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे से संपर्क कर सकते हैं, पर टीकाकरण एकदम सुरक्षित होता है। टीकाकरण से होने वाली सामान्य और अस्थायी प्रतिक्रियाओं से घबराने की जरूरत नहीं होती। वास्तव में टीकाकरण न कराने का जोखिम टीका लगाने के बाद होने वाली सामान्य प्रतिक्रियाओं की तुलना में कहीं अधिक गंभीर होता है।
1: जी,
2: इसलिए अपने सभी पात्र पशुओं को समय पर टीकाकरण कराना आवश्यक है।
1: बिल्कुल सर, देखो बात तो खरी है कि समय पर अगर टीकाकरण करा ले आपर पशु है वो स्वस्थ रहे। और अब डॉक्टर साहब बात आवे कि अपने क्षेत्र मायने किसा किसा महत्व रोग है जिनारे खातिर नियमित टीकाकरण की जरूरत होया करे या जरूरी मानी जाया करे।
2: हमारे क्षेत्र में गाय और भैंसों के लिए खुरपका और मुहपका, गलघोटू, ब्लैक क्वार्टर, लंपी स्किन डिजीज तथा निर्धारित आयु की मादा बच्चियों में ब्रुसेलोसिस के विरुद्ध टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार भेड़ और बकरियों में पीपीआर या फड़किया, एंट्रोटॉक्सेमिया तथा प्रभावित क्षेत्रों में सिकपॉक्स, गोटपॉक्स के विरुद्ध नियमित टीकाकरण की सलाह दी जाती है।
1: और देखो पेन कॉपी में लोग ले बैठा है वे भी लिखता जा रहे हैं पॉइंट के हाँ आ चीज नहीं है आ चीज आपने ध्यान रखनी है।
0: हाँ और देखो सा आ सजगता है नी आई आपने कई करे कि आपने बढ़ा वे आपने जो को पशुधन है उन्होंने बढ़ा वे और इनरो सूचक हो है इनरो देखो सबूत हो है कि देखो सा सरिता भाई है जो को कागज में लिखकर भेजी है। डॉक्टर साहब पूछे कि भी क्या गर्भवती मादा पशु छोटा बछड़ा या मेमना रे भी टीको लागिया करेगी जे लागी जाए अगर बीआर टीको तो किसी किसी बात रो ध्यान है जो माने राखनो चाहिए
1: भाई। प्रश्न तो सरिता भाई अच्छा पूछे आप बताओ डॉक्टर साहब जानकारी दो।
2: असल में गर्भवती पशुओं और छोटे मेमनों का भी टीकाकरण किया जा सकता है लेकिन यह निर्धारित टीकाकरण कार्यक्रम और पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही किया जाना चाहिए
0: जी।
2: गर्भवती पशुओं में केवल वही वैक्सीन लगाई जानी चाहिए जो गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित मानी जाती है। इसके अलावा गर्भावस्था के अंतिम चरण में पशुओं को अनावश्यक तनाव लंबी दूरी तक ले जाने और अत्यधिक शारीरिक श्रम से बचाना चाहिए इसलिए इस अवधि में टीकाकरण का निर्णय हमेशा पशु चिकित्सक की सलाह से ही लेना चाहिए। छोटे बछड़ों और मेमनों में जन्म के तुरंत बाद टीका नहीं लगाया जाता क्योंकि शुरुआती दिनों में माँ के पहले दूध से प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है। जैसे जैसे यह सुरक्षा कम होती है निर्धारित आयु और टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार वैक्सीन लगाई जाती है
0: जी।
2: अधिकांश रोगों में छोटे मेमनों में 3 से 6 महीने की आयु के बीच ये टीके लगाए जाते हैं पर कुछ एक टीके होते हैं जो अर्ली एज में भी लगाए जा सकते हैं जो टिक वगैरह जो उनसे बचाव वाले टीके जो है एक्टोपैरासाइट इंड्यूस्ड जो डिजीजेस होते हैं उनके लिए आप एक दो टिके ऐसे होते हैं जो लगाए जा सकते हैं अर्ली एज में भी वो क्रॉस ब्रीड के लिए होते हैं सिर्फ।
0: अच्छा
2: इंडिजिनस के लिए नहीं मतलब देसी ब्रीड के लिए उनका जरूरी नहीं है उनका महत्व नहीं इतना
1: जी जी।
0: तो सरिता भाई जो आप रो सवाल पूछियो भाई आप आशा करा कि भाई उन्होंने वो जवाब मिल गयो और उन्होंने साथे साथे आपना जो पशुपालक भाई दूजा भी है उन्होंने भी इनकी जानकारी मिल गई उसी
1: बिल्कुल मिल गई और सरिता भाई जी की मुस्कुराहट इन बात बता दी के बाद संतुष्ट है जवाब से। हाँ। तो अब एक डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहवा की अलग अलग पशु जिया गाय है भैंस है बकरी है भेड़ है इन सारू टीकाकरण जो एक वार्षिक कार्यक्रम है वो किन बात होना चाहिए।
2: असल में टीकाकरण का जो कार्यक्रम होता है वो पशु की प्रजाति आयु क्षेत्र में प्रचलित रोगों तथा सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। जैसे हमारे राजस्थान में सामान्यतः गाय और भैंस के लिए खुरपका और मुंहपका की वैक्सीन होती है वो प्रत्येक 6 माह के अंदर होती है वर्ष में 2 बार बरसात से पहले की जाती है। इसी प्रकार गलगोटू उसकी भी साल में 1 बार वैक्सीन होती है मानसून से पहले अप्रैल जून में। इसके अलावा ब्लैक क्वार्टर जिसे लंगड़ा बुखार भी कहा जाता है ये प्रभावित क्षेत्रों में 1 बार कर वैक्सीनेशन की जाती है। लंपी स्किन डिजीज हुआ इसकी वर्तमान में 2 साल में 1 बार वैक्सीन लगती है। इसके अलावा ब्रुसेलोसिस हुआ ब्रुसेलोसिस के लिए साल में जो छोटी बच्चियां होती है उनको 4 से 8 माह की अवधि में लगती है सिर्फ बच्चियों में ही लगती है ये वैक्सीन। इसके अलावा भेड़ और बकरियों में पीपीआर के लिए 3 वर्ष में 1 बार वैक्सीन लगती है सरकार के दिशा निर्देश अनुसार। इसके अलावा एंट्रोटॉक्सिमिया फड़किया के लिए वर्ष में 1 बार वैक्सीन लगती है वो भी बरसात से पहले और सिप और गोट पॉक्स के लिए वैक्सीन लगती है। तो ये इतनी वैक्सीन हमारे जो सिप और गोट या जो गाय और भैंस है इनके लिए अभी अपने राजस्थान क्षेत्र में लग रही है। तो इनका कार्यक्रम सरकार के दिशा निर्देश अनुसार चलता है सारा
1: जी। राजस्थान सरकार आज का दिशा निर्देश है वीर साहब से टीकाकरण कार्यक्रम चालू करें और आपने वीर माने भागीदारी निभावनी चाहिए आप जिका भी पशु है जिका समय पर जिको टीकाकरण लगावण है बहने आपने समय पर अस्पताल जाप रहा आपने टीको लगावण जरूरी है और लगाना भी चाहिए
0: और अब जरूरी कहीं है की बताओ थे
1: जरूरी तो डॉक्टर साहब का टीकाकरण जरूरी है।
0: हाँ तो वो तो भी समय आवे जब लागी लगाना भी चाहिए पर अब आरी बात करा आपा आज री बात करा
1: समझ गया मनोरंजन नो टीको चाहिए। तो भैया वंशी भाई कह के गीतड़ लो सुना दियो तो आप से सुनो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।

0: तो भाई आबार आप सुनियो एक मीठो मीठो सो गीत अड़लो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धूड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीणेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी, नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुने, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
0: इन बेड़ा आप से सुन दिया हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति धीणेरी बातें। और आज आपने जानकारी दी सर पधारे राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर राम कुमार जांगीड। और आज आप बातचीत कर सा पशुआ माए टीकाकरण मिथक सांच और लाभ विषय पर।
2: भाई देखो सा अपनो जो को काम है वो है मिथक जितना भी है उन्होंने दूर करने रहो।
0: हाँ।
2: और उन सारू आवे विशेषज्ञ डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब अबे मारो जो को आगलो सवाल है वो आपसू ओ है कि जे कोई पशु ने तय समय माथे टीको नहीं लगा पावा अगर जे तो उन बेड़ा पशु पालक ने कई करनो चाहिए, इन बाबत आप जानकारी दे सा।
3: यदि किसी कारणवश निर्धारित समय पर टीका नहीं लग पाया हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले बिना देर किए अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशु चिकित्सक पशु की आयु, टीकाकरण का पिछला रिकॉर्ड, टीका छूटने की अवधि को ध्यान में रखकर यह निर्णय लेता है कि केवल छूटी हुई खुराक लगानी जरूरी है या टीकाकरण का कार्यक्रम पुनः

0: कर्म करना है, इसलिए बिना विशेषज्ञ की सलाह के स्वयं कोई टीकाकरण संबंधी निर्णय नहीं लेना चाहिए। ध्यान रखें कि टीकाकरण में अनावश्यक देरी होने पर पशु खुरपका मुंहपका हुआ, गलघोंटू हुआ, ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ा बुखार हुआ तथा अन्य संक्रामक रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए यदि किसी कारण से टीका छूट जाए तो उसे यथाशीघ्र पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार पूरा करना ही सबसे सुरक्षित और प्रभावी उपाय है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर साहब। और अब एक मिथक कहना या भ्रांति है कि क्या करे है कि पशुपालक के देसी नस्ल जगह पशु है भी ने टीका लगाने जरूरत ही गो है नहीं। आप बात कितनी सही है, इस बार थोड़ी बहने जानकारी दो साहब।
0: यह धारणा सही नहीं है। असल में संक्रामक रोग नस्ल देखकर हमला नहीं करते। यह भी सही है कि कुछ परिस्थितियों में विदेशी या क्रॉस ब्रीड नस्लों के पशु स्थानीय जलवायु या उनके जेनेटिक मेकअप पशु प्रबंधन प्रणाली के साथ पूरी तरह अनुकूल न होने के कारण कुछ लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि देसी नस्ल के पशु सभी रोगों से पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। जैसे खुरपका मुंहपका हुआ, गलघोंटू हुआ, लंपी स्किन डिजीज हुआ, पीपीआर हुआ, ब्रुसेलोसिस हुआ और रेबीज हुआ, ये ऐसे संक्रामक रोग हैं जो किसी भी नस्ल के पशु को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी पशुपालक भाइयों और बहनों से यही कहना चाहूंगा कि देसी नस्ल का होना रोगों से सुरक्षा की गारंटी नहीं है। पशु की वास्तविक सुरक्षा समय पर टीकाकरण, संतुलित पोषण और अच्छे प्रबंधन से ही सुनिश्चित हो सकता है।
1: जी साहब, देखो चर्चा करा जाने मिथक टूटे
2: है ने हो आपनो तो काम ही होई है कि भाई ज्ञान है जको डॉक्टर साहब रे माध्यम सु उना तक पुगावनो। और डॉक्टर साहब जिया थे आप बताए कि भाई टीकाकरण है बहुत जरूरी हुई करे सगला पशु वाले खातर, तो टीकाकरण री बेला लगावती बेला और उनारे बाद रे मायने किनी किनी बातों रो ध्यान राखनो चाहिए, इन बाबत भी तो महाराज का पशुपालक है उन्होंने आप जानकारी दियो साहब।
1: बिल्कुल,
0: टीकाकरण हमेशा प्रशिक्षित पशु चिकित्सक और पशु विभाग के अधिकृत कर्मचारी से ही करवाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करें कि वैक्सीन सही तापमान अर्थात कोल्ड चैन में सुरक्षित रखी गई हो। टीका केवल स्वस्थ पशु को लगाना चाहिए। यदि पशु गंभीर रूप से बीमार है तो पहले उसका उपचार कराना उचित है। टीकाकरण के बाद पशु को पर्याप्त आराम, स्वच्छ पानी, संतुलित आहार उपलब्ध कराना चाहिए और अगले 24 से 48 घंटे तक उसकी निगरानी करें। इंजेक्शन वाली जगह पे हल्की सूजन, हल्का बुखार, कुछ समय के लिए सुस्ती, सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है और सामान्यतः स्वयं ठीक हो जाती है। लेकिन यदि पशु को तेज बुखार है, सांस लेने में कठिनाई है, अत्यधिक सूजन है, कोई अन्य असामान्य लक्षण दिखाई दे रहा है तो पशु चिकित्सक से संपर्क करें। बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि इस तरीके के दुष्प्रभाव वैक्सीन लगने के बाद होते हैं। इसके अतिरिक्त बेहतर प्रतिरक्षा के लिए पशुओं को नियमित कृमिनाशक और संतुलित पोषण और स्वच्छ आवास भी अत्यंत आवश्यक है।
1: जी साहब, देखो छोटी सी बात सुई जगह मिथक है, भ्रांतियां टूट जाए करें। और अब एक डॉक्टर साहब बताओ कि सरकार द्वारा भी कोई निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया करे कहीं, जे चलावे तो हमारा पशुपालक भाई भी लाभ क्या उठा सके।
0: भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत खुरपका मुंहपका हुआ, लंपी स्किन डिजीज हुआ, ब्रुसेलोसिस हुआ तथा कुछ अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम करना उनका उद्देश्य है। तो पशुपालक भाइयों को इन जो योजनाएं हैं इनका लाभ उठाने के लिए अपने निकटतम पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय या ग्राम पशु पंचायत, पशुधन सहायक अथवा पशुपालक विभाग से संपर्क करना चाहिए। कई स्थानों पर विभागीय टीमें गांव-गांव और घर-घर में जाकर टीकाकरण करती है, तो हमें उस टाइम उनका टीकाकरण जो टीम है उसका सहयोग करना चाहिए और टीकाकरण के बाद उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए ताकि भविष्य में अगली खुराक समय पर लगाई जा सके। पर किसान को जो टीकाकरण करने वाली जो टीम है ना, उसके साथ कांटेक्ट करना ही सबसे उपयोगी जो तरीका है कि उसको टीकाकरण जो परियोजना है उनका लाभ मिल सके। तो उनकी जानकारी होना सबसे इम्पोर्टेंट है
1: भाई। आपने भी देखो जागरूक होने जरूरत है कि आप गांव में जो टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है तो आपने भी बढ़ चढ़े हिस्सों लेने, आपने जानकारी लेने के भाई आप गली मायने कद आई और आपने किसो टीको लगवाने है। फिर डॉक्टर साहब एक महत्वपूर्ण बात बते कि आपने लिखना भी है कि वो टीको किसो लगे और कद लगे, ताकि अगले टीको जद भी लगा भी रो बखत आपने ध्यान में रहे कैसा हाँ आज वो टीको लगे, हम इतना दिन बाद में, इतना महीना बाद में वो टीको लागणो है, जे आप लिखियोड़ो रहसिन जन आपन ध्यान में रहसिन के टीको कद लगवायड़ो है।
2: और जो लिखा पट्टी है नी उन्होंने तो भाई खासो महत्व है, चाहे वो व्यापार री बात हो और चाहे वो पशुधन री, भाई पशुधन भी तो एक व्यापार है भाई, उन्होंने मायने भी तो आपने लेखो जोखो राखनो चाहिए कि भाई किसो पशु है जो स्वस्थ है, कद टीको लगायो, कद वो बीमार पड़ियो, कद नहीं पड़ियो, तो ये जानकारी उसी उसी भी तो आपने लाभ मिल सी।
1: बिल्कुल साहब, देखो खाली व्यापारी बात ना करो, स्वास्थ्य की भी बात करो, स्वास्थ्य वीरो भी लिखा पड़ी जरूरी
2: है।
1: टाप रहे टीका लगावन गया भाई, वो पहलो टीको ला गया, दूजो ला गया, चौथा ला गया, फिर एक कागज रे मायने लिखियो रहा है ई महीना वो टीको लागने, फिर इतना महीना बाद वो टीको लागना
2: है। भाई सीधी सी बात आई है कि भाई बोली री बात या सुनी हो री की बात है नी, बा हो सके आप भूल जावा, पर लिखित रे मायने होसी नहीं बे आपा जद भी कद

0: भी देख सका।
1: बिल्कुल सर,
0: भाई देखो सर, आपा तो प्रयास करियो कि भाई घनकरा जी का विषय है, बातें है, प्रश्न है, भाई डॉक्टर साहब से पूछा, फिर भी चालती चालती बेड़ा मारा पशुपालक ने आपरो कई संदेश है डॉक्टर साहब जी के सुबह आपरे पशुधन ने स्वस्थ और सुरक्षित रख सके।
2: अंत में मेरा सभी पशुपालक भाइयों और बहनों से यही अनुरोध है कि रोग होने का इंतजार न करें, बल्कि समय रहते उसका बचाव करें। याद रखिए, इलाज से बेहतर बचाव है और बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है समय पर टीकाकरण। सरकार और पशुपालक विभाग समय समय पर निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाते हैं। हमारे पशु चिकित्सक और पशुपालक विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी घर घर जाकर आपके पशुओं का टीकाकरण करते हैं। मेरा सभी पशुपालकों से अनुरोध है कि वे इन अभियानों में पूरा सहयोग करें, अपने पशुओं को समय पर टीकाकरण करवाने के लिए उपलब्ध कराएं। आपके सहयोग ही इन अभियानों की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि स्वस्थ पशु ही समर्थ पशुपालक, सुरक्षित परिवार और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पहचान है।
1: बिल्कुल सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है डॉक्टर साहब आपा ने कि स्वस्थ पशु ही समृद्ध पशुपालक है और सुरक्षित परिवार और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पहचान है सर।
0: बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब बात बताइए भाई।
1: एक और अब डॉक्टर साहब महत्वपूर्ण बात कही जी की मारे माथेर माने नोट होगी कि रोग उमड़ो इंतजार ना करो। के रोग उची पछे आप टीकाकरण करा सा नहीं सा, आ जागरूकता पर मन में होनी चाहिए और लिखा पढ़ी भी होनी चाहिए कि टीको कद लगे और अगलो टीको कद लाग सी। तो देखो टीकाकरण से जुड़ी आज अपने बहुत चीज की भ्रांतियां बे मिटी और महत्वपूर्ण अपने जानकारी मिली। तो हमें देखो बखत इशारों करने लग गया है।
0: हाँ। कदर तो भाई आपने करनी
1: बिल्कुल सर। तो पशुपालक भैया मैं आपने बता दूं, आज चौपाल में जानकर दीवन सर पधारिया है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से सहायक आचार्य डॉक्टर राम कुमार जांगीड़, और आज आप बातचीत करी पशु अमाय टीकाकरण मिथक साच और लाभ विषय पर। तो डॉक्टर रामकुमार जागीर साहब आप चौपाल में पधारे और हमारे पशुपालका ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दी। इन सारों में आपने देवा धन्यवाद और करा
0: राम राम सा।
2: राम राम सा।
3: तो आज ही आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ढीणेरी बातिया कार्यक्रम रहा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्रीमती पुनीत बिश्नोईरी, सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशीरी। तो सा हमें महने आज्ञा दिराओ सा घणान घणा राम राम सा।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
5: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुंडा उतार किया बैठा हो।
6: काई करूँ दाबू बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और विरोध जीसोरो भी कौन।
5: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी सु कार्यक्रम ढीले भी बातिया। काकी साहब ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन सु जुड़ी सबली समस्या रो समाधान।
7: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम ढीणेरी बातें।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम धीनेरी बातें। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM में 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: साथ में मुनीश शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के तहत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अल नीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़े। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद हरियाणा में, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर के देवबंद, दिल्ली और अन्य स्थानों पर यह अभियान चलाया गया। ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के कारण ये दुर्घटना हुई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक सातवें ओवर में बगैर कोई विकेट खोए 43 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड इवनिंग,
0: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 6:05 में हैं। अब हम आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की ओर, सुनवाते हैं फिल्म दी ट्रेन का ये प्यारा सा नगमा। आवाज़ मिथुन और शिल्पा राव की है, संगीत मिथुन का है और गीत लिखा है सैयद कादरी ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, किसानवाणी सजीव फोन इन कार्यक्रम में आज गुरुवार दिनांक 16/7/2026 को फोन इन का विषय है पशुओं में फड़किया, लंगड़ा बुखार और मुंहपका खुरपका रोग, बचाव व उपचार। इस विषय से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में इस बार विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर बुद्धाराम, कृषि विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र अटियासन। आप भी अपनी पशुपालन संबंधी समस्या या जिज्ञासा के निवारण हेतु हमारे टेलीफोन नंबर 240-168 पर इस गुरुवार को शाम 7:00 से 7:30 के बीच हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार फोन नोट कर ले, 240-168 और नागौर का एसटीडी कोड है 01582। सूचना समाप्त हुई। साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड से। साथियों, आवाज़ सुनिधि चौहान और शेखर रावजियन का है, संगीत विशाल शेखर का और गीत लिखा है जावेद अख्तर ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। आवाज़ जावेद अली की है, संगीत प्रीतम का और गीत लिखा है रजत अरोड़ा ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोता हूँ, अभी आपने सुना कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM में 103.7 MHz पर शाम के 6:20 में। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी के स्वर, जिसमें हमारे आज के कलाकार है हरि नारायण शास्त्री। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर में हरि नारायण शास्त्री के गाए लोक भजन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम माटी के स्वर, जिसमें आपने सुना हरि नारायण शास्त्री की गाए लोक भजन। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM में 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। उसके बाद 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को कल रवाना करेंगे। 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव पर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को 20 जुलाई तक चुनाव कार्यक्रम अदालत में पेश करने को कहा। प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े विषयों पर जयपुर में पहली बार विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस आयोजित। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की कमजोर परिस्थितियां अगले 3-4 दिनों तक बनी रहने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी की कल से शुरुआत होने जा रही है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से इसे रवाना करेंगे। ये ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल संचालित होगी। इस तकनीक में हाइड्रोजन को बिजली में बदला जाता है। इसके संचालन में कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई ये रेलगाड़ी भारत की उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग क्षमताओं को दर्शाती है। इस रेलगाड़ी के शुरू होने से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां हैं। इन देशों में जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका शामिल है। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल ही पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इनका आधुनिकीकरण किया गया है। इसमें प्रदेश के 8 स्टेशन जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसर शामिल है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। जोधपुर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इसे हेरिटेज लुक के साथ पुनर्विकसित किया गया है।
1: ये स्टेशन के अंदर मॉडर्न फैसिलिटी अच्छी खासी बहुत अवेलेबल है। इसके अंदर हमारा एयर कॉन्ट्रोल्स है, उसकी कुछ चौड़ाई लगभग 36 मीटर है। इसके अलावा रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री की भी सुविधा है। रिटायरिंग रूम में 7 रूम्स हमारे अवेलेबल हैं और डॉर्मेट्री में 16 बेड्स हैं। तो ये फैसिलिटी जो यात्री हैं, खास करके जो विंटर सीजन में जो टूरिस्ट आएंगे, तो वो ये जो फैसिलिटी है उसका फायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक एसी वेटिंग हॉल भी है, डिपार्चर हॉल से वो हेलिंग, और स्टेशन के ऊपर एंड टू एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म सेंटर की सुविधा है। 3 प्लेटफॉर्म है, तो जब भी ये बारिश के मौसम में लोगों को इस चीज की सुविधा मिलेगी।
0: राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार से शेड्यूल मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने आज हाईकोर्ट में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की तारीख बताने के निर्देश दिए। साथ ही आरक्षण लॉटरी का ब्यौरा और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सौंपने की तारीख बताने को कहा है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पहले 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, किंतु ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी का हवाला देते हुए सरकार की ओर से चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने मीडिया को बताया कि मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
2: डिपार्टमेंट्स के, लोकल बॉडीज के हैं, पंचायत के हैं, उन्हें निर्देश दिया है कि वो ये बताएं कि लॉटरी की डेट क्या रहेगी रिजर्वेशन के लिए, और थर्ड जो है इलेक्शन कमिश्नर को, इनको स्टेट अथॉरिटीज को ये डायरेक्शन दिया है कि आप इलेक्शन की डेट बताएंगे। इसलिए 20 तारीख को मैटर की दोबारा सुनवाई होगी। 20 तारीख को ये तीनों डेट्स बताने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिए।
0: पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार पंचायत चुनावों को समय पर कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास की जो काम है उसमें पंचायतों के चुनाव समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज हमारे जिस तरह से कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, उसके जो निर्देश है उसका पालन भी करेंगे और जल्दी उसका समाधान सरकार पूरी तरह से तैयार भी है।
0: राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने चुनाव की शुरुआती तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची निर्माण, मतदान केंद्रों का चयन, रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति और अन्य व्यवस्थाएं करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है। अदालत का कहना है कि इससे विद्यार्थियों पर तनाव बढ़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि छात्र इसे आसानी से अपना सके। जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने केंद्र सरकार से नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू नहीं करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध और असाध्य रोग से पीड़ित कैदियों की जल्द या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए समान तंत्र सुनिश्चित करने के लिए नीति को 3 महीने में अधिसूचित करने का आदेश दिया है। देश में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए चलाई जा रही उड़ान योजना की अवधि 10 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। सरकार ने अगले 10 वर्षों में 100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा है। ये जानकारी नागर विमानन मंत्री केंजरापू राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत संचालित होने वाली एयरलाइंस को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। जयपुर में पहली बार आज विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें सुरक्षित और वैध प्रवासन को बढ़ावा देने, विदेश भेजने वाले फर्जी एजेंटों से नागरिकों को बचाने, प्रवासियों के कल्याण, कौशल विकास, पर्यटन और निवेश पर चर्चा की गई। प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करने और वैश्विक स्तर पर राजस्थान की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में ये पहल की गई। विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती रंगनाथन ने बताया कि इस दौरान प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े विषयों पर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया।
4: इसके बेसिस पे बहुत फायदा होगा राजस्थान के वासियों को, विदेश में अपॉर्चुनिटीज के लिए भी और जो भी उनको प्रॉब्लम्स है उनके सुझाव के।
0: जयपुर के होम्योपैथी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने समारोह में 760 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। बिड़ला सभागार में हुए इस कार्यक्रम में चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्ट काम करने वाली प्रतिभाओं को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री बागड़े ने कहा कि भारत में प्राचीन काल से ही चिकित्सा से जुड़ी ज्ञान परंपरा रही है। उन्होंने होम्योपैथी को कारगर चिकित्सा पद्धति बताते हुए इसे अनुसंधान के आदर्श के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री जाधव ने इस मौके पर कहा कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को दुनिया भर में अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है।
5: देश में भी आयुष शिक्षा का विस्तार हुआ है, आयुष चिकित्सा का ढांचा मजबूत हुआ है, अनुसंधान को नई गति मिली है और औषधियों के गुणवत्ता मानक भी सुदृढ़ हुए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित हुए हैं तथा वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। वे आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों की मेहनत से कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने ICAR के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वैज्ञानिकों को किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल 386 नई फसल किस्मों और 117 बागवानी किस्मों को विकसित किया गया है।
6: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: राज्य में चल रहे मॉनसून की कमजोर परिस्थितियां अधिकतर हिस्सों में अगले 3-4 दिन बनी रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। मौसम विभाग ने कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं बरसात के आसार जताए हैं। आज ज्यादातर जगह गर्मी और उमस का असर रहा, कहीं कहीं बादलों की आवाजाही देखी गई। वहीं 12 में करीब पानी बरसा। इस बीच जल संसाधन विभाग के अनुसार जुलाई महीने में सुस्त मानसून के कारण बांधों के पानी की आवक में कमी आई है। प्रदेश के कुल 693 छोटे बड़े बांधों में से 282 खाली हैं, जबकि 404 बांध आंशिक रूप से भरे हैं। इनका जलस्तर भी बीते कुछ दिनों में घटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी

0: की मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगी। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-117-800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को कल रवाना करेंगे। 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव पर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को 20 जुलाई तक चुनाव कार्यक्रम अदालत में पेश करने को कहा। प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े विषयों पर जयपुर में पहली बार विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस आयोजित। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की कमजोर परिस्थितियां अगले 3-4 दिनों तक बनी रहने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। प्रतापगढ़ जिले में मातृ और शिशु स्वास्थ्य को मजबूत करने के उद्देश्य से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कल से 5 दिन के विशेष अभियान की शुरुआत की है। अभियान के दौरान जिले की सभी गर्भवती महिलाओं का 100% ANC पंजीकरण, 4 अनिवार्य प्रसव पूर्व जांचें, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान, एनीमिया की जांच तथा नियमित फॉलो अप किया जा रहा है। साथ ही जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, 104 स्वास्थ्य परामर्श सेवा और 108 एम्बुलेंस सेवा की जानकारी भी आम जन तक पहुंचाई जा रही है। राजस्थान समान नागरिक संहिता यानी UCC के प्रारूप को लेकर प्रतापगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन सुनवाई रखी गई। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी, पुलिस अधीक्षक बी आदित्य तथा जिला स्तरीय समिति के सदस्यों की मौजूदगी में जन प्रतिनिधियों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विधिवेत्ताओं, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और छात्र छात्राओं ने अपने सुझाव रखे। समिति के सदस्य बसंत सिंह छाबा ने कहा कि प्राप्त सुझावों का गहन विश्लेषण कर समावेशी और पारदर्शी प्रारूप तैयार किया जाएगा। जूनोसिस जागरूकता सप्ताह के तहत जिले के राजकीय GNM प्रशिक्षण महाविद्यालय में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा पशुपालन विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में रेबीज, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, लैप्टोस्पायरोसिस और स्क्रब टाइफस जैसे पशुजन्य रोगों से बचाव के उपाय बताए गए। विशेषज्ञों ने पशुओं के नियमित टीकाकरण, स्वच्छता और समय पर चिकित्सकीय परामर्श लेने पर जोर देते हुए आमजन से सतर्क रहने की अपील की। पिछले दिनों जिला प्रभारी सचिव और संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने नगर परिषद में आयोजित शहरी सेवा शिविर तथा सुहागपुर पंचायत समिति के केसरपुरा गांव में लगाए गए ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, PM स्वनिधि और PM सूर्य घर योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र लोगों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। भारत सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय के गठन के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में सहकार सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत आयोजित कृषक सम्मान दिवस में जिले के प्रगतिशील किसानों, पैक्स अध्यक्षों और समिति व्यवस्थापकों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर ने किसानों से ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस, जैविक खेती, पुष्प उत्पादन और सौर ऊर्जा जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार जिले में लक्ष्मण रेखा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ANTF चौकी प्रतापगढ़ द्वारा नशा मुक्ति और साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। करीब 475 विद्यार्थियों और नागरिकों ने नशा मुक्त जीवन का संकल्प लिया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2026 के तहत जिला कलेक्टर ने जिले में लॉटरी प्रक्रिया संपन्न करवाई। योजना के माध्यम से 75 वरिष्ठ नागरिकों का हवाई यात्रा और 616 वरिष्ठ नागरिकों का रेल यात्रा के लिए चयन किया गया। जिले की सुहागपुरा तहसील के पंडावा गांव में नए 33/11 KV विद्युत ग्रिड सब स्टेशन का शुभारंभ किया गया। इसके शुरू होने से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग की समस्या से राहत मिलेगी। तथा प्रतापगढ़ विद्युत वृत्त में ऐसे सब स्टेशनों की संख्या बढ़कर

0: उसकी जान भी हो गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 16 जून से स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। 31 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से 5 साल से कम आयु के बच्चों में डायरिया, दस्त की रोकथाम, समय पर उपचार और जनजागरूकता को बढ़ावा देना है। स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार थीम के साथ आमजन को ORS, जिंक, स्वच्छ पेयजल और हाथों की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूं, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन चालन वाली देश की पहली रेलगाड़ी ने काल रवाना करेला और बेहतर बनाई जा 75 रेलवे स्टेशन ने वर्चुअल तरीका जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम। राजस्थान हाई कोर्ट, राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव रो कार्यक्रम 20 जुलाई ताई अदालत में पेश करण शुरू कहो। प्रवासियों की हिफाजत और भलाऊं जुड़िया मुद्दा माथे जयपुर में पहली दफा विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस रखी जी। और राज्य में घनखर ठोड़ा चौमासारी बिरखा आवता 3-4 दिन ताई मंदी रहवण रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में हाइड्रोजन चालन वाली पहली रेलगाड़ी ने काल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन रवाना करेला। आ गाड़ी जींद और सोनीपत पीछे चलेला। ई गाड़ी ने हाइड्रोजन गैस ने बिजली में बदलन वाली देशी तकनीक हाइड्रोजन फ्यूल सेल चलाई चावेला। ई तकनीक बिजली बनावन रे दौरान कार्बन बिल्कुल पैदा नहीं हुए है। आ रेलगाड़ी चलिया पाछे भारत, जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका सागे हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलावन वाला देशों री जमात में शामिल हो जावेला। प्रधानमंत्री रो काल ही पंजाब राज जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन देश भर रा और बेहतर बनाई जा 75 रेलवे स्टेशन रो वर्चुअल तरीका उद्घाटन करण रो कार्यक्रम है। आम आए राज्य रा जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसर ही शामिल है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन माथे रखा जावन वाला जलसा में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावती मौजूद रहवेला। जोधपुर रा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव बतायो का करीब 140 करोड़ रुपया रा खर्च जैसलमेर स्टेशन माथे मुसाफिरा सारू नुआ सुविधा मुहैया कराई चिया है।
2: ये स्टेशन के अंदर मॉडर्न फैसिलिटी अच्छी खासी बहुत अवेलेबल है। इसके अंदर हमारा एयर कॉन्टोर्स है, उसकी कुछ चौड़ाई लगभग 36 मीटर है। इसके अलावा रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री की भी सुविधा है। रिटायरिंग रूम में 7 रूम हमारे अवेलेबल हैं और डॉर्मेट्री में 16 बेड्स हैं। तो ये फैसिलिटी जो यात्री हैं, खास करके जो विंटर सीजन में जो टूरिस्ट आएंगे तो वो ये जो फैसिलिटी है उसका फायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक एसी वेटिंग हॉल भी है, डिपार्चर हॉल से वो हेलिंग और स्टेशन के ऊपर एंड टू एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म शेल्टर की सुविधा है। 3 प्लेटफॉर्म है तो जब भी ये बारिश के मौसम में लोगों को इस चीज की सुविधा मिलेगी।
1: राजस्थान हाई कोर्ट, राज्य सरकार, पंचायत और निकाय चुनाव रो कार्यक्रम पेश करण रा हुकम तीना है। मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा री खंडपीठ आज सुनवाई रे दौरान राज्य सरकार और प्रदेश रा निर्वाचन आयोग ने चुनाव करावन री तारीख बतावन रा हुकम दीना। अदालत आरक्षण, लॉटरी रो ब्यूरो और ओबीसी आयोग री रपट सौंपण री तारीख बतावन बाबती कहो। ध्यानजोग है कि हाई कोर्ट पहली 31 जुलाई ताई चुनाव करावन रा हुकम दीना हा, पर ओबीसी आयोग री रपट माए मोड़ा रो हवालो देता थका सरकार री ओरू चुनाव करावन रो काम शुरू नी करी जियो। वकील प्रेमचंद देवंदा खबरनवीसा ने बतायो कि मामला री अगली सुनवाई 20 जुलाई ने फैला।
3: डिपार्टमेंट्स के, लोकल बॉडीज के हैं, पंचायत के हैं, उन्हें निर्देश दिया है कि वो ये बताएं कि लॉटरी की डेट क्या रहेगी रिजर्वेशन के लिए, और थर्ड जो है इलेक्शन कमिश्नर को, इनको स्टेट अथॉरिटीज को ये डायरेक्शन दिया है कि आप इलेक्शन की डेट बताएंगे। इसलिए 20 तारीख को मैटर की दोबारा सुनवाई होगी। 20 तारीख को ये तीनों डेट्स बताने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिए।
1: दुजिकानी पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी जोधपुर में खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का कहो कि सरकार पंचायत चुनाव टेम सरकराव नो तय किनो है।
2: ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास उसमें पंचायतों के चुनाव समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज हमारे जिस तरह से कोर्ट का हम सम्मान करते हैं उसके जो निर्देश है उसका पालन भी करेंगे और जल्दी उसका समाधान सरकार पूरी तरह से तैयार भी है।
1: इबीच राज्य निर्वाचन आयोग रा मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा चुनाव री शुरुआती तैयारियां सारू जरूरी दिशा निर्देश जारी कीना है। वे जिला निर्वाचन अधिकारियां वोटर लिस्टा बनावण मतदान केंद्रां रो चयन रिटर्निंग अहलकारां री नियुक्ति और दूजी व्यवस्थावां करण सारू कहो। सुप्रीम कोर्ट सगला राज्यां और केंद्र रा राज वाला प्रदेशां ने बुजुर्ग और घना मानदा कैदियां री बगत तो पहली बेगी रिहाई रा बारा माय जरूरी नीति बनावण और लागू करण रा हुक्म दीना है। अदालत देश माय एड़ा मामला माय विचार करण सारू एक सरीखो सिस्टम बनावण सारू नीति ने 3 महीना माय अधिसूचित करण रो हुक्म ही दीनो। देश रा न्यारा न्यारा शहरां बीचे हवाई जहाज उन सफर रो सुबितो मुहैया करावण सारू चलाई जा रही उड़ान योजना री मियाद 10 साल ताई बधा दीरी ची है। सरकार आवता 10 साल माय 100 नुआ हवाई अड्डा और हेलीकॉप्टर उतरण री 200 ठोणा विकसित करनो तय किनो है। नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राम मोहन नायडू आज नई दिल्ली माय उड़ान योजना रा बारा माय राखी जी कार्यशाला पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि सरकार उड़ान योजना रा तेत हवाई जहाज चलावण वाली कंपनियां ने माली मदद देवण री मियादी 3 उधार 5 साल करण रो फैसलो किनो है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। जयपुर में आज पहली दफा विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस राखी जी। इनमें सुरक्षित और वैध प्रवासन न बढ़ावो देवण परदेश भेजन वाला फर्जी एजेंटाओं जनता न बचावण प्रवासियां रा भला कौशल विकास सैर सपाटा और निवेश रवारा माय चर्चा करी जी। विदेश मंत्रालय माय सचिव श्री प्रिया रंगनाथन और राज्य रा मुख्य सचिव वी श्रीनिवासी ई सम्मेलन माय शामिल थिया। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका रंगनाथन कहो कि कॉन्फ्रेंस माय प्रवासियां री हिफाजत और कल्याण जुड़िया मुद्दा माथे जाग जगावण री कोशिश करी जी।
4: इसके बेसिस पे बहुत फायदा होगा राजस्थान के वासियों को विदेश में अपॉर्चुनिटीज के लिए भी और जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं उनके सुझाव के।
1: जयपुर रा होम्योपैथी विश्वविद्यालय रो दीक्षांत समारोह आज राखी चियो। इनमाय राज्यपाल हरिभाव बागड़े और केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव 760 विद्यार्थियां ने उपाधियां देर नवाजा। कार्यक्रम में चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा रा हलका माय बेहतरीन काम करण वाला रो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देर मान करी जियो। जलसा माय विश्वविद्यालय रा कुलाधिपति कहो कि भारत माय गुजरा जमाना हुई इलाज जुड़ी ज्ञान परंपरा रही है। वह होम्योपैथी ने इलाज रो कारगर तरीको बताता थका अनुसंधान रा आदर्श सागे आगे बधावण री अरज कीनी। कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव कहो कि होम्योपैथी ने इलाज रा तरीका रा तौर आखी दुनिया में अपनाई ची है। वह नौजवानों बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया करावण में योगदान देवण री अरज कीनी। जाधव कहो कि लाडला कुछ वर्षा में देश में जनता री स्वास्थ्य सेवाओं तई पहुंच तेजी बढ़ी है।
5: देश में भी आयुष शिक्षा का विस्तार हुआ है, आयुष चिकित्सा का ढांचा मजबूत हुआ है, अनुसंधान को नई गति मिली है और औषधियों के गुणवत्ता मानक भी सुदृढ़ हुए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित हुए हैं तथा वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एकीकृत कृषि पद्धतियां ने बढ़ावो देवण माथे जोर दीनो है। वे आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR रा स्थापना दिवस समारोह में बोल रहा है। चौहान कहो कि किसान और वैज्ञानिकारी मेहनतों खेतीबाड़ी रा हलका माय चोखा नतीजा मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री

0: ICAR री कोशिशां री सराहना करता था का कहो के वैज्ञानिका ने किसाना री जरूरत रे मुताबिक अनुसंधान करनो चाहिए। वे कहो के देश 376 करोड़ टन खाद्यान्न री उपज रो रिकॉर्ड बनायो है। श्री चौहान बतायो के लारला साल न्यारी न्यारी साखा री 386 नवी किस्मा विकसित करी जी।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनों के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: अरब मौसम राज्य में आवता 3-4 दिन ताई बिरखा रो दौर मंदो रहवन रा आसार है। हालांकि प्रदेश रा उगनी हल्का माए कटे कटे बरसात फेवन री संभावना है। मौसम विभाग कोटा भरतपुर और जयपुर संभाग माए कटे कटे में बरसबारा आसार जताया है। इन बीचे आज घनखर थोड़ा गर्मी और उमस रही। दूजी कानी 12 माए करीब पौन घंटा ताई पानी बरसियो। कम बिरखा रे कारण बंधा माए पानी रे आवा की थोड़ी कम भी है। राज्य रा 693 छोटा मोटा बंधा मायू 282 रीता है, जबकि 404 बंधा थोड़ा घना भरिया है, जमाई लारला दिना पानी रो लेवल उतरियो है। करौली जिला माए 5 बंधाओं पानी रे निकासी रा सिस्टम रे आज तकनीकी जांच करी ची। इन दौरान कमांड हलकारी नहरा माए पानी छोड़न वाला दरूजा री जांच करी जी और गैर कमांड हलका सारू बनाई जी लिफ्ट प्रणाली रोई कामयाबी सागे ट्रायल करी जियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई दीतवार ने आकाशवाणियों प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला ई कार्यक्रम री 136वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ई सुझाव मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 24 जुलाई ताई भेज सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक और फेरू सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन उचालन वाली देश की पहली रेलगाड़ी ने काल रवाना करेला और बेहतर बनाई जा 75 रेलवे स्टेशन ने वर्चुअल तरीका जनता ने सौंपन रो कार्यक्रम। राजस्थान हाईकोर्ट पंचायत और निकाय चुनाव रे बारा माए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 जुलाई ताई पंचायत चुनाव रो कार्यक्रम अदालत माए पेश करण सारू कहो। प्रवासियों की हिफाजत और भलाऊं जुड़िया मुद्दा माथे जयपुर में पहली दफा विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस रखी जी और राज्य में घनखर थोड़ा चौमासारी बिरखा आवता 3-4 दिन ताई मंदी रहवन रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
2: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसानवाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
2: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर

0: किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: राम राम सा, किसान वाणी कार्यक्रम ले हाजिर हूँ मैं आप प्रहलाद भाई। किसान भैया, आज रे फोन इन कार्यक्रम मायने आप आकाशवाणी चौपाल माते नूतर बुलाया डॉक्टर बुधाराम जी ने। आप विषय वस्तु विशेषज्ञ है पशुपालन रा, कृषि विज्ञान केंद्र अठियासन नागौर में। तो पहल पोत करा डॉक्टर साहब रो स्वागत स्वागत है साहब। राम राम सा,
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम राम सा।
2: किसान भैया, आप री जे पशुपालन संबंधित पशुआ में जगह रोग हुए बा रोगा संबंधित कोई भी या दूजी कोई भी पशु पालो जकी पशुआ वास्ते जानकारी लेनी चाहो, आपरी समस्या हुए तो इन समस्या रो समाधान अगर चाहो तो आबार इन कार्यक्रम मायने फोन करो 015-82-240-168 नंबर माथे और आपरी समस्या रो समाधान कराओ। आप रो समाधान डॉक्टर साहब जरूर करेला। किसान भैया, कपास री फसल आप लोगों रे अबार लियोड़ी है। कपास री फसल रे मायने जका कीट रोग प्रकोप हुए या गुलाबी सुंडी है, रस चूसक कीट है, सफेद मक्खी या रातेला ए जका है, आ रो प्रकोप है तो बचाव वास्ते खेत में फेरोमोन ट्रोप जकी ट्रेप है बा लगावा या नीम रो तेल 5% रो छिड़काव जको करा। ज्यादा संक्रमण दूजी हुए तो इमिडाक्लोप्रिड जकी है या डाईमेथेट रो प्रयोग आप किसान भैया कर सका। हाँ, तो आ तो आपने ध्यान रखनी है। अबे बातचीत डॉक्टर साहब शुरू करा जब तक आपका फोन आवे। डॉक्टर साहब, जका पशु राखे किसान भाई, तो किसान भैयारो एक तरह आप कह सका हाँ कि एक हाथ खेती रो है तो दूजो हाथ जो को सहयोग रो है वो पशुपालन है जी। तो खेती में किसान भाई आपरी आमदनी रो जरियो बना रखी हो भी यहीं साथ है, पशु जका है धाव डांडा जका है बेबी कीन की सारो जो है वो किसान भैया देवे। पर जिया मिनखार मायने बीमारियां हुए बिया पशुआर मायने भी भगत भगत माथे बीमारियां जकी है बे आवती रहे। तो आप बात करा हगलाई पशुआरी भेड़ बकरी गाय भैंस आर मायने कौन कौन सी बीमारियां जकी है बे हुया करे।
3: बिल्कुल सा, आप सही बात बताई क्योंकि किसान रो मुख्य आधार ही कृषि एवं पशुपालन है। अगर कृषि के साथ साथ पशुपालन किसान करेगा तो आत्मनिर्भर होने की संभावना बढ़ती है।
2: बिल्कुल सा।
3: आप बता रहे थे मुख्य रोग कौन कौन से होते हैं, तो पशुओं में मुख्य रोग 4-5 प्रकार के होते हैं। एक तो सबसे ज्यादा होता है खुरपका मुंहपका रोग, इसमें FMD का टीका लगाया जाता है। इसमें जो लक्षण है वे लक्षण मुख्य ये है कि मुंह वे खुरों में छाले पड़ जाते हैं, लारें गिरने लग जाती हैं, उसके अलावा बुखार भी आ जाता है और कभी कभी पशु लंगड़ापन भी आ जाता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: वो मुख्य रोग ऐसा।
2: एक एक भाई जुड़ रही है फोन पर। हेलो।
4: हाँ नमस्कार जी।
2: नमस्कार सा, शुभ नाम बताओ आप रो।
4: कैलाश राम, मारवाड़ मुंडवा बोलो।
2: मारवाड़ मुंडवा फरमा रही है, कहीं सवाल है आप रो।
4: सवाल हो ये 4-4.5 साल की एक बेट की होगी जी। तो बा कहीं है पोटो करे जने लकान जाए पोटो कौन करे या कान ती रहे मना जने हो जाओ बा।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: पोटो दोर उतरे।
4: हाँ
3: देखो बीरे कोटार
4: में और है ने नीरो चारो खावे सब।
3: हाँ बिल्कुल, आप बता रहे हो सही है, उसके कोटे में कहीं ना कहीं समस्या है। तो हाँ। अभी आप डीवर्मिंग कराओ बीरे। डीवर्मिंग एक क्रिया है जका में पेट में कीड़ा मारून री दवाया आया करे।
4: अच्छा अच्छा।
3: तो आप आपने आस पास रे महीने पशु हॉस्पिटल है बटे जार के जो सा माने डीवर्मिंग कराने ये पशु रे, क्योंकि डीवर्मिंग से जो कीड़े होते हैं पशु डीवर्मिंग। हाँ तो बा कराओ और पशुरा जका पेट में जो को कीड़ा है बे बीरू पूर्ण ते मर जाए। और आ एक्टिविटी डीवर्मिंग है आपने हर 3-4 महीना बाद में करानी है।
4: अच्छा अच्छा
3: जी सर।
4: ठीक, और कोई टेबलेट वगैरह?
3: टेबलेट नहीं, डीवर्मिंग की एक दवाई आती है वो आपको दे देंगे।
4: एक वो 52 तो मैंने दिया वो लाख।
3: नहीं नहीं, आप डीवर्मिंग के लिए डीवर्मिंग ही कराओ साहिरे, क्योंकि इनमें कीड़ा अच्छा, पड़ गया है कोटा में बेसा पर करूं रे वास्ते डीवर्मिंग जरूरी है।
4: ठीक ओके।
2: तो किसान भाई ने समस्या और समाधान हो। एक किसान भाई निवेदन है कि आप डॉक्टर साहब आप रे सवाल रो जवाब देवे तो आपने जकी चीज बतावे बा पेन कॉपी लेर पानो लेर तैयार रिया करो, लिख लिया करो। और एक आप री तरफ जको है कोई भी दवाई रो नाम जको है आप इन कार्यक्रम रे मायने मत लिया करो, नहीं लेना है आपने कोई भी नाम जको। अगर डॉक्टर साहब ने जरूरी लागी तो बे बता दे। आपा डॉक्टर साहब बात करे हा जको मुआड़ो खुराड़ो से केन के आपा
3: बिल्कुल
2: पका मुंह पका बी रोग रा लक्षण जका है वे बतावे हा। हाँ,
3: दूजो रोग है जको बहुत ही ज्यादा खराब रेवे सा एक गलगुंटू रोग या करे जिसको HSV बोला आपा।
2: ठीक है।
3: बीर महीने कहीं एक तो बहुत ज्यादा तेज बुखार आवे सा, बीरे अलावा गले में सूजन आ जावे और बीर महीने पशु ने श्वास लेने में बहुत ज्यादा समस्या आवे
2: तकलीफ।
3: सबसे इर महीने मुख्य समस्या भाई है श्वास लेने रही, सड़ाटा करूं डूब जावे पशु और श्वास लेने तकलीफ आवे। तीजो मुख्य रोग है साहब लंगड़ा बुखार बोले बीने, बीने BQ भी बोले ब्लैक क्वार्टर। बीर महीने तेज बुखार आवे, पैरों की मांसपेशिया में सूजन आ जावे, पैरों री मांसपेशिया में सूजन रे कारण वो लंगड़ो चालू डूब जावे, इसलिए पशु रो नाम पड़ियो है लंगड़ा बुखार। ये मुख्यतः बुखार के कारण ही होवे सर,
2: लंगड़ापन हो जावे।
3: बिल्कुल सर। एक ब्रुसेलोसिस रोग है सर, बीर महीने कहीं अवे पशु गर्भपात जावे, बांझपन है जावे, दुग्ध उत्पादन में कमी आ जावे, अगर ये लक्षण आपने दिखाई देवे तो आप समझ लेनो सा ब्रुसेलोसिस रोग है वो अपन। अगलो रोग है सा एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स रोग भी अभी इस मौसम में सबसे ज्यादा फैल रही है।
2: अच्छा।
3: इसमें अचानक मृत्यु की अपने मृत्यु हो जाती है जानवर की, बीर अलावा शरीर में रक्त स्त्राव शुरू हो जाता है और पशुओं में तेज बुखार भी आने लग जाता है। ये मुख्य रोग है गया। अबे आप बात करा सा इन महीने कहीं सावधानी रखनी जोजे, कहीं टीका लगाना जोजे।
2: हेलो, शुभ नाम बताओ सा, कौन फरमा रिया हो? हेलो हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर साहब,
3: देखो सा अब हम अगलों पहली रोग री बात करी हाँ खुरपका और मुंह पका, ओ आप इन्हें FMD रो इन महीने टीको लगाई जे।
2: अच्छा।
3: FMD रो टीको वो गाय भैंस भेड़ बकरी में लगानो पड़े, वो रोग मुख्यतः HRM ही है वे। पहली बार तो जब
2: रोग लग गया हूं अपन भाई आगू से लगा सका कहें कि रोग नहीं हुए, इस वास्ते भी लगा सका पहले
3: कुछ टीका रहे, लेकिन वो टीको बाद में लग गया,
2: बाद में लग गया।
3: हाँ साहब, तो इरो पहले जो को वो 4-5 माह की आयु पर लागे वो पहली लाग जावे कोई दिक्कत कोने।
2: अच्छा।
3: क्योंकि वो सबसे ज्यादा पशुओं में रोग या करे, उसके बाद में हर 6 माह में लगाना है। पहले जो पहली बार है वो तो 4-5 माह में लगाना है कोई भी पशु है,
2: छोटे पशु रहे।
3: हाँ, बीरे बाद में हर 6 माह में ये अपन को टीका लगाना है।
2: अच्छा।
3: तो मुख्य रोग मुरपका और खूपका का FMD का हो गया। दूसरा अपन बात कर रिया सा गलगुंटू जिसको HSV बोला, वो मुख्यतः वर्षा ऋतु में वैसा, और इसमें HS रो टीको लगे मई जून में,
2: और तो कहीं कीचड़ आऊं फैले के।
3: हाँ बिल्कुल, गलगुंटू क्या होते हैं कि ये वर्षा ऋतु से पहले जो जैसे कोई संक्रमित पशु है वो कहीं बाड़े में चरके चला जाता है, दूसरा पशु आता है तो उससे भी ये फैलता है, इसलिए ये पशु फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इसमें HS का टीका लगाया जाता है, फिर हर वर्ष एक बार अपन को इसको टीका लगाना चाहिए, और बहुत ही कम रेट, ये सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जाता है, उस अभियान के तहत भी गांव-गांव में जाके इसके टीके लगाए जा रहे हैं पशुपालन विभाग द्वारा। जो रोग री अपन बात करता था वो है लंगड़ा बुखार, जिन्हें आपने मैं बताया ब्लैक क्वार्टर भी कहा जाता है। ये बरसात रे महीने ही लागे, गाय और भैंस रे महीने लग गया करे सा मुख्यतः, और मई जून में लागे जाते, और वर्ष में एक बार आपने वो टीको लगाना जरूरी है, क्योंकि वर्षा से पूर्व पशुओं की देखभाल करना बहुत जरूरी है 3-4 महीना पहली। तो आपने वो मई जून में लगाना है, वर्ष में एक बार लगाना है। तो BQ री बात आ गई। अगलो है ब्रुसेलोसिस, ये गाय और भैंस की मादा बछड़ियों में लगाया जाता है, क्योंकि उनमें ही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि पशु टाइम पर ज्ञापन को नहीं वे, दूध में गिरावट आ जावे, तो इसलिए ये मादा बछड़ियों में लगाए जाते हैं गाय और भैंस की, 4-8 माह की आयु में इसको लगा सकते हैं। ये मुख्यतः हो गया सा, और उसके अलावा एक PPR भी होता सा।
2: अच्छा।
3: PPR क्या होता है सा, ये अपने भेड़ और बकरी में इसका टीका लगाया जाता है, भेड़ बकरी में 4 माह की आयु पर लगाया जाता है, और वर्ष में एक बार लगाते हैं 4-5 साल रहा, और बाद में इसके इसका भी एक राज्य सरकार का कार्यक्रम है, उसके द्वारा अनेक बार लगाया जाता है। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, आप राज्य सरकार के इस टीकाकरण अभियान में भाग ले और आप निश्चित रूप से इसका फायदा उठाए। PPR का टीका भी छोटे पशुओं के लिए, भेड़ और बकरियों के लिए
2: देसी भाषा में भी क्यों आगे PPR ने कोई नाम है कहीं और भी की?
3: बिल्कुल सर, PPR फिड़कियों भी बोल सका आप अपन।
2: अच्छा, फिड़कियों है
3: जी सर,
2: भेड़ बकरियां बोल सका।
3: एक एंटोटॉक्सिमिया है सर, एंटोटॉक्सिमिया इरो एक टीको लागिया करे ईटी रो, जबकि आप बात करता ये भेड़ बकरी में होता है, ये भी इस ये जो रोग होता है ये भेड़ बकरी में होता है, इसका टीका भी अपन लगा सकते हैं निश्चित रूप से 3 से 4 माह की आयु में।
2: ठीक है
3: अगर आपने लागे वो पशु में बहुत ज्यादा फैल रही है हर साल।

0: अर्पण पशु में ये रोग हो रहा है, तो आप निश्चित रूप से नजदीकी चिकित्सालय में जाके संपर्क करें और इस रोग से आने से पहले भी इसका निदान पाए। बिल्कुल, ये मुख्यतः टीके हो गए सर। उसके अलावा पशुओं के मुख्य जो समस्याएं आ रही है, जैसे आप बात करते हैं अपन दूध में गिरावट आ रही है,
1: ठीक है।
0: टाइम पर पशु ज्ञापन को नहीं वे, ये मुख्यतः अभी पशुपालक भाइयों के समस्या आ रही है। इसके लिए आप लोगों को, क्योंकि पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप पशुओं को, बड़े पशुओं को, बड़े गाय और भैंस को आप मिनरल मिक्सर का भी प्रयोग करें। मिनरल मिक्सर का आप 10 ग्राम डेली अगर बांटे के रूप में देंगे तो आपके शरीर में जो भी पशु पोषक तत्वों की कमी है वो निश्चित रूप से आपको मिनरल मिक्सर के रूप में मिलेंगे और आपको डेली इसका उपयोग करना है।
1: ठीक है।
0: जी सर।
1: तो और जो मिनरल मिक्सर बात करें, यहाँ पर संतुलित पशु आहार की
0: जी
1: जब बात आवे
0: जी
1: तो ओ कहीं आपने जो पशु एक तो दूध दे रही है गाय भैंस या बैड़ी है, एक ब्यावतार हुए या टल्योड़ी हुए तो आर वास्ते अलग अलग मात्रा हुए कहीं, क्यों
0: नहीं,
1: कई किसान भाई तो कहीं करे
0: बिल्कुल
1: के
0: बिल्कुल
1: जबकि टाइम दूध देवे ना पशु बी टाइम तो बंटो आपा देवा
0: जी,
1: और पछे बंटो पाछो बंद कर दा।
0: बिल्कुल। आ आ अधिकतर पशुपालक भाई यही करते हैं सर। तो अपन ने कहीं जेन पशु भाई ज्ञापन होनाड़ो है या टाइम पर ज्ञापन नहीं हुए तो बीरे पहले भी अपन इन्हें 10 ग्राम दे सका सर, और पहले भी दे सकते हैं, और अपन को लगे भाई अब दूध में कमी आ रही है, गिरावट आ रही है, निरंतर गिरावट आ रही है, तो भी आप मिनरल मिक्सर का प्रयोग कर सकते हो। जी
1: नहीं बांटो जो को आपने 12 मास ही देना चाहिए कहीं बांटो या अलग अलग मात्रा
0: देखो,
1: देना
0: 12 मास
1: चाहिए।
0: अगर आप भांटो दे वहां तो अपने उत्पादन तो बढ़ी लेकिन उसमें खर्चो ज्यादा आई जाए,
1: खर्चो ज्यादा हुई।
0: खर्चो ज्यादा हुई। तो आपने कहीं करना है कि 12 मास भांटो नहीं देना है, क्योंकि अपा गरे, जवार, बाजरी, ये चारा होता है, इसका भी निरंतर रूप से प्रयोग करना चाहिए। कुछ जहां पर सिंचित क्षेत्र है वहां हरे चारे का भी उपयोग किया जाता है।
1: हेलो
0: हेलो,
1: हेलो हेलो। तो ओ जो को बांटे की बात करिए आप हरो चारों का, जी आपा पहली आपा गुगरिया बनार देवता
0: बिल्कुल।
1: पाए
0: देखो,
1: जगह है गुड़ गुड़ देवता
0: वो तो
1: तो
0: पौष्टिक बहुत ज्यादा आ रहे हैं सर, क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था कि बांटा ने 4-5 घंटा रांधता,
1: रहता। हाँ
0: रांधन बाद में खिलावता। बीर महीने कहीं यहा कि लोग 1-1 साल पहले अपने जिका भी धान होता है वे इकट्ठा करता, रांधता, लेकिन आज मार्केट में सब बड़ा पशुआ के खड़ को प्रयोग करे तो खड़ रो प्रयोग वो पशु रे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान करे।
1: अच्छा।
0: इसलिए किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि ये बीटी कॉटन है, इसका प्रयोग कम करो आप। इसकी जगह आप जो घरेलू बांटा है, जो भी धान है, उनका मिक्सन करके आप निश्चित रूप से उसको दो, उत्पादन भी बढ़ेगा और आपके जो ये जो सभी अभी अभी सबसे ज्यादा समस्याएं आ रही है बाजपन की, ये भी दूर होगी।
1: अगर पशु हेलो हेलो हाँ कौन फरमा रिया सा
2: मोनिका इंदा बोला
1: इंदा सु काई सवाल है मोनिका
2: मरगा पो से को।
1: गा पाउ से कोनी
2: हाँ
1: कितना महीना री आईडी है
2: 20 दिन
1: 20 दिन
0: बीस
1: रिया
0: दिन या तो आप इसके जो थन है, थन में एंटन तो नहीं जम गए हैं, तो आप नजदीकी डॉक्टर साहब को बुलाओ एक बार और उनसे चेक कराओ, क्योंकि कुछ ऐंठन भी जम जाते हैं थन में,
2: हाँ
0: तो उसके लिए आपको नजदीकी डॉक्टर साहब से बुला के एक बार बताओ, इसको पशु चिकित्सालय में आप संपर्क करो।
2: ओके
1: ठीक है। तो पशुपालक भाई समय भाई रोई समस्या और समाधान हुयो। अब जी एंठन की बात करिए आप तो जो को अवार्डो है
0: बिल्कुल
1: तो
0: सर।
1: बीर ने आपन देखे हूँ या कि पशुपालक है जो को समझ सके कि मैं
0: हाँ
1: कोई खराबी तो कोनी या
0: बिल्कुल
1: किया
0: सर, अगर आपा शुरुआत में पशु ने दूध काढ़ा जने कहीं हुआ करे कि दूध रे साथे साथे कदी अपन खूनरी गिलचियां डूब जाए,
1: अच्छा।
0: गिलचियां डूब जाए, बीरे अलावा दूध री मात्रा बहुत एक अचानक कमी जावे तो बीर महीने कहीं एंटन जम जावे, तो उसका चिकित्सा से परामर्श लेके उसका इलाज कराना जरूरी है। तो उसके मुख्यतः लक्षण यही है सर।
1: एक पशुपालक भाई जुड़ गया। हेलो
2: हाँ जी सर नमस्कार।
1: नमस्कार राम राम साहब शुभ नाम फरमाओ आप रो
2: बंसीलाल नोखा से बोल रहा हूँ।
1: फरमाओ कहीं सवाल है।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार सर, राम राम साहब।
2: डॉक्टर साहब
0: हाँ जी,
2: देवड़ी और बहुत पड़े रात दिन में
0: हाँ सर,

0: बाड़े में टाप के माँ बंदा रेवड़ी और चिंसड़ बहुत लगे।
1: चिंसड़ गणा हो गया,
2: चिंसड़ गणा लगे,
0: चिंसड़ का मैं रेवड़ी ज्यादा है।
2: हाँ हाँ, तो आपने देखो इरे वास्ते आपने एक तो धुओं राखो सांबरे समय में, तो धुआड़ो करो, धुआड़ा रे महीने थोड़ो नीमड़ो भी नेको।
0: हाँ ठीक है।
2: इरे अलावा आप नीम दिनरा नीम रो पानी गरम करे, नीमड़ो डाल। इरे अलावा कुछ कुछ आप उसमें सरसों का तेल भी डालो और उसका मिश्रण करके उसका स्प्रे करो सा।
0: अच्छा भी मैं जगह में जा बंदा बैठे बैठे।
2: हाँ हाँ सा, और सामरा हाँ सामरा थोड़ो धुआड़ो करो सा।
0: ठीक सा, ठीक, धन्यवाद।
1: किसान भाई चिंचड़ी बात करी,
2: चिंचड़ी
1: तो ए पशुआ ने, एक तो पशु है जो बोल रखे कौन सके अबोल हुए बने जीव जकाए बन खावे, तो एक तो खून तो चूस ही है,
2: खून चूसे परजीवी कीट है वे।
1: इर अलावा और कहीं नुकसान कर सके?
2: देखो सा, खून चूस रहे अलावा अलावा कुछ किसान भाई कहीं है कि इर मैं ते पेस्टिसाइड छंटून की कोशिश करे, दूजा जहरीला छंटून की कोशिश करे। बीरे वास्ते पशु कभी भी ने चाट भी लेवे दवाई ने, तो चाट लेवे तो बा निश्चित रूप से भी दूध में इफेक्ट आवे, और पशु पालक चाटे तो पशु पशु रो भी नुकसान होने की संभावना रहे। इरे वास्ते अपा ने धुओं करनो है, और बट जैसे पुरानी रेत है तो वीर माते माटी बिछावनी है, रेत बिछावनी है, साफ सफाई रो विशेष ध्यान रखना है चींचड़िया में। और बीने दो तीन बार आप बढ़िया गर्म पानी कर बीर महीने तेल डाल, या आप नीमड़ो डालो, नीमड़ो डालो, जने आदमिया ने भी चरम रोग री समस्या रहे, जने नीमडार पावनी न वे, तो आप निश्चित रूप आपने चींचड़िया कम है नीमडार पानी।
1: तो जका आपारे पशु है यहाँ लागे के ए निरोगा है, जको लागे के कोई न कोई बीमारी जकी है रोग लाग गयो, तो बार मायने पास आपन की अंतर जको है बांधण में निरण में पावण में खड़ावण में एड़ो की राखनो चाहिए के अलग अलग की?
2: बिल्कुल, देखो सा पानी जको पानी है पशुआ ने पानी आजकल का पशुपालक आज के समय में निश्चित टाइम कर दियो बीरू, सुबह पाए देवे, दोपहर पाए देवे, और 4 बजे पाए देवे। तो आपा ने एक तो पशुओं ने टाइम टाइम ज्यादा ज्यादा गर्मियों में पानी पानो जो जे
1: पानी धाम दा आप धाम, पशु पी हाँ, ले इच्छा हुई तो
2: अगर
1: तो।
2: आप धामो नहीं तो एक कन्ने कुंडी राखो पशु रे, और आप बीर महीने हमेशा पानी रखो, जब भी पशु ने आवश्यकता रहे जब जरूरत रहे तब पानी पी ले। इरे आप रे पशु में निश्चित रूप से दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, आप ये करके देख लो। उसके अलावा ये मैं आपको पहले ही बात कर रहा था कि डीवर्मिंग करनी जरूरी है, अगर डीवर्मिंग करेंगे तो जैसे पशु खूब खा रहा है, अच्छा खा रहा है, लेकिन उसका उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, उसका शरीर दिनों दिन गलता जा रहा है, तो आप निश्चित रूप से उसमें कुछ कीड़े पेट में हो जाते हैं, उन कीड़ों को मारने के लिए डीवर्मिंग करना बहुत ही अति आवश्यक है।
1: हेलो, शुभ नाम बताओ, कौन फरमा रहा हो? गोविंद जी, क्या गाँव फरमाओ? हाँ बताओ, सवाल कहीं आप रहो?
3: गेहूँ सर क्या दो तीन चार महीने जी जी जी आज निकाली गई है आई ले सर।
2: हाँ सर,
3: गेहूँ बेचे हम दो तीन गेहूँ चार महीने हो गई, क्या जी आई कौन बेचे?
2: पाँची भी आई कौन? तो आपने सा एक भंटार महीने मिनरल मिक्सर पाउडर आया करे, मिनरल मिक्सर पाउडर आपने पशुरे बंटा में सुबह शाम 10-10 ग्राम देनो है आप, कोई 10-10 ग्राम एक पशु ने 10 ग्राम देनो ऐसा
3: नहीं, 1 किलो देनो आधा किलो,
2: आप उसको 15 दिन रगुता रगो सा,
3: 15 दिन
2: हाँ 15-20 दिन लगोता रखो सा।
1: दस दस ग्राम 15-20 दिन है ना
3: जी।
1: तो आज की आप डीवर्मिंग री बात करें,
2: बिल्कुल आ,
1: कोई प्रक्रिया है या
2: डीवर्मिंग? डीवर्मिंग री एक दवाई ऐसा सुबह भूखे पेट बीन देनी जोजे, फिर दो डेढ़ दो घंटा बीने पानी खानो नहीं, कोई ना दाना नहीं देनो जोजे, बांटो आंटो नहीं देनो जोजे, तो डीवर्मिंग जकार।
1: हेलो हेलो हेलो, कौन फरमा रही हो सा? हेलो,
2: डीवर्मिंग री आप बात करता, तो डीवर्मिंग कहीं है कि जो का हानिकारक कीड़ा है जो पेट में पशु रे कहीं ने कहीं माध्यम जाप रहे बेने खत्म करूं रो काम करिया करे, तो डीवर्मिंग करूं रे बाद में पशु
1: कितना दिन दे दवाएं आवे में?
2: एक बार ही आपको हर 4 महीने में एक बार ही डीवर्मिंग करनी है सुबह सुबह, उसमें पशु
1: एक दिन ही दवाई
2: बिल्कुल सर, वो पानी में पिला सकते हैं अपन
1: जी, आप पेट वास्ते
2: पेट बच्चा ने भी कीड़ा बिल्कुल बिल्कुल वही।

0: प्रोसेस है सर। जी
1: तो आपा बात करें रोक साहब जकी एक भाई जुड़िया। हेलो
2: राम राम सा,
1: राम राम सा,
2: राम
1: शुभ
2: राम
1: शुभ नाम बताओ आप रो।
2: सा। मारो नाम मदन,
1: मदन जी किए गांव पर मारिया हो,
2: नागौर बोलो सा।
1: हुक्म करो सा, कहीं सवाल है आप रो।
2: मैं आप पूछना चाहूंगी जान गाय जान अमेरिका वाली अमेरिकन गाय है तो
1: हाँ
2: जान पे घेरी गाय में तो पे जान हम पे मतलब तो पे नहीं यान की देसी गाय चीज घरेलू अपने देवा तो पे यहाँ पे नहीं। हाँ
1: अच्छा हाँ फिजे।
0: बेने भंड
2: और हाँ
0: जकी देसी है जकी यहाँ पे या किसी यहाँ पर ही है
2: देसी वाली।
0: देसी वाले यहाँ पर ही है। एक
2: हाँ
0: एक तो पानी री मात्रा ज्यादा ज्यादा रखो बीर माते,
2: अच्छा
0: और बीरे
2: हाँ
0: पानी ज्यादा ज्यादा पिलाओ। एक आपको लगे
2: हाँ
0: ज्यादा गर्मी है तो एक दो बार उसको आप नला भी
2: नला
0: दो।
2: है,
0: हाँ नलाओ सर,
2: नला तो है। हाँ
0: हाँ नलाओ उसको, क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा उमस गर्मी है इस कारण ये हो रहा है।
2: और एक मैं ये पूछना चाह रहा था सर,
0: हाँ सर,
2: पहले मैंने आपसे बात हुई थी तो उन्होंने आपने कहा था वो थार शोभा नाम से वो खिचड़ी है
0: हाँ
2: तो
0: बिल्कुल, उसके लिए मैं बता देता हूँ। थार शोभा,
2: आपने कहा कि 15 तारीख के बाद में नागौर में मिल जाएगी, तो अभी मिल रही है या नहीं मिल रही है आप ये बता सकते हो क्या?
0: देखो साहब बीरे वास्ते अपने राजस्थान में दो इंस्टीट्यूट है बा थार शोभा थे खेजड़ी बनाया करे। एक तो
2: हाँ
0: है काजरी जोधपुर,
2: हाँ
0: एक CIH बीकानेर।
2: अच्छा
0: तो आपने बटे दोनों इंस्टीट्यूट का नंबर दे दे हूं, तो
2: अच्छा
0: अपने
2: सर
0: नागौर में तो वो अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट में आई नहीं। तो
2: अच्छा
0: आप
2: सर
0: जब भी जोधपुर जाओ तो काजरी में आपको वहां बुकिंग भी करा सकते हो, आप वहां के नंबर भी ले सकते हो, वहां के आप एक काजरी की साइड पे भी दिए हुए।
2: तो सर ये नंबर अपने दे हो या बाद में दे हो आप?
0: आपके मेरे पास मेरे नंबर है
1: दिस
0: आपके
1: कॉल इज
0: पास?
1: नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। क्या
0: बिल्कुल, आपको नंबर दे देंगे वहां के और आप वहां से
2: सर?
0: किसान
2: हाँ
0: वहां ले सकते हो, बुकिंग करा सकते हो।
2: तो नंबर दे दीजिएगा सर।
0: बिल्कुल, काजरी के आप नंबर लिखो, सुबह दस
2: हाँ
0: दस से पांच तक कर सकते हो।
2: बोलो सर।
0: एक मिनट आपसे, एक मिनट, चलो रखिए सर।
2: हाँ सर
0: हाँ जी,
2: एक 0
0: 0291,
2: 291
0: हाँ
2: 27
0: 2786
2: 86
0: 8122
2: 812
0: टू। हाँ,
2: ये कहाँ के है? काजरी
0: ये काजरी के हैं। काजरी में आप इनसे 10 से 5 से संपर्क कर सकते हो, वहां से थार शो
2: काजरी जोधपुर
0: काजरी जोधपुर,
2: और बीकानेर वाले के भी आप
0: वहां के नंबर नहीं है, वहां आप अपनी साइड पे CIH की साइड पे देख सकते हो सर।
2: चलो धन्यवाद सर।
0: ओके सर।
1: एक पशुपालक भाइयों निवेदन वो है कि जका भी आप फोन करो उन बगत आप रिकॉर्डिंग जो को है वो बीच में खटको मत दबाया करो, बहुत सब्र वास्ते खलल पैदा करे सही ठीक भी कौन लागे। तो अपा बात करें हार्ट डॉक्टर साहब एक
0: डीवर्मिंग री,
1: डीवर्मिंग री तो होगी बात
0: हाँ
1: आपने
0: डीवर्मिंग में सर मेन तीन ही आ करे। एक तो या सर एल्बेंडाजोल आया करे बीरू नाम है, एक है सा अपने फेलबेंडाजोल, एक आइवरमेक्टिन है और एक लेवामेर्सोल। इन चारों का आप उपयोग कर सकते हो। जी सर
1: बिल्कुल बिल्कुल। ए जी हाँ अबार आप काजरी नंबर बताया
0: बिल्कुल सर।
1: और किसान भाइयों वास्ते कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर
0: जी सर
1: बेड़ा कोई नंबर पशु पालक भाइयों वास्ते भी है कहीं सरकारी तरफ जटे विशेषज्ञ बैठे जवाब मिल सके सीधो?
0: देखो, जको अपने एक किसान सारथी ऐप है भारत सरकार के द्वारा,
1: ठीक है।
0: उस पे पशुपालन की भी जानकारी मिल जाती है और कृषि भी की मिल जाती है। जी सर, किसान
1: बिल्कुल
0: सारथी ऐप पे।
1: ठीक है।
0: हाँ
1: तो अब जी हाँ बात कर लां के जका पशु वहां पर बात करी निरोगा है और जका बीमार है
0: जी
1: तो बांधे अलग अलग बांधा बाने क्या
0: बिल्कुल।
1: खाने पाने में
0: देखो,
1: कहीं ध्यान
0: कुछ
1: रखना?
0: पशुओं में कहीं एक कोई कई रोग एड़ा हिया करे जो एक पशु दूसरा पशु में फैलिया करे,
1: फैल जाओ
0: तो
1: संक्रामक रोग।
0: आपा ने विशेष रूप अलग अलग बांधना जरूरी है। जी सर
1: और बारी दुआरी में और में हगली सावधानी रखनी
0: बिल्कुल,
1: पड़ी
0: अलग
1: आपने।
0: रखना, जब तक वे संपूर्ण रूप स्वस्थ नहीं है बड़ तक आपा ने अलग रखना पड़ी।
1: और भगवान नहीं करे कोई पशु फोत हो गयो तो पछे बीरो जो को है अंतिम संस्कार बिने भी कटी अलग तरह गाड़नो जरूरी है
0: हाँ
1: कहीं है?
0: जी, पशु रे आपा ने लागे भी वो संक्रामक रोग है, और संक्रामक रोग मुख्यतः कई हो गए, जैसे FMD भी है वे, वो भी संक्रामक रोग है, गलगुंटू भी संक्रामक रोग है, ब्लैक वाटर भी संक्रामक रोग है। एक आपने सुना साहब कि लंपी डिजीज आया था,
1: लंपी आयो।
0: वो भी एक पशु दूसरा पशु ने फैलतो। तो बीर महीने भी आपने जहाँ ध्यान रखना जो जे एक पीपीआर में बतायो आपने, पीपीआर में भी श्वास लेने में दिक्कत आवे तो बी में

0: अगर धीरे धीरे जारी है नेड़ो तो आपा बात एक सवाल आपूं ओई है के बस उपालक भैया ने कोई विशेष बात बतानी चाहो जकीर ध्यान रखे बे।
1: पशुपालक भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप पशुओं को मिनरल मिक्सर दे, आप उसमें कैल्शियम की, जब दुधारू पशु है उसमें कैल्शियम भी उपलब्ध कराए, उसके अलावा पशुओं को अधिक से अधिक गर्मी के मौसम में पानी पिलाए, और जो रोगों से ग्रस्त पशु है उनको अलग रखे, स्वस्थ
0: अलग
1: पशुओं को अलग रखे। जी
0: अगली बात तारो जब ध्यान राखी तो पशुपालक भाई जका है वह पशु निरोगा भी रहेला और माँ जको फायदो लेनो है वो भी पशुपालक भाई ने मिलेला। तो डॉक्टर साहब आप पधारे आप रो घणो घणो धन्यवाद। किसान भैया बात करा लारले सप्ताह जको चौपाड़ो सवाल पूछी जो लारले सप्ताह सवाल ओ पूछियो कि जका फलदार पौधा है कौन सा एड़ा पौधा है जका औषधीय गुण रखे और मीन रो पड़ुतर है जको आंवला है जामुन है नींबू है आ सगड़ार मायने औषधीय गुण जका है वे भी है। और आज रो सवाल पूछ ले रहा हूँ तो शुरू में डॉक्टर साहब बुद्धाराम जी और बातचीत करें हाँ आपा तो फड़कियों जो को रोग है वो कौन सा पशु रामायण हुआ करे ईरो पड़ुतर लिख पर आप भेजोला आवनाले गुरुवार ताई तो आप रो कागज जो को है कार्यक्रम में जरूर शामिल ले लीजिएला करीजेला। और हमें बात करा आज री सीख किसान भैया आ है कि कृषि साहित्य पढ़े पढ़ाएं उपयोगी जानकारी बढ़ाएं खेती उन जुड़ो जो भी साहित्य है जो खेती रूम एक मुझ छपावे या दूसरी जगह वो आपने मिले या अखबार जगह आप खरीद सको खेती में जरूर है तो वे पढ़ो पढ़ो गुणों बाने जन खेती में आप काम आई या आकाशवाणी दूरदर्शन जगह कार्यक्रम है वाने भी आप सुनो ला तो आप ज्ञान रे मायने बढ़ोतरी वेलार बा ज्ञान में बढ़ोतरी होने सु खेती मायने आपने फायदो मिलेला। हमें आज रे इन कार्यक्रम सु विदा लेवा उनसे पहले आपने बता दूं कि आज रे इन कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रियो सीमा गोस्वामी और नरेश चंद्र रो प्रस्तुत करता है अशोक कुमार गोयल इन सा गई चौपाल रो कुंतियोड़ो भगत अठे जुयो पूरो दिरो आप पेड़ाद भाई ने सीख करा राम राम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोता हूँ, अभी आपने सुना कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 MHz पर। श्रोता हूँ, शाम के 7:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम। माफ़ कीजिएगा, अब आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
3: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
3: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
3: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
3: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
3: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
2: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
3: यानी वाचिक परंपरा
2: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
3: श्रोताओं, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
2: जी।
3: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: अजीत जी, भोज या भूर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
3: जी। श्रोताओं, भोजपत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोजपत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोजपत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिनी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोजपत्रों पर लिखे मिलते हैं।
2: तो श्रोताओं, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
3: और हाँ श्रोताओ, भोज पत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
2: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था। लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार
3: जी।
2: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
3: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है
2: जी।
3: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
2: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी
3: जी।
2: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
3: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी
2: जी।
3: यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे
2: जी।
3: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
2: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे, क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था
3: जी। तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
2: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
3: कोडेक्स किसे कहते हैं?

0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
2: जलवायु परिवर्तन।
3: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
5: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
3: जी,
5: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
3: जी, लेकिन वो कैसे?
5: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
3: जी,
5: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
3: जी,
5: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है, यानी वर्ल्ड वाइड।
3: जी,
5: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
6: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
3: जी,
6: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
3: जी, डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
6: जी,
3: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
6: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
3: जी।
6: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
3: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
6: जी
5: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है।
3: जी,
5: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
6: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
3: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
6: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर यह बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
3: अच्छा
6: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
3: डॉक्टर नमिता
5: जी,
3: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं
5: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है,
6: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
5: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
6: जी,
5: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
3: अच्छा,
5: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
3: बहुत सुंदर उदाहरण भैया। तो अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है।
6: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई, और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
5: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
3: बिल्कुल,
5: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
6: जी,
5: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे, और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
3: बिल्कुल,
5: समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा।
6: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
3: जी,
6: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम।
3: जी,
6: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
3: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
5: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
3: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
6: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
5: बिल्कुल,
6: और यदि पेड़ काटे भी जाएं तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
5: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
6: जी,
5: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
3: बिल्कुल, तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
5: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
6: जी
3: बिल्कुल,
6: और दिनेश जी यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
3: जी,
6: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
5: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
6: जी,
5: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
3: ये तो बड़ी गंभीर बात है, और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
6: जी,
3: कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक, कुछ नए आयाम।
1: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: आप जैसे किताबें निकालो, चलो चलो अपना अपना पार्ट निकालो।
2: जी
1: तुम्हें भी कह रहा हूँ, चलो शाबाश। हाँ गोपाल, इसको बोलो। हाँ इधर मेरी तरफ देखिए। हाँ शाबाश, अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
2: जी गुरुजी,
1: समझ गए?
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं। हम

0: पिंटू जी, पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी।
1: बेटा आगे तुम पढ़ाओ।
2: जी गुरुजी। पानी
3: पानी,
2: कुओं
3: कुओं,
2: नदियों
3: नदियों,
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरुजी, झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो, चलो चलो शाबाश।
2: गंदे पानी के प्रयोग से अनेक बीमारियां हो जाती हैं
0: गुरुजी।
1: हाँ बोलो।
0: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पार्ट पढ़ो। चलो
2: जी,
1: चलो
2: जी,
1: ठीक है बैठो, पीछे हो जाओ।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
2: जी।
5: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
6: हमारे गांव में दो कुएं हैं, एक तालाब भी है।
5: अच्छा
2: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
5: शाबाश, बिल्कुल ठीक
0: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
5: हाँ हाँ, ये भी ठीक है।
7: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
5: शाबाश। अरे बच्चों, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
2: मास्टर जी।
5: हाँ हाँ बोलो।
2: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
5: हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक?
2: जी मास्टर जी।
5: लिखो फिर, सब लिखो।
4: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिपेक्ष में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।

0: बोलो मालती।
1: दीदी मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
0: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
1: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
0: ठीक।
1: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
0: हाँ, फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
1: जी।
0: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
1: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
0: हाँ।
2: अब जिस शब्द पर अटको शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की ये शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थी। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
3: नमस्ते दीदी।
4: नमस्ते
3: दीदी।
0: नमस्ते, नमस्ते बच्चों, नमस्ते
5: दीदी। ये,
0: अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
6: दीदी, ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
0: अच्छा
7: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
0: सच? प्रवीण, इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
5: गुलाब।
0: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
3: दीदी मैं बताऊंगी।
0: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
5: गुलाब, गेंदा,
6: चमेली,
5: और चमेली,
0: चमेली,
5: सूरजमुखी।
0: सूरजमुखी, शाबाश।
2: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ इंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
0: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ। मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
2: जी जी।
0: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
2: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
0: जी, कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है, और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
2: बहुत अच्छे।
0: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौटकर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
2: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
0: और मैंने भी तो सीखा इनसे।
2: जी।
0: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
2: हल्के नीले रंग के?
0: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
2: अच्छा।
0: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।

0: है की लिस्ट
1: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
0: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
1: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
0: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है, तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

जी हाँ, आप ही के पसंद के फिल्मी गीतों से सजी है आज की ये रंगारंग शाम। तो तैयार है ना सुनने के लिए? वैसे भी दिन भर की थकान के बाद चिरमी चैनल का कोई कार्यक्रम ना सुने, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ विकास।

0: हेलो कार्यक्रम, हेलो फरमाइश।
1: जी हेलो फरमाइश
0: हाँ जी, कौन?
1: जी, मैं संपत प्रजापत बोल रहा हूँ
0: हाँ संपत जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी। मैं यहाँ शिवबाड़ी चौराया नागौर से बोलता हूँ
0: अच्छा, तो क्या करते हैं आप?
1: जी। मैं तो क्या करता हूँ, प्राइवेट ही काम करता हूँ और कुछ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं करवाता हूँ
0: अच्छा,
1: मैं
0: यात्राएं
1: लोगों
0: कर।
1: को
0: अच्छा, तो साथ में भी जाते हैं क्या?
1: जी। मैं बस लेके जाता हूँ धार्मिक यात्रा, यहाँ सवारियां करके
0: अच्छा
1: लोगों को अलग अलग स्थान पे सवारियां ले जाके उनको धार्मिक स्थान पे यात्रा कराओ। हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन, महाकाल
0: बढ़िया बढ़िया।
1: जैसे, अयोध्या वगैरह, कोई भी गंगा सागर जैसे।
0: चलिए चलिए
1: और
0: बढ़िया।
1: इसके साथ में जो कोई बुजुर्ग आदमी होता है जो असमर्थ है चलने में,
0: हाँ जी,
1: उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले जाता हूँ।
0: अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया काम है।
1: हर एक यात्रा में मैं 4-5 आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाता हूँ, जो
0: अच्छा
1: बुजुर्ग आदमी होते हैं, असमर्थ होते हैं
0: हाँ हाँ
1: उनको, और बुजुर्गों का मैं आशीर्वाद लेता हूँ।
0: चलिए साहब, बहुत बढ़िया काम है आपका तो। और बताइए, इस कार्यक्रम में आप क्या सुनेंगे?
1: जी मैं इस कार्यक्रम में सुनूंगा हमराज पिक्चर का गाना है, मगर तुम साथ देने का वादा करो।
0: चलिए साहब, सुनिए हमराज फिल्म का गाना।

0: सर नमस्कार, हेलो फरमाइश सर।
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
0: मैं इकबाल सिंगल बोल रहा हूँ, लागोर अजमेर गेट तीन लोग मोहल्ले। ठीक
1: अच्छा जी, बताइए क्या हाल है आपके,
0: है सर, जोरदार है सर।
1: क्या करते हैं आप?
0: मैं पहले से कम काम करता था, अभी मैं ट्रांसफार्मर का काम करता हूँ।
1: तो कैसा काम धंधा चल रहा है? बढ़िया।
0: हाँ ठीक है सर, अच्छा अल्लाह शुक्र है
1: अच्छा बताइए, गाना कौन सा सुनेंगे आज?
0: सर। फिल्म का नाम है काला गोरा और गाने के बोल हैं धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। सर
1: चलिए साहब, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
0: आ जाएगा कि शनिवार के? सर
1: ये आ जाएगा जी। हाँ श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि कार्यक्रम हेलो फरमाइश का प्रसारण सप्ताह में 2 बार किया जाता है, गुरुवार को।

0: हेलो कार्यक्रम, हेलो
1: हेलो प्रणय,
0: हरमाइश।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन,
1: हेलो मुकेश सर, बोल रहा हूँ, अमर से बोल रहे थे।
0: क्या हाल चाल है?
1: अच्छा है।
0: अच्छे हैं?
1: वैसे
0: और क्या करते हैं?
1: बैठे चला तो और क्या करते, अच्छे
0: अच्छा, और कैसे लगते हैं हमारे कार्यक्रम?
1: लगते हैं।
0: अच्छे लगते हैं। चलिए साहब, बताइए आज क्या सुनेंगे आप?
1: और आनंद फिल्म है ना, आनंद
0: हाँ,
1: फिल्म वो
0: आनंद।
1: है, ये जिंदगी कैसे कैसे पहले, कभी तो
0: हाँ
1: बचता है
0: हाँ
1: कभी रुलाए, जिंदगी
0: अच्छा,
1: कैसे पहले कभी तो बचता है कभी रुलाए।
0: चलिए साहब, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: बिल्कुल, थोड़ा

0: कभी तो हंसाए।
1: हाँ जी कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
2: हेलो।
1: हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं चांद मोहम्मद बोल रहा हूँ, नागौर से।
1: नागौर से? कौन से गेट से?
2: अजमेरी गेट।
1: अजमेरी गेट से। तो चांद मोहम्मद जी, क्या हाल है? क्या स्वास्थ्य कैसा है आपका?
2: मैं काम करता हूँ सर, किराना का ठेला लगाता हूँ।
1: अच्छा अच्छा, तो और कैसा चल रहा है काम धंधा?
2: ठीक चल रहा है सर।
1: ठीक चल रहा है?
2: बढ़िया
1: बढ़िया। तो बताइए गाना कौन सा सुनेंगे, बढ़िया सा बता दीजिए।
2: मुझको गीत सुनना है।
1: कौन सा गीत?
2: अमर अकबर एंथोनी का, पर्दा है पर्दा है।
1: चलिए साहब, सुनिए अपने पसंद का ये सॉन्ग।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर, नमस्कार। हाँ
0: हाँ नमस्कार, कौन?
1: सर, मैं निकिता बात कर रही हूँ।
0: निकिता, कहाँ
1: हाँ
0: से?
1: सर, ये बाड़ी कुआं से है। सर,
0: बाड़ी कुआ से निकिता, क्या करती हो?
1: अभी पढ़ाई कर रही हूँ।
0: पढ़ाई कर रही हो?
1: हाँ,
0: कौन सी पढ़ाई कर रही हो?
1: अभी 10th में।
0: 10th में ही हो? अच्छा, तो आगे कुछ सोचा है क्या बनना है?
1: हाँ सर, सोचा तो है
0: क्या?
1: टीचर बनने का मैंने।
0: अच्छा, टीचर बनने का है। चलिए साहब,
1: हाँ
0: फिर तो बीए करनी पड़ेगी, बीएड करनी पड़ेगी। हैं,
1: हाँ सर, ये तो करना ही पड़ेगा।
0: चलो बताओ, गाना कौन सा सुनना है आज?
1: सर, मैं नाम फिल्म का गीत सुनवा दो।
0: कौन सा
1: नाम फिल्म का गीत
0: नाम
1: है
0: फिल्म?
1: ना
0: अच्छा, नाम फिल्म का कोई भी गीत।
1: सही सुनवा दो सर।
0: चलिए साहब, सुनिए अपनी
1: बढ़िया
0: पसंद।
1: गाना।
0: हाँ,
1: हाँ
0: सुनिए
1: बढ़िया
0: अपनी
1: गाना।
0: पसंद का फिल्म नाम का ये गीत।
2: ते

0: हेलो कार्यक्रम, हेलो
1: नमस्कार जी। हेलो
0: फरमाइश।
1: हेलो, मैं
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मुंडवा से बोल रहा हूँ सर, राम किशोर, धर्मा
0: हाँ
1: राम का भाई बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, बताइए क्या हाल है आपके?
1: बस बढ़िया, बहुत अच्छे। आप बताओ। कुछ
0: आप क्या कर रहे हो अभी?
1: नहीं कर रहे हैं, खेती के अंदर काम कर रहे हैं, बरसात
0: खेती में काम कर रहे हो, बरसात का इंतजार है?
1: का इंतजार है, बारिश अभी कम है सर।
0: बारिश तो अभी सब जगह ही कम है।
1: हाँ
0: अच्छा, और क्या आप अभी पूरे दिन खेती में ही रहते हो, खेत में ही?
1: हाँ पूरा हाँ पूरा दिन खेती में रहते हैं।
0: अच्छा, और कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको? हाँ
1: लो मेरे भाई साहब से बात करो एक बार।
0: जी,
1: नमस्कार सर। नमस्कार
0: हाँ नमस्कार जी,
1: जी, आप कैसे हो?
0: बढ़िया, आप बताओ।
1: बहुत बढ़िया साहब, बहुत कर।
0: अच्छा, कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको?
1: ये कार्यक्रम आपके पसंद और आपकी फरमाइश काकू का और सब दिन भर रेडियो चलता ही रहता है।
0: अच्छा, तो बताओ आज क्या सुनोगे?
1: आज फिल्म का नाम का तो मेरे को याद ही नहीं है और गाने का बोल मेरे को याद है।
0: हाँ बताइए।
1: चली आना पान की दुकान पे, साढ़े तीन
0: चलिए साहब,
1: बजे।
0: चलिए सुनिए अपने गांव में अपनी पसंद का फिल्म आज का, अर्जुन का ये गीत। चलिए।

तो श्रोताओं, ये तो था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वैसे इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया प्रतीक वर्मा ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। और अब मैं विकास आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM में 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 में अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू, हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनों से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट

0: 29 फोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लेटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
6: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
7: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस्म में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
3: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
8: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
3: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय

0: मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 2 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आप सुनेंगे मिताली राज और भूपेंद्र सिंह को।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

श्रोता हूँ, अभी आपने सुना कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आपने सुना मिताली राज और भूपेंद्र सिंह को। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 MHz पर, रात्रि के 9:15 में। श्रोता हूँ, अब आपको ले चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन की ओर, और सुनवाते हैं विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।

लीजिए सुनिए आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की, फिल्म का नाम बेमिसाल।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हुआ था। कैटरीना हांगकांग में जन्मी हैं और उनका परिवार दुनिया के अलग अलग देशों में रहता आया है। आखिरकार उनका परिवार लंदन में बस गया, जहां कैटरीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शुरू हुई मॉडलिंग।

एक फैशन शो में कैटरीना कैफ रैंप पर वॉक कर रही थी और उन पर नजर पड़ी फिल्मकार कैजाद गुस्ताद की, जो उन दिनों अपनी फिल्म बूम के लिए एक अभिनेत्री की तलाश में थे। बस यहां से शुरू हुआ कैटरीना कैफ का करियर। फिल्म बूम 2003 में आई थी। 2004 में कैटरीना कैफ ने एक तेलुगु फिल्म की मल्लीश्वरी, इस फिल्म ने खूब कामयाबी हासिल की और इसके बाद साल 2005 कैटरीना कैफ को मिली अपनी पहली कामयाबी। ये फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया।

कैटरीना कैफ के लिए अभिनय का ये रास्ता बहुत आसान नहीं रहा। हिंदी से बहुत ज्यादा वाकिफ वो थी नहीं, परवरिश लंदन में हुई थी, उच्चारण में बहुत ज्यादा ब्रिटिश लहजा था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैटरीना की शुरुआती फिल्मों में उनके संवादों की डबिंग की जाती थी, लेकिन कैटरीना ने बहुत मेहनत की और अपने रोल्स में जान डाल

साल 2006 में कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार के साथ पहली बार काम किया। ये फिल्म थी निर्देशक राज कंवर की फिल्म हमको दीवाना कर गए। फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन आगे चलकर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आए, जैसे साल 2007 में नमस्ते लंदन,

इसके बाद फिल्म अपनी में कैटरीना कैफ एक सपोर्टिंग रोल में नजर आईं। इस फिल्म में वो डॉक्टर बनी थीं। डेविड धवन की फिल्म आई पार्टनर, जिसमें कैटरीना कैफ का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था।

0: इसके बाद कैटरीना कैफ अनीस बज्मी की फिल्म में नजर आईं। ये फिल्म थी वेलकम।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

साल 2009 में कैटरीना कैफ ने कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ थे जॉन अब्राहम और नील नितिन मुकेश।

इसके बाद कैटरीना कैफ की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म आई, राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी। ये फिल्म उस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में से एक बन गई।

साल 2010 में एक बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म आई जिसके न चलने का कैटरीना कैफ को भी दुख है और इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों को भी। ये फिल्म थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की अभिनय वाली 30 मार खां। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आई जोया अख्तर की फिल्म में। इस फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

वो दौर था जब कैटरीना कैफ जो भी फिल्म करती वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छूती। साल 2013 कैटरीना कैफ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस साल आमिर खान के साथ वो नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म धूम 3 में।

साल 2016 में अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर में कैटरीना कैफ ने काम किया। यहाँ आपको बता दें, ये फिल्म चार्ल्स डिकिंस के मशहूर नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर आधारित थी। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आई सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो में।

0: अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अभिनय यात्रा जारी है। वो नजर आईं साल 2017 में अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है में। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था जोया सिंह राठौड़। इसी साल आई वेलकम टू न्यूयॉर्क। साल 2018 में कैटरीना कैफ नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, जिसमें उनका किरदार था सुरैया का।
1: घर सुरैया जान के सर झुका के आए हो, दे चुकी है दर्शन।

साल 2018 में ही आनंद रॉय की फिल्म में नजर आई वो फिल्म थी जीरो। इस फिल्म में उनके हीरो थे शाहरुख खान। 2019 में सलमान खान के साथ नजर आई कैटरीना कैफ अली अब्बास जफर की फिल्म भारत में।

0: wet here. Wet here.
1: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था अभिनेत्री कैटरीना कैफ पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन FM में 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 10 बजे हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। अब आपसे फिर मुलाकात होगी प्रातः 8:49 पर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।